0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो।
1: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he?

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: परमेश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो।
2: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।
3: ओम नमः शिवाय शांताय वेद वेदांग रूपिणे यज्ञानां फलदात्रे च ज्योतिर्लिंगायते नमः। प्रातः काल की इस पुण्य वेला में मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के तत्वावधान में प्रस्तुत इस विशेष कार्यक्रम में आप समस्त लोगों को आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। भगवान शिव की उपासना हो रही है। विश्वानर कह रहे हैं कि एकम ब्रह्मेवा द्वितीयम समस्तम सत्यम सत्यम नेह नानस्ति किंचित एको रुद्रो न द्वितीयो अस्ते तस्मादेकं त्वां प्रपद्ये महेशम। हे भगवान, आप ही एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म हैं। ये सारा जगत आपका ही स्वरूप है। यहाँ अनेक कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल सत्य है कि एकमात्र रुद्र के अतिरिक्त दूसरे किसी की सत्ता नहीं है। इसीलिए मैं आप महेश की शरण ग्रहण करता हूँ। हे भगवान, हे शंभो, कर्ता हर्ता त्वम ही सर्वस्य संभो नाना रूपेश्वक रूपो प्यरूपः यदवत् प्रत्यगर धर्म एकोप्यनेको स्तनमानान्यत्त त्वां विघ्नेशं प्रपद्ये। आप ही सबके कर्ता और हर्ता हैं तथा जैसे आत्म धर्म एक होते हुए भी अनेक रूप से दिखता है, उसी प्रकार आप भी एक रूप होकर के नाना रूपों में व्याप्त हैं और आप जो हैं फिर भी रूप रहित हैं। इसीलिए आप ईश्वर के अतिरिक्त मैं किसी दूसरे की शरण नहीं ले सकता हूँ। रज्जौ सर्पः शुक्तिकायां च रौप्यम नरे पूरस्त मृगाख्ये मरीचौ यद्वद्वितीय स्वगेश प्रपंचो यस्मिन् ज्ञाते तं प्रपद्ये महेशम। जैसे रस्सी में सर्प, सीप में चांदी, मृग मरीचिका में जल प्रवाह का भान मिथ्या है, उसी प्रकार जिसे जान लेने पर ये विश्व प्रपंच मिथ्या भासित होता है, उन महेश्वर की और मैं शरण लेता हूँ। हे भगवान, हे शंभो, तो ये शैल्यम दा

प्रपद्यई। उसी प्रकार से जैसे जिसे जान लेने पर ये विश्व प्रपंच मिथ्या भासित होता है, उन महेश्वर की हम शरण लेते हैं। जैसे जल में जो शीतलता, अग्नि में जो दाहकता, और सूर्य में जो गर्मी है, चंद्रमा में जो आह्लादकारिता है, पुष्प में जो गंध है, और दुग्ध में जो घी वर्तमान है, वो आपका ही स्वरूप है। अतः मैं आपकी शरण में

0: नमस्कार। श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस श्रावण प्रभात कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। न वेद सर्व जंतुनाम हृदय रोष कर बुध। विद्वान पुरुष ऐसे बात न कहें जो किसी भी प्राणी के हृदय में रोष पैदा करने वाला हो। येनम केना पुण्यम पुण्येन हृदयवाम यदि वा बहु देवतार्पणम बुधयाम च कृतम भोगाय कल्पयेत तस्याम च दानम च कर्तव्यम भयम सदा। जिस किसी भी उपाय से थोड़ा हो या बहुत देवतार्पणम बुद्धि से जो कुछ भी दिया अथवा किया जाए वह दान या सत्कर्म भोगों की प्राप्ति करने के समर्थ होते हैं। तपस्या और दान ये दोनों कर्म मनुष्य को सदा करने चाहिए। पूजायाम शिव भक्तस्य शिव प्रीति करो भवेत शिवस्य शिव भक्तस्य भेदो नास्ते शिवो ही सह। शिव भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव और उनके भक्त में कोई भेद नहीं है, वह साक्षात शिव स्वरूप ही है। दुखस्य मूलम व्याधे व्याधमूलम हीम पातकम धर्मणैव हितम पाप नाप्योषधम ममायते। दुख का मूल व्याधि है और व्याधि का मूल पाप में होता है। धर्मचरण से ही पापों का नाश बताया गया है। यो वेदि कर्मणा विद्या कर्मम स्मार्थमाथापि वाम अन्यता चरेत मृत्युम च संकल्पम फलम लभेत। जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियों में कहे हुए संकल्प मार्थ सत्कर्म की अवलेना करने के दूसरे कर्म को करने लगता है उसका मनोरथ कभी सफल नहीं होता। ओम शांति शांति इति शुभम।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।
1: हरि ओम तत्सत् वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानांश्च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो याभ्यां वीणान पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तः स्थमीश्वरम् श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः श्री रामदूताय नमः श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः ओम नमो भगवते सिया राम कृष्ण हरि नारायण। आज सैटरडे 1 अगस्त हिंदू महासभा की ओर से मैं बाबा जी गिरीश शर्मा श्रावण प्रभात वाणी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हैं। शिव सती चरित्र का जो हम पाठ कर रहे हैं कल जहां से विराम लिया था, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हुए आज बालकांड दोहा संख्या 48 से हम आगे बढ़े। हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन होई गुप्त रूप अवतरे उ प्रभु गए जान सब कोई। भगवान शिव हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर उर अति क्षोभ सती न जान ही मरम सोई तुलसी दर्शन लोभु मन डरु लोचन लालची। भगवान शंकर के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का जो डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरण मनुज कर साचा प्रभु विधि वचनों

रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथों से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। शिव जी कहते हैं, मैं जो पास नहीं जाता हूं तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते रहे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। यही

0: सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गए थे। चले इस बात को हम लोग कल के कार्यक्रम में आगे बढ़ाएंगे, आज इसको यही विराम दें। आपके ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति, ओम श्री सीताराम चंद्र अर्पणमस्तु। साधुवाद, जय श्री हरि।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

0: विशेष कार्यक्रम
1: आर्य सभा मॉरिशस के माध्यम से यह वेद उपहार आपको सप्रेम भेंट, प्रस्तुतकर्ता प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र शास्त्री।

मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यह वेद मंत्र बार बार हमको प्रेरित करता है कि हम मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त करें और अमृत के बंधन से नहीं। श्रोताओं, कितना अच्छा मंत्र है, इसको हम लोग महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं। त्र्यंबकम यजामहे, यदि हम मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं। दो प्रकार के बंधन है, एक जन्म का है, दूसरा मृत्यु का है। न जन्म हो न मृत्यु हो, ऐसी कौन सी अवस्था है? वो अंतिम अवस्था मोक्ष की अवस्था है। इसमें क्या प्रार्थना की गई है कि हम ये मृत्यु के बंधन से, जन्म के बंधन से कैसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं? इसके लिए बड़ी प्यारी वेद में उपमा दी है, उर्वारुकमिव बंधनात्। उर्वारुक कहते हैं खरबूज को। आपने सबने खरबूज का फल देखा होगा, वो जब पक जाता है तो डाली से सर्वथा अलग हो जाता है। ऐसे ही श्रोताओं, हमारे जीवन के अंदर जो भीतर अनेक प्रकार की वासनाएं हैं, जो जन्म जन्मांतरों से हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद की, ये वासनाएं हमारे जीवन से सर्वथा अलग हो जानी चाहिए। खरबूज से हम क्या शिक्षा लें, क्या प्रेरणा लें? उसका देखिए रंग कितना अच्छा होता है, उसके अंदर रस कितना भरा हुआ होता है। रस का मतलब है उसकी मधुरता, उसकी मिठास। ऐ उपासक, तेरे जीवन के अंदर भी रस भरा होना चाहिए मिठास का। तेरी वाणी बहुत रसवती हो, तेरी वाणी के अंदर रस भरा हो। ऐसा न हो कि तेरे वाणी में कुछ और हो, तेरे कर्म में कुछ और हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। खरबूज से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए? उसका रंग रूप एक है, उसका रस देखिए कितना मिठास है। तो उससे हम कुछ आइडियल, कुछ प्रेरणा हम लें, कुछ शिक्षा लें, जैसे उसके अंदर रस भरा हुआ है। हमारे जीवन के अंदर, भक्तों के अंदर भी अर्थात मधुरता का रस हो। हम जब भी किसी से मिलें तो वाचम वदामि मधुमद भूयासम मधुसंदृशः, हम मिठास भरी वाणी का प्रयोग करें, एक रूपता उसके अंदर होती है। कहते हैं ना, जैसे खरबूजा खरबूजे को देख करके रंग बदलता है, ऐसा हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन एक निष्ठ हो, जैसा हम वाणी से बोलें वैसा ही करें, और वैसा ही हमारे भीतर के अंदर होना चाहिए। तो खरबूजे की बहुत विशेषताएं हैं, उसका रूप, उसका रंग, उसका रस मधुरता से भरा है। प्रकृति के डाल के बंधन से जब अलग हो जाता है तो सर्वथा पक जाता है। ऐसे ही हमारा जीवन भी अनेक प्रकार के जो जो हमारे अंदर वासनाएं छिपी पड़ी हैं वो बाहर निकल जाएं। तो इसीलिए तो वेद के अंदर इतनी सुंदर खरबूजी के ही उपमा दी है परमात्मा ने कि यदि तुम मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हो तो उस खरबूजे को अपने जीवन का एक आदर्श मानो, उसके अनुकूल आपका जीवन हो। खरबूजे को जब काटते हैं तो कितना मिठास उसके अंदर है। वो कहता है कि देखो, मेरे भीतर रस, मेरे बाहर रस, और मेरी एक रूपता है मेरे जीवन के अंदर। ऐसे ही तुम्हारे अंदर भी होना चाहिए, यही इस मंत्र के अंदर प्रार्थना है। मृत्यु से बंधन से छुड़ाओ और अमृत को प्राप्त

0: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आपने सुना यह विशेष कार्यक्रम।
1: रेडियो मॉरिशस
2: 800 किलोहर्ट्ज़ पर यह है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस।
2: रेडियो मॉरिशस।

प्रतिवोचि देवयन्तं सुम्नैरिद्वा विवासे ॐ शांति शांति शांति। गहलोत राजपूत महासभा मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत वेद श्रावण मास वेद मास के पावन अवसर पर वेद संदेश श्रवण करने वाले सभी श्रोताओं को आचार्य बितुला का सादर सप्रेम नमस्ते। श्रोताओं, आज का विषय है धर्मात्माओं की दोस्ती, अर्थात वेद का क्या संदेश है, क्या आदेश है, इस मंत्र के माध्यम से यहाँ पर हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। मंत्र का पाठ जो मैंने किया उसका अर्थ है इस प्रकार से, मनुष्य को योग्य है कि न अपने शत्रु और न मित्र के शत्रु में प्रीति करें। मित्र की रक्षा और विद्वान की प्रिय वाक्य, भोजन, वस्त्र, पान आदि से सेवा सदा करनी चाहिए, क्योंकि मित्र रहित पुरुष सुख की वृद्धि नहीं कर सकता। इससे विद्वान लोग बहुत से धर्मात्माओं को मित्र करें। श्रोताओं, यहाँ पर जो दो शब्द पर हमें ध्यान देना है वह यह है, अपने और मित्र। यहाँ अपने कौन और मित्र कौन? अपने का अर्थ होता है आत्मा और मित्र का अर्थ होता है शरीर, अर्थात शरीर और आत्मा, अर्थात जो है आत्मा आध्यात्मिक, शरीर भौतिक। यहाँ यह बात स्पष्ट है कि आत्मा के शत्रु और मित्र के शत्रु, अर्थात आत्मा के शत्रु कौन और शरीर का शत्रु कौन। आत्मा का शत्रु है अज्ञान और शरीर का शत्रु है अपने ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रियों का दुरुपयोग। सबसे पहले हम ज्ञान को लेते हैं। ज्ञान की दृष्टि से परमपिता परमात्मा का ज्ञान से ही आत्मा का लक्ष्य संभव है, मोक्ष को प्राप्त करना। और मोक्ष शरीर के बिना कर्म अर्थात निरर्थक है। आत्मा को चाहे शरीर कर्म के करने लिए, और यह शरीर जो है उनके पांच ज्ञान इंद्रियां सही सही जब कार्य करती है तो आत्मा की उन्नति निश्चित जानो, अन्यथा अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है तो ये जो है आत्मा अर्थात जो शरीर है, जो माध्यम है मोक्ष का, वह शरीर इंद्रियों का दुरुपयोग अर्थात शत्रुता की ओर बढ़ जाती है। कहने का तात्पर्य है श्रोताओं, हमारे जो पांच ज्ञान इंद्रिय हैं, आँख से वेद के अनुसार हम देखें, जो अपने नाक से वेद के अनुसार जो है हम गन का सेवन करें, इसी प्रकार से कान, इसी प्रकार से जिह्वा और त्वचा, जो पांच ज्ञान इंद्रियां हैं अपने अपने विषय से संबंधित हैं, उसका सदुपयोग करने के लिए परमपिता परमात्मा के वेद संदेश को आप अपनाइए। और आत्मा को परमपिता परमात्मा का ज्ञान से ही जो है उनका जीवन सार्थक माना जाएगा, अर्थात मनुष्य जीवन सार्थक माना जाएगा। अंत में यह बाकी कि जो है मित्र रहित पुरुष सुख की वृद्धि नहीं कर सकता, यहाँ पुरुष का अर्थ है आत्मा। श्रोताओं, बहुत बहुत सौभाग्य आपका, आपने ध्यान से सुना, आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।

0: ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम्।
1: ईश्वर आपकी कृपा से राष्ट्र में ज्ञान विज्ञान के तेज से कुशल ब्राह्मण उत्पन्न हो, बाहुबल से शूर महारथी उत्पन्न हो, शत्रुओं को पराजित करने वाले शस्त्र अस्त्रों के संचालन में निपुण क्षत्रिय उत्पन्न हो। ईश्वर की कृपा से राष्ट्र में दुधारू गौवें की वृद्धि हो, स्त्रियां बुद्धिमती विदुषी एवं प्रत्येक कार्य में कुशल हो, यजमानों की उत्तम संतान हो, औषधि वनस्पति लता वृक्ष फल फूल आदि की कमी न हो, इच्छा अनुसार वर्षा होती रहे, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति हो और प्राप्त वस्तु की रक्षा करने में सभी तत्पर रहें।

हमें कुशल चालक के समान अपने जीवन रूपी सवारी को सावधानी से चलाना चाहिए, तभी हम निर्विघ्नता पूर्वक अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। जैसे शीघ्रगामी नवीन वाहन कुशल चालक द्वारा जल्दी से अपने वांछित स्थान पर पहुंच जाता है और सवारी को आराम से पहुंचा देता है, वैसे ही विद्वान आप्त पुरुष अपने विद्या द्वारा अन्यों को प्रगति के शिखर पर शीघ्र पहुंचा देते हैं। अतः श्रेष्ठ विद्वानों को चाहिए कि स्वार्थ, अहंकार, पक्षपात और वैर भाव से रहित होकर अपने शिष्यों को सद्विद्या प्रदान करें और उनके जन्म को सफल बनावें।

दुर्वा औषधि रोगों का नाश और सुख को बढ़ाने वाली होती है। यह धरती को सुंदर बनाती है और दूर तक फैली होती है। इससे हजारों सकारात्मक तरंगे निकलती हैं। इनके सब अवयवों और गांठ गांठ से ऊर्जा का संचार होता है। जैसे दुर्वा औषधि हरी भरी रहती हैं और सबको प्रसन्न करती हैं, उसी प्रकार हम भी स्वस्थ रहते हुए अपने कुल, संतान, समाज और राष्ट्र की उन्नति में तत्पर रहें। जैसे दुर्वा औषधि सबके स्वास्थ्य की रक्षा करती हैं, वैसे ही हम भी अपने स्वास्थ्य की ओर उचित ध्यान देवें। जैसे दुर्वा व्यापक रूप से फैल जाती हैं, वैसे ही परमात्मा हम सबको पुत्र, पौत्र और ऐश्वर्य से विस्तृत करें।

0: ओ सुप्रभात, घर मिलाते चलिए, सुबह के ठीक 6 बज रहे हैं। समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम टीना के साथ है सुनते हैं। नमस्कार आपको टीना।
1: नमस्कार, संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। कल रात 10 बजे के कुछ देर बाद राष्ट्रीय सभा में फाइनेंस बिल और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स मिसेलेनियस प्रोविजंस बिल संशोधनों के साथ पारित कर दिए गए। इन दोनों विधेयकों के जरिए 19 जून को पेश किए गए बजट 2026-2027 की घोषणाओं को कानूनी रूप दिया गया है। इस दौरान नेशनल पेंशन एक्ट सहित 80 से अधिक कानूनों में संशोधन किए गए। पेंशन रिफॉर्म से जुड़े संशोधनों पर सदन में तीखी बहस हुई। विपक्ष नेता जो लिशोंगा ने वोट बाय डिवीजन की मांग की। पर्यटन जूनियर मिनिस्टर सिडनी पियर सरकार के एकमात्र सदस्य रहे जिन्होंने इस विधेयक के खिलाफ वोट दिया। वहीं विपक्ष के 5 सांसदों ने भी इसके खिलाफ वोट दिया। राष्ट्रसभा की कार्य अब मंगलवार 4 अगस्त सुबह 11:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। फाइनेंस बिल पर बहस के समापन के दौरान प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि पेंशन की टारगेटिंग को हटाने से होने वाली कमी को पूरा करने के लिए सरकार को अतिरिक्त 6.2 बिलियन रुपये की व्यवस्था करनी होगी। उन्होंने बताया कि टारगेटिंग का उद्देश्य सबसे कमजोर लोगों को अधिक सहायता देना था। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और इस कमी को पूरा करने के लिए अन्य उपाय लागू करने होंगे। और पेंशन की राशि पर अब हर साल जीवन के खर्च के हिसाब से बढ़ाई जाएगी। ये बढ़ोतरी हर साल जनवरी महीने से लागू होगी। ये व्यवस्था कानून में शामिल की जाएगी। समाज रक्षा मंत्री अशोक सुबो ने कल रात राष्ट्रसभा में बहस के दौरान इसकी जानकारी दी। और कोविड-19 महामारी के समय खरीदे गए वेंटिलेटर लेकिन कभी नहीं मिले वेंटिलेटर मशीनों के मामले में सरकार ने अब सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। कल कैबिनेट ने स्वास्थ्य मंत्रालय को 2 कंपनियों के खिलाफ स्पेन के कोर्ट में कानूनी कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी दी है। ये 2 कंपनियां हैं पैक एंड ब्लिस्टर और मेडिटेरेनियन हेल्थ केयर सप्लाई नेटवर्क SL। ये फैसला एक स्पेन की एक लो फर्म की शुरुआती जाँच के बाद लिया गया। इस फर्म का मानना है कि 2020 में वेंटिलेटर मशीनों की खरीद के लिए खर्च किए गए करीब 103 मिलियन रुपये वापस प्राप्त किए जा सकते हैं क्योंकि ये मशीनें कभी पहुंचाई ही नहीं गई। और विदेश में मोरक्को की सीमा से स्पेन के उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र सेयूटा में गुरुवार को हजारों प्रवासी घुस गए। प्रवासियों ने बॉर्डर की बार तोड़कर स्पेन में प्रवेश कर दिया जिसके दौरान कम से कम 41 लोगों की मौत हो गई। अब स्पेन ने इलाके में मोरक्को के साथ लगी सीमा पर शांति बनाए रखने का फैसला लिया है। और अंत में मौसम का हाल। पूर्व की ओर पाए जा रहे सक्रिय बादलों का असर हमारे स्थानीय मौसम पर पड़ रहा है। पूर्वानुमान आज दिन भर बादल ही रहेंगे, खासकर देश के पूर्वी इलाकों और ऊंचे इलाकों पर रह रहकर वर्षा हो सकती है। तापमान सेंट्रल बादल पर न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा पूर्व की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी जिसके झोंके कुछ प्रभावित जगहों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। प्रवाह रेखा के परिसमुद्र खराब रहेगा और दक्षिण पश्चिम की तरफ 2 मीटर

0: तक ऊंची लहरें भी उठ सकती है। दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है, खासकर रात्रि के समय। सूर्योदय आज 6:39 पर और सूर्यास्त शाम के 5:52 पर।
1: Center 95.5 North South 95.6 East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो सब चीजों का मालिक है, यानी वो कि जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है, और आखिरत में भी उसी की तारीफ है, और वो हिकमत वाला है खबरदार है। जो कुछ जमीन में दाखिल होता है और जो उसमें से निकलता है और जो आसमान से उतरता है और जो उस पर चढ़ता है सब उसको मालूम है, और वो मेहरबान है बख्शने वाला है।

और काफिर कहते हैं कि कयामत की घड़ी हम पर नहीं आएगी। कह दो, क्यों नहीं आएगी? मेरे परवरदिगार की कसम, वो तुम पर जरूर आकर रहेगी। वो परवरदिगार गैब का जानने वाला है, जर्रा भर चीज भी उससे पोशीदा नहीं, ना आसमानों में और ना जमीन में, और कोई चीज जर्रे से भी छोटी या बड़ी नहीं, मगर किताब रोशन में लिखी हुई है।

और जिन लोगों को इल्म दिया गया है वो जानते हैं कि जो कुरान तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाजिल हुआ है वो यकीनन हक है और उस अल्लाह का रास्ता बताता है जो गालिब है काबिल-ए-तारीफ है।

और काफिर कहते हैं कि भला हम तुम्हें ऐसा आदमी बताएं जो तुम्हें खबर देता है कि जब तुम मर कर बिल्कुल रेजा रेजा हो जाओगे तो तुम नए सिरे से पैदा होगे, या तो उसने अल्लाह पर झूठ बांध लिया है या उसे जुनून है। बात यह है कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते वो आफत और परले दर्जे की गुमराही में पड़े हैं। क्या उन्होंने उसको नहीं देखा जो उनके आगे और पीछे है, यानी आसमान और जमीन? अगर हम चाहें तो उनको जमीन में धंसा दें या उन पर आसमान के टुकड़े गिरा दें। इसमें हर बंदे के लिए जो रुजू करने वाला है एक निशानी है।

0: और हमने दाऊद को अपनी तरफ से बरतरी बख्शी थी और कहा था, ऐ पहाड़ों इनके साथ तस्बीह करो, और परिंदों को उनका मुसख़र कर दिया, और उनके लिए हमने लोहे को नरम कर दिया कि कुशादा ज़िरहें बनाओ और कड़ियों को अंदाजे से जोड़ो, और नेक अमल करो, जो अमल तुम करते हो मैं उनको देखने वाला हूँ।
1: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر

और हवा को हमने सुलेमान के ताबे कर दिया था, उसकी सुबह की मंजिल एक महीने की राह होती और शाम की मंजिल भी महीने भर की होती, और उनके लिए हमने तांबे का चश्मा बहा दिया था, और जिन्नों में से ऐसे थे जो उनके परवरदिगार के हुक्म से उनके आगे काम करते थे, और जो कोई उनमें से हमारे हुक्म के खिलाफ करेगा उसको हम जहन्नम की आग का मजा चखाएंगे। वो जो चाहते ये उनके लिए बनाते, यानी कले और तस्वीरें और बड़े बड़े लगन जैसे तालाब और देगे जो एक ही जगह रखी रहें। ए आले दाऊद, शुक्र करते रहो और मेरे बंदों में शुक्रगुजार थो।

फिर जब हमने उनके लिए मौत का हुक्म सादिर किया तो किसी चीज से उनका मरना मालूम न हुआ मगर घुन के कीड़े से जो उनके आशा को खाता रहा। फिर जब वो गिर पड़े तब जिन्नों को मालूम हुआ और कहने लगे कि अगर वो गैब जानते होते तो जिल्लत की तकलीफ में न रहते।

अहले सभा के लिए उनके वतन में एक निशानी थी, यानी दो बाग, एक दाहिनी तरफ और एक बाईं तरफ। कहा गया कि अपने परवरदिगार का रिज़्क खाओ और उसका शुक्र करो। यहां तुम्हारे रहने को यह पाकीजा इलाका है और वहां बड़ा बख्शने वाला मालिक। तो उन्होंने शुक्रगुजारी से मुंह फेर लिया, बस हमने उन पर बंद तोड़ सैलाब छोड़ दिया और उन्हें उनके बागों के बदले दो ऐसे बाग दिए जिनके मेवे बदमजा थे और जिनमें कुछ तो झाऊ के पेड़ थे और थोड़ी सी बेरियां। ये हमने उनको नाशुक्री की सजा दी और हम सजा नाशुक्रे ही को दिया करते हैं।

और हमने उनके और मुल्क शाम की उन बस्तियों के दरमियान जिनमें हमने बरकत दी थी एक दूसरे के मुत्तसिल देहात बनाए थे जो सामने नजर आते थे और उनमें आमद रफ्त का अंदाजा मुकर्रर कर दिया था कि रात दिन बेखौफ खतर चलते रहो। तो उन्होंने दुआ की कि ऐ परवरदिगार हमारी मुसाफतों में दूरी पैदा कर दे और उससे उन्होंने अपने हक में जुल्म किया तो हमने उन्हें नाबूद करके दास्तान बना दिया और उन्हें बिल्कुल मुंतशिर कर दिया। इसमें हर साबिर और शाकिर के लिए निशानियां हैं।

और शैतान ने उनके बारे में अपना ख्याल सच कर दिखाया कि मोमिनों की एक जमात के सिवा वो उसके पीछे चल पड़े और उसका उन पर कुछ जोर न था, मगर हमारा मकसूद ये था कि जो लोग आखिरत में शक रखते हैं उनसे उन लोगों को जो उस पर ईमान रखते हैं मुमताज कर दें, और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज पर निगहबान है।

कह दो कि जिनको तुम अल्लाह के सिवा माबूद ख्याल करते हो उनको बुलाओ, वो आसमानों और जमीन में जर्रा भर चीज के भी मालिक नहीं है और न उनमें उनकी शिरकत है और न उनमें से कोई अल्लाह का मददगार है। और अल्लाह के हां किसी के लिए सिफारिश फायदा न देगी मगर उसके लिए जिसके बारे में वो इजाजत बख्शे, यहां तक कि जब उनके दिलों से इस्तराब दूर कर दिया जाएगा तो कहेंगे कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या फरमाया है, फरिश्ते कहेंगे कि हक फरमाया है और वो आली रुतबा है, ग्रामी कद्र है।

पूछो कि तुमको आसमानों और जमीन से कौन रिस्क देता है, कहो कि अल्लाह, और हम या तुम या तो सीधे रास्ते पर हैं या खुल्लम खुल्ला गुमराही में। कह दो कि न हमारे गुनाहों की तुमसे पुरसिश होगी और न तुम्हारे आमाल की हमसे पुरसिश होगी।

कह दो कि हमारा परवरदिगार हमको जमा करेगा, फिर हमारे दरमियान इंसाफ के साथ फैसला कर देगा, और वो खूब फैसला करने वाला है, साहिब इल्म है। कहो कि मुझे वो लोग तो दिखाओ जिनको तुमने अल्लाह का शरीक बनाकर उसके साथ मिला रखा है। कोई नहीं, बल्कि वही अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है।

0: और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, हमने तुमको तमाम लोगों के लिए खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते।
1: सदकल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामीन, कुरान करीम को अदब, खामोशी और तवज्जो के साथ सुनना अल्लाह ताला की रहमत के हुसूल का ज़रिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ख़ुद भी सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से कुरान करीम की तिलावत सुना करते थे, जिससे मालूम होता है कि कुरान सुनना भी बाइस से फजीलत है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फ़रमाया, मुझे कुरान सुनाओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कुरान सुना। बहवाला सही बुखारी व सही मुस्लिम शरीफ। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद पढ़ने, सुनने, समझने और उस पर अमल करने की

आज हम बात करेंगे सच और झूठ के हवाले से। सच्चाई जन्नत की तरफ ले जाती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है, जबकि झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह जहन्नुम की तरफ ले जाता है। बहवाला सही बुखारियों।

जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं झूठ के हवाले से। आइए इसी हवाले से चंद अकवाल समात फरमाइए। झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है, जबकि सच्चाई हर भलाई का रास्ता है। सच्चा इंसान लोगों के दिलों में जगह बनाता है और झूठा अपना एतबार खो देता है। झूठ वक्ती फ़ायदे दे सकता है, लेकिन सच हमेशा इज्जत और कामयाबी देता है। ईमान वाले की पहचान सच्चाई है और मुनाफिक की निशानी झूठ है। जो शख्स सच बोलने का आदी बन जाए, अल्लाह ताला उसके लिए आसानियां पैदा फरमाता है। झूठ दिल को सियाह करता है, जबकि सच दिल को नूर से भर देता है।

You're listening to RM3 Radio. My

भक्ति में शक्ति। प्रिय श्रोताओं, सादर अभिवादन। श्रोताओं, ईश्वर की सृष्टि में विराट के आधार पर प्रतिष्ठित विधान से मानव के हृदय में विराट भावनाओं का अभ्युदय होता है। इस तरह पृथ्वी और आकाश के बीच वह निष्कपटता, मधुरता, सरलता आदि गुणों को अपनाते हुए जीवन यापन करता है।

साथ गुजरे, उन्हें किसी बात की कमी ना रहे, जो मन की इच्छा हो उसे वे पूरा कर पाए। प्रत्येक व्यक्ति की कामना होती है कि अच्छे जीवन यापन के लिए उसे सारे साधन मुहैया हो जाए, और निसंदेह ऐसा सौभाग्य उन्हीं का होता है जिन पर ईश्वर की कृपा होती है। एक वही तो है जिनके आशीर्वाद से जीवन जीने योग्य बनता है।

श्रोताओ, परम सत्ता के प्रति जिज्ञासा की भावना मानव का धर्म बनता है। उसके प्रति आत्मसमर्पण और असीम निष्ठा जीवन की प्रमुख विशेषताएं हैं। परम सत्ता से भक्त का संबंध आत्मसमर्पण की भावना का प्रतीक है। यह संबंध आध्यात्मिक प्रेम से उत्प्रोत है। भक्त के स्वभाव में ईश्वर के प्रति अनुराग पूर्ण दृष्टिकोण के दर्शन होते हैं। भक्त के जीवन में ऐसी तारतम्यता का प्रयास रहता है जहाँ एक छोर में ईश्वर की आराधना होती है और दूजे में मानवतावाद का वास होता है।

श्रोताओ, भक्त जब भी व्यथित होता है वह अपने आराध्य के स्वरूप का स्मरण कर उसमें खो जाता है। आत्मनिवेदन और समर्पण के भाव से भक्त कृतकृत्य हो जाता है।

श्रोताओं, भक्तों के हृदय में साधना के साथ साथ हृदय की संवेदनाओं के सहज उद्गार प्राप्त होते हैं। ईश्वर का साथ प्राप्त कर इन्हें संवेदनाओं के परिष्कार से भक्त की भक्ति और गहरी होती जाती है। इस तरह ईश्वरीय प्रेम की तीव्रता का अनुभव बड़ी निकटता से भक्त कर पाता है।

श्रोताओं, दुख व्यक्ति को ईश्वर के निकट पहुंचाता है। दुख में व्यक्ति के हृदय का विस्तार होता है। सारे संसार को एक सूत्र में बांध रखने की क्षमता दुख में ही है, फिर भी हम मनुष्य दुखों से दूर भागते हैं। यहाँ रहस्य की बात यह है कि ईश्वर दुख में ही याद आते हैं और वे हमारा सहारा भी बनते हैं। सच तो यह है कि हमारे असंख्य सुख हमें चाहे मनुष्यता के पहले सीढ़ी तक भी न पहुंचा सकें, किंतु हमारा एक बूंद आंसू भी जीवन को अधिक मधुर, अधिक उर्वर बनाए बिना नहीं गिर सकता। मनुष्य सुख को अकेला भोगना चाहता है, परंतु दुख सबको बांटकर। जीवन की सच्चाई यही है कि यह दुख सहज संवेदनशील हृदय से मिलकर करुणा की सृष्टि करता है, और जहाँ करुणा है वहाँ ईश्वर का वास अवश्य होता है।

श्रोताओं, इस सुखमय संसार में आराधना के उपकरण द्वारा ही सारी बाधाएं समाप्त की जा सकती हैं और जीवन की नैया को पार किया जा सकता है। आज इतना ही, हमें आज्ञा दें।

一路风景，一路歌声，毛里求斯广播电台听众朋友上午好，欢迎收听周六音乐风景线。

长存凌云之志，不为世俗枷锁困住脚步，心怀理想，扬鞭上路，勇敢奔赴向往的旷野与自由。接下来请听踏马向自由。

0: आइए अभी के लिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपके साथ थी ना। नमस्कार आपको।
1: नमस्कार। संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। कापमालेगो में आज सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई। 20 साल की एक युवती की मौत हो गई जिसे कथित रूप से उसके प्रेमी की गाड़ी ने टक्कर मारी। पुलिस ने युवती को उसकी मोटरसाइकिल के पास घायल हालत में पाया। उसे तुरंत एसएसओ हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों ने उसकी मौत की पुष्टि कर दी। इलाके के सेफ सिटी कैमरों की जांच में कथित तौर पर दिखाई दिया कि एक कार युवती की मोटरसाइकिल का पीछा कर रही थी। जिस वाहन से टक्कर होने का संदेह है उसे कापमालेगो के एनएचडीसी पावियों इलाके में छोड़ी हुई हालत में बरामद किया गया। मृतक की 22 वर्षीय प्रेमी लुई दामिये अलेक्सांड को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। उसने जांच अधिकारियों को बताया कि वो वाहन चला रहा था और अपनी प्रेमिका का पीछा कर रहा था। उसका अल्कोहल टेस्ट निगेटिव आया लेकिन ड्रग टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। दूसरी खबर में जूनियर मिनिस्टर और सांसद वेरोनिक ले गोविन के पति गुलशन गोविन को रीयूनियन में लगभग 100 किलो जमा जब्ती मामले की जांच के सिलसिले में कल गिरफ्तार किया गया। उसे आज शनिवार को वीकेंड कोर्ट में पेश किया जा रहा है। इस बड़े घटनाक्रम से इस मामले को राजनीतिक और न्यायिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण मोड़ मिल गया है। अब सांसद के पति से पुलिस और जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही है। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वे प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस में विश्वास रखते हैं। फिलहाल जूनियर मिनिस्टर के इस्तीफे का कोई सवाल नहीं है। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि इस मामले में कोई भी कवर अप नहीं होगा। और कल रात 10 बजे के कुछ देर बाद राष्ट्रीय सभा में फाइनेंस बिल और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स मिसेलेनियस प्रोविजंस बिल संशोधनों के साथ पारित कर दिए गए। दोनों विधेयकों के जरिए 19 जून को पेश किए गए बजट 2026-2027 की घोषणाओं को कानूनी रूप दिया गया है। इस दौरान नेशनल पेंशन एक्ट सहित 80 से अधिक कानूनों में सुधार किए गए हैं। पेंशन रिफॉर्म से जुड़े संशोधनों पर सदन में तीखी बहस हुई। विपक्ष नेता जो लिजोंगा ने वोट बाय डिवीजन की मांग की और पार्टियां पर्यटन जूनियर मिनिस्टर सिडनी पियरा सरकार के एकमात्र सदस्य रहे जिन्होंने इस विधेयक के खिलाफ वोट दिया। वहीं विपक्ष के 5 सांसदों ने भी इसके खिलाफ वोट दिया। राज्यसभा के कार्य मंगलवार 4 अगस्त को दिन के 11:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। सिडनी पियरा को कल रात पर्यटन जूनियर मिनिस्टर के पद से हटा दिया गया। ये फैसला प्रधानमंत्री ने लिया क्योंकि नेशनल पेंशन एक्ट में सुधार के मुद्दे पर फाइनेंस बिल की चर्चा के

0: दौरानस सांसद सिडनीपिया ने सरकार की नीति के खिलाफ जाकर सुधार के विरुद्ध वोट किया था। शॉन सिडनीपिया की रिवोकेशन को स्टेट हाउस द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के माध्यम से आधिकारिक रूप से घोषित किया गया। फाइनेंस बिल पर बहस के समापन के दौरान प्रधानमंत्री डॉ नवीन रामगुलाम ने कहा कि पेंशन के टारगेटिंग को हटाने से होने वाली कमी को पूरा करने के लिए सरकार को अतिरिक्त 6.2 बिलियन रुपये की व्यवस्था करनी होगी। कॉमनवेल्थ गेम्स में मॉरिशस ने 2 मेडल्स जीते हैं। नोएमी अल्फोंस ने 1500 मीटर में सिल्वर मेडल हासिल किया, जबकि मेलवन क्लेयर ने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। और आज मॉरिशस समय अनुसार रात के 10:28 पर नोएमी अल्फोंस और रांडी पेरिन 400 मीटर की रेस में भाग लेंगी। विदेश में शांति योजना के द्वितीय चरण को लागू करने के लिए पिछले कई दिनों से मिस्र की राजधानी काहिरा में मध्यस्थों और हमास प्रतिनिधियों के बीच वार्ता चल रही थी। वार्ता के बीच गाजा पर इजरायल के हमलों में 2 बच्चों समेत 6 लोग मारे गए हैं। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: हेलो हेलो, टाइम चेक, दिन के 12:05 हुए हैं।
5: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
4: सभी दोस्तों को हेलो, नमस्ते और आदाब। आप लोग कैसे हैं जी? अभी आप जो हैं सब कनेक्टेड हैं अपने ही फेवरेट चैनल रेडियो मनोरंजन से, जहां यहां पर आप पुराने गानों का लुफ्त भी उठाएंगे। दोस्तों आज हम हैं 1 अगस्त एंड ऑफ कोर्स जुलाई के महीने को बाय बाय कीजिए और पॉजिटिव थॉट्स के साथ, सकारात्मक विचार के साथ अगस्त महीने को हेलो कीजिए। अगस्त महीने का शानदार रूप से स्वागत कीजिए और क्यों ना हो श्रावण का यह महीना सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, पॉजिटिव हो। और यह पावन महीना शुरू हो चुका है, तो क्यों आज का थीम हम जो है श्रावण अर्थात सावन रखते हैं। ऐसे अनगिनत खूबसूरत तराने हैं जिनमें सावन का जिक्र है, तो आज जो है हम सावन पर गाने चलाएंगे। आप भी जो है आज के कार्यक्रम में आपकी पसंद के गाने हमें ज़रूर बताइए सावन पर। तो चलिए हम आपको अपनी पसंद का गाना सुनाते हैं।

जी दोस्तों, बिल्कुल फिल्म मंजिल 1979 की फिल्म मंजिल से लिया आ गया यहाँ गाना। वाकई बारिश के अच्छे गानों में से एक है और इस गाने के बोल भी ऐसे लिखे गए हैं कि दुनिया में लोगों का प्यार पर विश्वास बढ़ जाए। लता जी की कोकिला सी जो आवाज़ में अलहर प्रेमिका की झलक सुनाई देती है, उस पर अमिताभ बच्चन और मुश्मी चटर्जी की जो स्वाभाविक फ्लोलेस एक्टिंग है, इट्स जस्ट वाओ। तो ज़रूर हमें भेजिए अपना डेडिकेशंस ऑन 5250620 पर या फिर 4028070 पर। हमारा थीम है आज सावन का महीना।

0: जी दोस्तों, हम यही पर हैं आपका मनोरंजन करने के लिए। रेडियो मनोरंजन पर सुहाना सफर कार्यक्रम चल रहा है अभी से लेकर 2 बजे तक। और जरूर जरूर जरूर आज का थीम है सावन।
1: सुहाना सफर।
0: जी दोस्तों, आज का पहला कॉलर है वकवा से फुलवंती जी, और आप फिल्म बंधन का गाना सुनना चाह रही है। और यही गाना जाएगा विशेषकर आपके पति देवानंद जी के नाम। बेटा है उषण, बेटी है भावना, आपकी बहन है अनीता, और पूरे बालगोविंद परिवार के नाम।

जी दोस्तों, सुहाना सफर कार्यक्रम यहाँ पर जारी है अनीता के साथ और श्यामा जी खोंगुप से जुड़ी हुई है और आप सुनना चाह रही हैं फिल्म बहू बेगम का गाना। और ऑफ कोर्स इसमें, इस गाने में, इस फिल्म में जो है आपने जो चुना है, जो गाना है, इसमें भी सावन है और आप सभी श्रोताओं को यही कह रही है कि सावन का महीना सभी के लिए मंगलमय हो, शुभ हो, मंगलकारी हो। और आप ये भी कहती है कि जो भी सावन के गाने यहाँ पर बज रहे हैं उनका ज़रूर लाभ उठाएं। और यही गाना आ जाएगा आपके भाई जयप्रकाश के नाम, भाभी नम्रता है, युधिष केशव अनेफ्योज हैं, साथ ही साथ आपकी सहेलियाँ हैं, वीना गामफल है, विश्वानी दुखी है और नंदिनी ओकलू है, तो उन सब के नाम यह प्यारा सा गाना।

0: सुहाना सफर,
1: सुहाना सफर
2: जी दोस्तों, सुहाना सफर कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है और काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्हें यहाँ थीम अच्छा लग रहा है कि आज हमने सावन पर जो है थीम रखा है और गाने बजवा रहे हैं और यहाँ पर औसनाल से वीना जी साथ दे रही है और आपकी फरमाइश है फिल्म मिलन का गाना और यही गाना जाएगा पूरे नंदू परिवार के नाम। आपकी बहन है अनीता, साथ ही साथ बनमिया से शीला जी ने यही गाना मांगा है तो शीला जी आपके पूरे मकुना परिवार के नाम यह गाना जाएगा और हमारे टीम के लिए भी आपने यह गाना मांगा, थैंक यू इसके लिए। तो ऑफ कोर्स वीना जी के नाम और शीला जी के नाम सावन का महीना पवन करे सोर।

0: करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

जी दोस्तों, जीवा इसे ढूंढे मानो मोर नाच रहा है सावन के महीने में। वेल दोस्तों, कहा गया है कि सही इंसान वो नहीं जो आपके जिंदगी में आकर आपको अपने प्यार में पागल कर दे, बल्कि सही इंसान वो है जो आपको आपसे प्यार करवा दे, जिसके साथ रह के आप

आपको लगने लगे कि आप जैसे भी हैं आप बहुत खास हैं। जी दोस्तों, इस सावन के महीने में किसी को खास बनाना है तो ऑफ कोर्स यू कैन सेंड योर मैसेजेस ऑन 5250-6200 पर या 4028070 पर। और आज हमने थीम रखा है सावन, तो जो भी गाने

करना चाहिए। और यहाँ पर बिंदु दुखित राम जी जो हैं कावा कास्या से जुड़े हुए हैं और आप सुनना चाह रही है फिल्म महबूबा का गाना मेरे सावन भादो। और यह गाना विशेष रूप से जाएगा आपके पति रमेश जी के नाम, पूरे दुखित राम परिवार के नाम ऑफ कहुआ कस्या। साथ ही साथ शातो दिवे नागरिक से ज्योति जी साथ देती रहती है हमेशा की तरह, और यही गाना जाएगा अश्नी रेखा सुरेखा और पूरे माधव परिवार के नाम। साथ ही साथ आपने हमारे लिए यहाँ गाना मांगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो चलिए अब लता जी को सुनते हैं मेरे नैना सावन भादो।

जी दोस्तों, आज का थीम है सावन। और अगर कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है सावन का गाना ढूंढने के लिए, तो थोड़ा सा आसान कर देते हैं। आज जो है, आप कुछ ऐसे गाने भी मांग सकते हैं जिसमें मेघा हो, बारिश हो, ये सब हो, तो इन सब गाने भी आप मांग सकते हैं। लेकिन काफ़ी गाने हैं सावन पर, लेकिन कुछ लोगों को बारिश अगर पसंद है, मेघ, तो ऑफ कोर्स यू कैन आस्क सॉन्ग्स ऑन बारिश, रेन, ये सब। और कहा गया है कि सावन का ये मौसम कुछ याद दिलाता है, किसी के साथ होने का एहसास दिलाता है। फिजा भी सर्द है, यादें भी ताजा है। ये मौसम किसी का प्यार दिल में जगाता है। जी दोस्तों, त्रियोले से कल्याणी जी साथ दे रही है और आपकी फरमाइश है फिल्म सावन को आने दो का टाइटल ट्रैक, और यही गाना जाएगा आपकी चार बेटियों के नाम, श्वेता, हर्षिना, श्रेष्ठा, नितिशा, पति विहन है और पूरे दुआओं परिवार है, साथ ही साथ छोटा सा वियंश है। और इसी गाने की मांग किसने की? सेबास्टोपोल से करुणा जी ने। और आप कहती है, होप यू आर डूइंग ग्रेट। थैंक यू मैम। यस, आई एम डूइंग ग्रेट एंड होप यू टू। और आप कहती है कि आज जो है आपकी शादी की सालगिरह है, 16 साल बीत गए, सो कंग्रेचुलेशंस आपको शादी की सालगिरह जो है कि ढेर सारी शुभकामनाएं। और यूं ही आप लोग इसी प्रकार प्यार से रहे। देखिए, शादी जब होती है नॉर्मली तो मन मुटाव, थोड़ी सी लड़ाइयाँ, थोड़ा सा झगड़ा, लेकिन ये तो होता ही होता है। लेकिन 16 साल आपने जो है एक साथ समय बिताया, जीवन बिताया, ये बहुत बड़ी बात है। और विशेषकर आज के युग में यह कम ही सुनने को मिलता है। सो हम

यही कहेंगे कि इसी प्रकार अपने प्यार को बरकरार रखिए। एंड आपने भी यह गाना मांगा है, सावन को आने दो, और यही गाना विशेष कर जाएगा हस्बैंड विक्रम के लिए। तो चलिए आप लोगों के नाम यह गाना, और साथ ही साथ यहाँ पर एक प्यारा सा मैसेज आया है रिया, और आप कहती है कि नेक्स्ट गाना फॉर मी एंड माय हस्बैंड रमेश। ऑफ कोर्स आप लोगों का जो है वेडिंग एनिवर्सरी है आज, आप लोगों का भी तो वेडिंग एनिवर्सरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड आप कहती है कि नहीं, कल है शादी की सालगिरह, और 28 years, वाओ। सो तो यहाँ पर निर्मला जी ने यह मैसेज भेजा नुवेल फ्रांस से, और आप सोच रही है मैं रिया हूँ, जी मैं रिया नहीं हूँ, मैं अनीता हूँ। कोई बात नहीं, हम आपका मैसेज रिया तक पहुँचा देंगे। तो निर्मला जी जो हैं नुवेल फ्रांस से, उन्होंने यह मैसेज भेजा है हस्बैंड रमेश के नाम, और आपके लिए वेडिंग एनिवर्सरी है कल 28 years, तो ढेर सारे शुभकामनाएँ आपको और आपके पति के लिए। एंड चलिए अब सावन को आने दो।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: जी दोस्तों, यहाँ पर काफी फोन कॉल्स आ रहे हैं। जी हाँ, हम लेंगे अभी। और यहाँ पर जो है गायत्री जी पिचिवेजे से साथ दे रही है। और आपकी फरमाइश है आया सावन झूम के, और यही गाना जाएगा भाभी मीरा के नाम। उनकी बेटियाँ हैं गिरीशा मेधा, कत्रबोन की बहन अमृता है, उनकी बेटियाँ हैं नेहा, शीति, दिव्या, बेटे सुधीर है, कमलेश है, बहू सुधा है। तो उन सब के नाम लता जी की आवाज़ में और साथ ही साथ मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में यह गाना जाएगा। और इसी गाने की मांग रिव्या जोहोंपो की माला जी ने की है, और यह गाना जाएगा कनील कविश, कनीश, केविन, सत्यम, किरण, स्वयं आपके लिए माला जी और शिव के लिए यह गाना जाता है।

जी दोस्तों, यहाँ पर माधुरी जी साथ दे रही हैं और आप कहती है कि आपके भाई रवि जी क्यूपी पे से हैं और आज उनका जन्मदिन है, 7 साल के वे हो गए हैं, तो ढेर सारे शुभकामनाएं उनको और यूं ही वे सही सलामत रहे। और इसी प्रकार यहाँ पर उषा जी ब्रह्मस्थान से अपने भाई रवि गोवर्धन जी को ढेर सारे शुभकामनाएं दे रहे हैं, आज उनका भी जन्मदिन है, 7 साल के वे हो गए हैं, गांव साबल से वे हैं, तो ढेर सारी शुभकामनाएं सब बहन और भाई की तरफ की ओर से। और हम यही दुआ करते हैं कि रवि जी आप स्वस्थ रहे, खुश रहे। और इसी गाने के साथ हम बढ़ेंगे 1 बजे के समाचारों की ओर और उसके बाद हम कार्यक्रम को जारी रखेंगे।

साथ ही साथ रवि गोवर्धन जी, आपको भाभी रेशमा अर्थात आपकी पत्नी बेटी याशिका और याशना, साथ ही साथ दो दामाद की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।

0: संक्षिप्त समाचार के साथ उपस्थित है स्टूडियो में गीता जी, नमस्कार आपको।
1: नमस्कार मनीषमा, सभी को हमारा नमस्कार। काप मालोगे में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा पेश आया। 20 साल की एक युवती की मौत हो गई, जिसे कथित रूप से उसके प्रेमी की गाड़ी ने टक्कर मारी। पुलिस ने युवती को उसकी मोटरसाइकिल के पास घायल हालत में पाया। उसे तुरंत SSON अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसकी मौत की पुष्टि की। युवती के 22 वर्षीय प्रेमी लुई डामिया अलेक्जेंड्र को बाद में गिरफ्तार किया गया। उसने जांच अधिकारियों को बताया कि वो गाड़ी चला रहा था और अपनी प्रेमिका का पीछा कर रहा था। उसका अल्को टेस्ट निगेटिव आया, लेकिन ड्रग टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। जूनियर मिनिस्टर और सांसद वेरोनिक ले गोविंद के पति गुलशन गोविंद को रेनियन में लगभग 100 किलो गांजा जब्ती मामले की जांच के सिलसिले में कल गिरफ्तार किया गया। उसे आज वीकेंड अदालत में पेश किया जा रहा है। सिडनी पियर को कल रात जूनियर पर्यटन मंत्री के पद से हटा दिया गया। ये फैसला प्रधानमंत्री ने लिया क्योंकि नेशनल पेंशन एक्ट में सुधार के मुद्दे पर फाइनेंस बिल की चर्चा के दौरान सांसद सिडनी पियर ने सरकार की नीति के खिलाफ जाकर सुधार के विरुद्ध वोट किया था। फाइनेंस बिल पर बहस के समापन के दौरान प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम ने कहा कि पेंशन को हटाने से होने वाली कमी को पूरा करने के लिए सरकार को अतिरिक्त 6.2 बिलियन रुपए की व्यवस्था करनी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और इस कमी को पूरा करने के लिए अन्य उपाय लागू करने होंगे। और विदेश खबरों में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल वाली शांति योजना के अनुसार हमास कुछ शर्तों के साथ हथियार डालने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन इसराइल ने अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
2: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
5: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
6: जी दोस्तों, सुहाना सफर कार्यक्रम में फिर से आप लोगों का स्वागत है यहाँ पर रेडियो मनोरंजन की लहरों पर। यहाँ पुराने गीतों का सिलसिला चल रहा है और अनीता साथ दे रही है। वेल दोस्तों, हमने कहा है कि आज का थीम है सावन, बारिश, मेघ। इस पर आप जो है गाने जो है कि मांग कर सकते हैं आप लोग। और कहा गया है कि बादलों से कह दो, बादलों से कह दो जरा सोच समझ कर बरसे, अगर मुझे उनकी याद आ गई तो मुकाबला बराबरी का होगा। और सरिता जी का मैसेज आया है गुडलैंड से। हेलो जी, नमस्ते जी, नमस्ते।

और आप कहती है फिल्म मेरा गांव मेरा देश फिल्म का गाना आपने मांगा है और यही गाना आपके पूरे परिवार के नाम और सभी सुनने वालों के नाम जिन्हें यह गाना पसंद है और सभी को सावन का महीना की बहुत बहुत शुभकामनाएं ओम नमः शिवाय आपको भी सरिता जी और यही गाना जाएगा पाई की नंदा जी के लिए और उनके पति है दीपक उनके चार बच्चे हैं अविनाश अभिषेक अरविना अशील नाती गोलू है अरवी है और नई दुल्हन है गणेश परिवार है पुनीता परिवार है तो आप सब के नाम यह प्यारा सा गाना कुछ कहता है दिल कह दीजिए ना आज मौका है दस्तूर है समा है ऊपर से सावन के गाने

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर
1: जी दोस्तों, कुछ कहता है सावन। और यहाँ पर मोताई ब्लॉश से नवीन जी साथ दे रहे हैं। और चूंकि आप आशा जी के ज़बरदस्त वाले फ़ैन हैं और आप सावन के गाने ढूंढ रहे हैं, तो आपको मिला है फिल्म नमक हलाल का गाना आज रपट जाए तो। ओके, बारिश का गाना है तो चला लेते हैं आपके लिए। और आपका मैसेज है कि रंजीत जो हैं और उसके पापा रंजीत बोयराम और उनके पापा जो हैं ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप उनसे कह रहे हैं कि धीरे धीरे हौले हौले चलिए क्योंकि ट्रैफिक जो है काफ़ी है सड़कों पर, तो ज़रा ध्यान से प्रिकॉशंस। तो चलिए यह गाना आप सब के नाम किशोरदा और आशा जी की आवाज़ों में।
2: अरे अरे अरे ना ना ना ना ना, ना, ना।

L'Espérance Trébuchet, c'est Manoj Sohan ji साथ है दे रहे हैं और आप कहते हैं कि फूल खिलते हैं डालियों पर, फूल खिलते हैं डालियों पर, दिल खिलते हैं शरीर में और आप एंजॉय कर रहे हैं हमारा कार्यक्रम रेडियो मनोरंजन पर। थैंक यू इसके लिए जी और आपके ब्लेसिंग्स के लिए थैंक यू। और आप सुनना चाह रहे हैं फिल्म प्यासा सावन का गाना और यही गाना विशेष कर जाएगा आपकी प्यारी पत्नी नजीमा के नाम, पूरे सोहन परिवार के नाम, L'Espérance Trébuchet से सोहन परिवार के नाम, साथ ही साथ गया सिंह आश्रम में जितने भी बुजुर्ग हैं वहाँ पर जो हमें सुन रहे हैं उनके नाम यह गाना जाएगा और अस्पताल में जितने भी बीमार लोग हैं तो उनको कुराज कहेंगे, यह समय यह वक्त कथी जाएगा। साथ ही साथ काठरबोन से प्रमिला जी साथ दे रही हैं और आप कहती है कि आज आपकी बेटी और आपकी बेटी विद्या और आपके दामाद प्रवेश जी की शादी की सालगिरह है तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। यूं ही आप दोनों का सफर बरकरार रहे, खुशियों से भरे और चाहे परिस्थिति जो भी हो आप एक साथ उसका सामना करें। ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों के बेटों की ओर से, ट्विन्स हैं आप

के तो निर्वाण है, विहान है, देवनारायण परिवार है, विशेषर परिवार है, मोहल परिवार है, सभी बहनें भाई सभी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको।

और कनाडा से किरणपुरी जी साथ दे रहे हैं और आप कहते हैं रेनी इन कनाडा। हेलो सर, हाउ आर यू डूइंग?

यस दोस्तों, लता जी और सुरेश वाडकर जी की आवाजों की जो कॉम्बिनेशन थी, इट वाज जस्ट वाओ। वेल दोस्तों, मैं देवी चित्रलेखा जी की एक रील देख रही थी और मुझे यहाँ रील इतनी अच्छी लगी तो मैंने सोचा इसको आप लोगों के साथ ज़रूर मुझे शेयर करना चाहिए। वह कहती है कि चिंता करे तो मिले बीमारी, चिंता करे तो मिले बीमारी और चिंतन करे तो मिले बिहारी। जी दोस्तों, यहाँ लाइफ, यहाँ ज़िंदगी ऐसी ही है कि यहाँ चीज़ें हमेशा बदलने के लिए बनी हैं। चीज़ें बदलती हैं, रिश्ते बदलते हैं, लोग बदलते हैं, सिचुएशंस बदलती हैं, लेकिन उन हालातों, उन परिस्थितियों में भी एक इनर स्ट्रेंथ, एक शक्ति जो होती है वो सबसे ज्यादा मैटर करती है, वो सबसे ज्यादा जरूरी होती है। और वो जो स्ट्रेंथ है, जो शक्ति है, वो आपको बाहर के लोगों से, बाहर के हालातों से या एक्सटर्नल प्रोडक्ट से नहीं मिलेगी। इसलिए आज लोग सबसे ज्यादा दुखी हैं क्योंकि वो शक्ति को, उस शक्ति को, स्ट्रेंथ को बाहर से एक्सपेक्ट करते हैं, बाहर से पाने की कोशिश करते हैं। अतः लोगों को यदि शांति चाहिए, यदि चीजों का, हालातों का समाधान चाहिए तो अंदर झांक कर ढूंढिए। आपको जरूर उसका हल मिलेगा, आपकी इनर पीस आपको अंदर से ही मिलेगी। जी दोस्तों, यहाँ पर किरणपुरी जी ने हमें भी हेलो कहा एंड आप कहते हैं आप अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं जी, थैंक यू। एंड यू आर सेइंग हेलो टू ऑल लिसनर्स, थैंक यू कि आप हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और मोदालबिया से अनिता जी साथ दे रही हैं और फिल्म भयानक का अगला तराना सभी दोस्तों के नाम अमृता है, करुणा है, स्वयं आपके लिए, तो चलिए सभी दोस्तों के नाम यह गाना हेमलता जी की आवाज़ में।

जी दोस्तों, क्यूपिप से नहीं ब्रिटानिया से चांदनी पुरुषोत्तम जी साथ दे रही है और आप सुनना चाह रही हैं फिल्म बलमा का गाना ये मौसम भी आया वो मौसम भी आया। तो आपके नाम यह प्यारा सा तराना।

जी दोस्तों, हम तो हर हफ्ते ही मिलते हैं और पिछली वेरे से अनीता जी साथ दे रही हैं और आप सुनना चाह रही हैं फिल्म रोटी कपड़ा और मकान का गाना। बहुत ही खूबसूरत गाना है। तो यह गाना आपके नाम। हाय हाय, ये मजबूरी।

प्लेंडे होस्ट से तनुष जी साथ है दे रहे हैं और आप कहते हैं आपका प्रोग्राम लाजवाब है। थैंक यू जी, आप प्लेंडे होस्ट से हैं और हम किरण है,

किरण है और प्रोफाइल में लिखा है तनुष है। तो शायद निकनेम तनुष है लेकिन यहाँ पर किरण आपने लिखा है। तो किरण जी, अगला गाना आपके नाम और सभी लिसनर्स के नाम।

0: सुहाना सफर
1: जी दोस्तों, यहाँ पर फिल्म धरती का गाना जो है उसकी रिक्वेस्ट आई है बाय किरण पुरी, जे जे लाल, नरेंद्र कुमार निंडी, काला राम कारीगर। होपफुली कि मैंने नाम ठीक से लिया, आप लोगों के नाम यह गाना जाता है। फिल्म धरती का गाना ऑफ कोर्स लता जी एंड मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ों में, और विमला जी, विमला ऑफ गांव जी साथ दे रही हैं। आपने भी जो गाना मांगा है वो

नहीं मिल रहा है, अफसोस, हम क्षमा प्रार्थी हैं। इसलिए फिल्म धरती का गाना हम आपके नाम कर रहे हैं और आशा करते हैं कि आपको यह गाना ज़रूर पसंद आएगा।

0: सुहाना सफर।
1: जी दोस्तों, कार्यक्रम जो है समाप्ति होने वाला है और जिन लोगों को लाइन नहीं मिली है उन लोगों को कहेंगे अगले सप्ताह ज़रूर फ़ोन करना। और यहाँ अगला गाना जो है जाएगा विशेषकर प्रकाशवती जी के नाम, जो बेल्जियम से सुन रही है और उनकी फरमाइश है फिल्म मोहरा का गाना। और यहाँ पर देख रहे हैं एक मैसेज है रिव्या डुपोस से, वीना जी जो है साथ दे रही है, आपने जो गाना मांगा है वो भी अभी नहीं चला पाएंगे, अगले गाने में ही आपका नाम हम जोड़ रहे हैं। बाबू अनंतवा है कठोरबोन से और हरीश जी है बोबासन से। तो जितने लोगों ने आज फोन वे नहीं कर पाए तो उनके नाम यह अंतिम गाना जाता है। और अगले सप्ताह फिर से हम मिलेंगे, हमारी मुलाकात होगी सुहाना सफर कार्यक्रम में।

0: संक्षिप्त समाचार सुनते हैं गीता जी के साथ, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार हंसिनी, सभी को हमारा नमस्कार। दशकों तक मॉरिशस की आर्थिक वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक विशेष पहुंच, अनुकूल कर व्यवस्था और कम लागत वाले श्रम बल पर आधारित रही, लेकिन अब ये सभी फायदे धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए विजन 2050 परियोजना ने मॉरिशस में अब तक कम विकसित दो क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया है, ब्लू इकोनॉमी और जीवन विज्ञान तथा फार्मास्यूटिकल उद्योग। लक्ष्य है साल 2050 तक मॉरिशस की अर्थव्यवस्था का आकार 15.2 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 50 बिलियन डॉलर तक करना। एनजीओ एंड एंड्रेल की पहल पर आज आयोजित एक वनरोपण अभियान में स्वयंसेवकों, छात्रों, परिवारों और युवा आर्थिक सदन के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अभियान के दौरान हाल ही में हुई एक असाधारण खोज भी सामने आई। इस स्थल पर माकाक नाम का एक दुर्लभ स्थानीय पेड़ हाल ही में पहचाना गया है। ये प्रजाति केवल मॉरिशस में पाई जाती है और अत्यंत ही दुर्लभ मानी जाती है। स्कॉटलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ खेलों में मुक्केबाजी प्रतियोगिता का समापन कल रात हुआ। मॉरिशस के आखिरी प्रतिनिधि मेवेन क्लेयर ने इन खेलों का अंत ब्रॉन्ज पदक जीतकर किया। वे कॉमनवेल्थ खेलों में पदक जीतने वाले दूसरे मॉरिशन खिलाड़ी बन गए हैं। कल रात खेले गए सेमीफाइनल में मेवेन क्लेयर को वेल्स के ओलांडो हॉली सुटोमी ने हरा दिया। स्पेन और मोरक्को के बीच चल रहे सेउटा सीमा संकट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 67 हो गई है। स्पेन की सरकार ने शनिवार को ये जानकारी दी कि मारे गए लोगों में से कुछ की मौत समुद्र में डूबने से हुई। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
2: Your news on NBC Play.

इतिहास के झरोकों से। नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आपने बहुत सुंदर गीत भी सुने और आप हमारे साथ जुड़ सकेंगे 4028070 पर रेडियो मनोरंजन RM3। तो श्रोताओं, आज इतिहास के झरोखों से जब हम झांकें तो यह जो सावन का महीना या श्रावणी मास जो शुरू हुआ, वह ज़रूर कुछ चेतना में आता है कि इतना प्यारा महीना, जिस महीने में व्यक्ति कुछ आध्यात्मिक चीज़ों के साथ जुड़ता है और वर्ष भर वह जो अपना मनोरंजन, परिवार, ये सब कुछ करता है, तो ये एक महीना ऐसा है जिसमें उसको अपनी आत्मा के विकास के लिए कुछ काम करना है। तो श्रावणी एक और तो सुनने का महीना, दूसरा सावन वर्षा का महीना, और सभी के अपने विश्वास के मुताबिक, जैसे मान लीजिए जो लोग वैदिक हैं, जो लोग आर्य समाज धर्म को मानते हैं, वे लोग सत्यार्थ प्रकाश का पठन पाठन करते हैं और संतों को बुलाकर उनके प्रवचन सुनते हैं। ठीक ऐसे ही इस तरफ जो शास्त्र इत्यादि का अध्ययन करने में कुछ लोग रामचरित मानस को भी लेकर इस मास में उसका मास पारायण भी रखते हैं और घर में भी

0: पढ़ते हैं। तो श्रोताओं, ये जो रामचरित मानस है ना, अगर इसको इतिहास के झरोखों से झांके तो ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसका अपना इतना बड़ा वजूद है कि उसे आज तक कोई धुंधला नहीं कर पाया है। बहुत से लेखकों ने तुलसीदास के बाद भी रामचरित मानस पर बहुत कुछ लिखने की कोशिश की, लेकिन जब केशव ने रामचंद्रिका लिखी तो साहित्य जगत ने उसे काव्य कला का प्रेत कह दिया। आप सोचो, अब काव्य कला का प्रेत मतलब उसने तो अपनी तरफ से रीति काल में इतना कठिन लिखा कि एक एक पंक्ति में 10-10 अलंकार डाल दिए। ऐसे में श्रोताओं, उसको समझना, अपने गले के नीचे उतारना या जन समुदाय के लिए गाना बहुत ही कठिन था। तो वह पुस्तक केवल एक कोने में साहित्यकारों के लिए रह गई कि कक्षा में कुछ चीज़ें पढ़ा दी जाएं या यूनिवर्सिटी में बता दिया जाए कि हाँ, केशव जैसा कवि हुआ जिसे काव्य कला का प्रेत कहा गया, उसने रामचंद्रिका लिखी। श्रोताओं, तुलसीदास ने जो रामचरित मानस लिखी वह केवल मॉरिशस तक ही नहीं पहुंची, भारत का तो प्राण वह है ही है। इसके साथ साथ जहाँ जहाँ भी भारतीय गिरमिटिया लोग गए, उनके साथ साथ राम कथा और राम कथा को गाने वाली रामचरित मानस पहुँची। तो मॉरिशस में रामचरित मानस हम लोग जाते हैं, यहाँ तक कि जन्म से लेकर मृत्यु तक के प्रसंगों में रामचरित मानस हमारे साथ रहती है। मरते भी हैं तो देखो, शव पड़ा होता है। तो अयोध्या कांड का वह प्रसंग हम सब पढ़ना पसंद करते हैं जहाँ पर राजा दशरथ की मृत्यु होती है और वे स्वर्ग सिधारते हैं, अर्थात जीवन के हर चीज़ में वो राम कथा का प्रतिबिंब हमारे जीवन पर है। यहाँ तक कि हल्दी गीत हो, परछावन गीत हो, या दूल्हा दुल्हन जिस समय शादी के लिए हैं तो उसे राम और सीता के रूप में हम देखते हैं। तो श्रोताओं, रामचरितमानस या राम कथा के झरोखे तो मानो इतिहास के पन्नों में कालखंड से भी परे हैं। अब वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि ने ऐसे पुरुषोत्तम चरित्र का चुनाव किया जिस पर बाद में तुलसीदास ने भी रामचरितमानस लिखी। वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है, लेकिन रामचरितमानस अवधी भाषा में है जो अयोध्या की बोली रही है। तो श्रोताओं, उसी रामचरितमानस को लेकर लोग अपने साथ दूसरे देशों में गए, वे चाहे गिरमिटिया के रूप में गए या बाद में भी गए हों। वह जो रामचरितमानस की परंपरा है, उसके जो इतिहास की खिड़कियां हैं, उसे हम अपने बच्चों के लिए भी खोलना चाहते हैं ताकि हमारे बच्चे भी उसके बारे में जान सके। तो श्रोताओं, मॉरिशस के बारे में तो हम सब जानते हैं कि कैसे मासपारायण होता है। अब तो यहाँ तक मंडलियाँ हैं जो रामायण गाती हैं और कॉम्पिटिशन्स होते हैं, और ये लोग जो जीतता है, कभी कभी भारत जाने का टिकट भी मिलता है। गांव-गांव में बच्चों की मंडलियाँ हैं, परंपरागत रूप में गाने वाले हैं, कुछ नए रागों में भी गा रहे हैं। अर्थात वो जो रामचरित मानस की जो खिड़की इतिहास से खुलती है, वह आज तक मानो अपनी हवाओं को हमारे साथ लेकर आती है। तो श्रोताओं, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि यह जो गिरमिटिया समाज दूसरे देशों में गया, वहाँ पर भी रामचरितमानस का कैसे कैसे प्रचलन है। तो चलिए, इसके बाद हम आपसे मिलते हैं।
1: इतिहास के झरोखों से

श्रोताओं, जब इतिहास के पन्नों में झांकते हैं तो 1834 से 1920 तक ये जो भारत के इतिहास के पन्ने थे, 1834 श्रोताओं जानते हैं ना आप, 1833 में पूरी दुनिया में गुलामी की प्रथा ख़त्म हो गई थी। लेकिन अब जिनको नौकर बना के रखने की आदत हो और जो शोषण करके अमीर हो रहे थे, कैसे गाड़ी चलाते, तो एक नया छद्म रूप, मतलब एक भेष नया बनाया गिरमिटिया मजदूरों को लाने का। कहा गया कि हम शर्त बंद मजदूर लाएंगे, वे लोग अपनी आज़ादी से आएंगे, एक शर्त के अंतर्गत, एक एग्रीमेंट के अंतर्गत। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये जो एग्रीमेंट शब्द था, वे ग्रामीण लोग बोल नहीं पाते थे, ये एग्रीमेंट शब्द बिगड़ के गिरमिटिया बन गया। आज दुनिया की जो वर्ल्ड डिक्शनरीज हैं उसमें भी ये गिरमिटिया शब्द आ चुका है, और ये अपनी ज़रूरत के मुताबिक पैदा हुआ था। तो मॉरिशस में तो 1834 से आने शुरू हो गए थे, और पहला जहाज़ पहले गिरमिटिया जत्थे को 36 लोग जिसमें थे लेकर आया था, और यहाँ पर आप्रवासी घाट की 16 सीढ़ियाँ उन लोगों ने चढ़ी थी। उन सीढ़ियों को आज भी हम याद करते हैं। इसी तरह से ब्रिटिश गयाना, वहाँ पर भी ब्रिटिश लोगों का ही साम्राज्य था, वहाँ पर 1838 में 4 साल बाद वहाँ पर भी शर्तबंद मजदूरों को ले जाया गया। और फिर त्रिनिदाद, वहाँ पर 1845, और दक्षिण अफ्रीका में 1860, हमारी आज़ादी के 8 साल पहले, और सूरीनाम में 1873, और फिजी 1879। तो इतिहास के पन्नों में ये सन थे जहाँ पर अनुबंधित या गिरमिटिया

या एग्रीमेंट के अंतर्गत मजदूर भेजे गए। अब वे लोग वहां गए तो सही, क्या लेकर जाते? आप सोचिए, गठरी में आप कितना सामान लेके जा सकते हैं। फिर भी बहुत कुछ पहुंचा, और आज तो हम म्यूजियम में उन सामानों को देखकर कल्पना करते हैं कि किचन का सामान, श्रृंगार का सामान, और कभी कभी तो मैंने देखा म्यूजियम में एक पानदान भी मुझे दिखाई दिया। तो ये इस गठरी को जहाजी बंडल कहते थे, मतलब एक बंडल बांध के जैसे बेचारे निकले थे, और ऐसे ही आपस में एक दूसरे को जहाजी भाई कहते थे। जो अनपढ़ थे उनके पास तो उनके मन में, स्मृति में मानस की पंक्तियाँ थी, जैसे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन न जाई आदि आदि। और जो कुछ थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे वे अपने साथ रामचरित मानस की कुछ प्रतियों को लेकर आए। सोचिए श्रोताओं, इतिहास के झरोखों में जब हम झांकते हैं तो वहाँ से एक ठंडी हवा आती है कि कुछ नहीं था लेकिन मानस हमारे पास थी, राम जी हमारे पास थे, राम कथा हमारे पास थी, जो बाद में उनके दुख सुख की साक्षी बनी। और जो नई संस्कृति जिसकी जड़ भारत था या भारतीय संस्कृति थी वहाँ पर खड़ी हुई। तो श्रोताओं, इतिहास हमें बताता है कि ये जो गिरमिटिया समाज था, रामचरितमानस उसकी ताकत थी। और ये अनुबंधित श्रमिक दक्षिण भारत के विशाखापट्टनम, कोयम्बतूर, तंजौर, तिरुचिरापल्ली, मद्रास, और इधर पूना, सतारा, नागपुर, और उधर आजमगढ़, इलाहाबाद, सुल्तानपुर, गाजीपुर, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार, और वहाँ से जो भाषा वे लोग लाए, कुछ लोग अवधी बोलते थे, कुछ भोजपुरी बोलते थे, कुछ मारवाड़ी और कुछ मगही, लेकिन मॉरिशस में ज़्यादा भोजपुरी बोलने वाले लोग पहुँचे। और अच्छा लगता है कि पोर्ट लुइस के बाज़ार के कितने पुराने चाइनीज़ व्यापारी भोजपुरी में बात करते हैं, आज भी वे लोग भोजपुरी में बोलते हैं। तो ये जो भोजपुरी भाषा थी वो मानो व्यापार की, परस्पर व्यवहार की, एक दूसरे से राम राम करने की भाषा बनी। सब जानते हैं कि बहुत मेहनत ये लोग करते थे, कभी कभी तो बेचारों को मार भी खानी पड़ती थी, लेकिन इन्होंने अपनी बैठकाएँ बनाई और वहाँ बैठकर ये लोग जहाँ अपना सुख दुख बाँटते वहाँ पर रामचरितमानस की भी चर्चा करते। और रामचरितमानस तुलसीदास ने इसीलिए तो जनभाषा में लिखी थी कि पढ़ने वाले गाने वाले को कोई परेशानी ना हो, वे लोग जब इसे गाएं, इसे बोलें तो आराम से बोल सके, गा सके, और राम कथा उनके सुख दुख की कथा होनी चाहिए। तो बस रामचरितमानस उन सब की नैया की खिवैया बनी।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: इतिहास के झरोखों से
2: श्रोताओं, ये झरोखा बड़ा ही प्यारा है, दिल को छूने वाला है। कुछ खिड़कियां होती हैं ना, उनके जब दरवाजे खोलो खिड़कियों के, तो एक ठंडी हवा आती है और बहुत ही अच्छी लगती है, और उन खिड़कियों से दृश्य भी बहुत ही मन को लुभावने से लगते हैं। हम कभी कभी 15 मिनट भी खड़े होकर बाहर के दृश्य देखते रहते हैं। तो रामचरित मानस भी जो इन गिरमिटियों के साथ गई, उसके झरोखों में जब हम झांकते हैं तो हम पाते हैं कि ये जो जहाजी भाई थे, इनको बहुत समानता उसमें दिखती थी। वे सोचते थे राम को भी तो 14 वर्ष का वनवास मिला, वे तो राज्य छोड़कर निकले थे, तो शायद हम भी अपनी अवधि जब पूरी हो जाएगी तो देश लौटेंगे और हमारे भी दुख कम होंगे। नंगे पैर थे ये लोग और कुछ साधन नहीं थे, बस वन का वातावरण भी उसी तरह से था, सब तरफ पत्थर पेड़ यही कुछ था। तो ये लोग बार बार सोचते थे कि शायद हम राम के वंशज हैं, तो हम भी उनसे सीख ले रहे हैं। रामायण की बात तो राम जब मॉरिशस में करते हैं तो ये गिरमिटिया देश मॉरिशस को मारीच देश कहते थे। अब मारीच जिसने रावण का सहयोग दिया था राम को दूर ले जाने में एक हिरण बनकर, तो धोखा, तो मारीच से उनका मतलब वही धोखा, और सचमुच उन्हें धोखा ही मिला था। ऐसे फिजी में रामायण को रामायण महारानी कहते हैं और सूरीनाम को श्री राम देश, जो बाद में सूरीनाम बन गया, पर ये गिरमिटिया लोग उसे श्री राम, सूरीनाम नहीं श्री राम देश कहते थे। जैसे मॉरिशस का नाम तो मॉरिशस है, लेकिन गिरमिटिया लोग इसे मारीच देश कहते थे। तो श्रोताओं, आप देख रहे हैं ना, फिजी में रामायण महारानी और सूरीनाम में श्री राम देश और मॉरिशस मारीच देश, और बस चौपाइयों को गाते गाते अवधी भाषा में कुछ ठीक कुछ गलत उच्चारण भी, पर यह उनके दिल को बहुत तसल्ली देती थी। अब मॉरिशस की स्थितियों में तो आप सभी को पता है, बैठकाओं में जब बैठते थे, गौरी शिव शंकर के मंदिर वा रि शिव पूजे, गौरी शिव पूजे हो रामा, मतलब हम सभी जानते हैं शिव राम की उपासना करते हैं और राम शिव की करते हैं।

तो शिव और राम के नाम एक साथ ही चलते हैं। तो इस तरह से उन सब में राम नाम, यहाँ तक कि वो जो बैठका में जो पूजा शुरू होती थी, पढ़ाई शुरू होती थी, राम गति देहु सुमति सर सर सर सर संझाकारी सोने रूप गिरवर धारी जे जाने गिरवर के भेद नित उठ पूजे गणपत देव। तो शुरू होता था राम गति देहु सुमति से। तो इस प्रकार से अब जब रामायण गाते थे, तुलसी मगन भल हरि गुण गाए के, हरि गुण गाए के, राम चले वन को भरत चले घर को, तुलसी मगन भय हरि गुण गाए के। ये सब पंक्तियाँ वे रामचरितमानस, देखिए ये लोकगीत हैं जो रामचरितमानस की पंक्तियों को गाते समय वे लोग गाया करते थे। तो हम देखेंगे कि इस तरह से ये जो चीज़ें हैं, ऐसे ही कौशल्या माता की सेवा के लिए, फिर जाहू ऐ सीता फिर जाहू घर के लवटी जाव हो, मतलब वनवास के लिए मना कर रही हो, घर पर रहो, माँ कौशल्या की सेवा करो। तो रामचरितमानस ने जीवन को बहुत प्रभावित किया। यदि हम त्रिनिदाद और गयाना की बात करें तो वहाँ पर भारत से हजारों मील दूर काला पानी के पार छोटा सा एक कैरेबियन द्वीप है, जहाँ मान लो तुलसी और रामचरितमानस के बीज इन लोगों ने बो दिए, जो आज उनके बच्चे भी उसका स्वाद चख रहे हैं। और जो कुली जहाजी बंडल या अपनी पोटली लेकर आए थे, उसमें इन लोगों ने यही सब ग्रंथ अपने साथ लिए थे, जिसमें विशेष रूप से राम कथा या रामचरित मानस है। जैसे बनारस में मानस कथा होती है, उसी तरह से आज भी कैरेबियन क्षेत्र त्रिनिदाद और गयाना में वे लोग मानस कथा करते हैं, सामूहिक रूप से राम कथा का भजन और उसके बाद सबको भोजन दिया जाता है। ऐसे ही झाल रामायण और गयाना में रामायण बानी इसे कहा जाता है। तो श्रोताओं, सचमुच न केवल मॉरिशस, जहाँ जहाँ हमारे गिरमिटिया बंधु गए, वहाँ पर राम कथा और रामचरितमानस इतिहास को लेकर पहुँच ही गए।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: इतिहास के झरोखों से
2: और श्रोताओं, जब आगे बढ़ते हैं दक्षिण अफ्रीका की ओर, वहाँ भी कम स्थितियाँ कठिन नहीं थी। वहाँ पर भी वे लोग तैयार थे अपनी संस्कृति को कठिन परिस्थितियों में भी जिंदा रखने के लिए। श्रोताओं, ये क्यों होता है? जब हम एक ऐसी संस्कृति से जुड़े होते हैं जो हजारों हजारों साल पुरानी होती है, जैसे बरगद का पेड़ होता है ना, उसकी जड़ें इतनी गहरी होती हैं और जो नई डाली निकलती है वह भी जड़ बन जाती है। ठीक यही भारतीय संस्कृति है। जहाँ जहाँ भी भारतीय गिरमिटिया गए, वहाँ वे मानो बरगद की वे डाली बने और वहाँ पर जाकर भी वे फले फूले और फैले। आज देखिए, सारे गिरमिटिया मजदूरों की संतानें अपनी संस्कृति से भी जुड़ी हुई हैं और उन्होंने अपना विकास भी किया है। अब यहाँ पर कलकत्ता और मद्रास से ज़्यादा लोग पहुँचे थे। जो हिंदू थे वे तुलसी रामायण लेकर गए थे, और तेलुगु भास्कर और रंगनाथन की रामायण पढ़ते थे, और उधर जो तमिल समुदाय था वो कंब रामायण पढ़ते थे। मतलब दक्षिण अफ्रीका में रामायण का एक रूप नहीं, हर भाषा के लोगों ने अपने अपने वर्ग की रामायण का अध्ययन किया। हिंदी भाषा के प्रचार के लिए रामचरितमानस मील का पत्थर सिद्ध हुई। आज भी वहाँ पे हिंदी शिक्षक संघ का जो सिलेबस है उसमें रामचरितमानस की पंक्तियाँ या उसके कांड के कुछ अंश को बच्चों को पढ़ाया जाता है। इन लोगों ने सोचा कि यदि रामचरितमानस बची रही तो हमारी संस्कृति भी बची रहेगी। फिर इसके साथ साथ कृष्ण भक्ति के गीत, ब्रजभाषा में कबीर के और अन्य संतों का इन लोगों ने नेटाली हिंदी के रूप में हिंदी को विकसित किया, और धीरे धीरे यही नेटाली हिंदी इन लोगों के लिए मानो आधार बन गई। और वहाँ पंडित रामनाथ शुक्ल उनकी एक रचना का उदाहरण देते हैं। भज राम नाम शुभ नाम प्रभु का नाम, वह है अति प्यारा दुनिया का है आधारा। इस तरह के भजन वे लोग गाया करते थे, और गीता, रामायण, हनुमान चालीसा और ख़ास करके सुंदरकांड का पाठ वहाँ पर काफ़ी होता है। और बहुत सी स्वैच्छिक जो धार्मिक संस्थाएं थी वहाँ पर भी हिंदी की पढ़ाई, और हिंदी की पढ़ाई के साथ साथ रामचरितमानस को वे लोग नहीं छोड़ पाए। तो इतिहास के झरोखों में मानस ने

0: इतिहास के झरोखों से
1: और श्रोताओं एक और खिड़की खोलते हैं इतिहास की, तो अब चलते हैं जरा सूरीनाम की तरफ। वहां पर भी राम राज्य का झांसा दिया गया था। मॉरिशस में गिरमिटिया मजदूरों को यह कहा गया कि पत्थर उल्टोगे तो सोना मिलेगा, इसीलिए मारीच देश बना ना, सभी ने मारीच देश कहा कि धोखा, सोने का धोखा। और सूरीनाम में कहा कि अरे भाई वहां तो राम राज्य, श्री राम का राज्य, श्री राम का राज्य। और सूरीनाम बेचारे जो अराकाटी मतलब जो एजेंट होते थे भोले भाले भारतीयों को श्री राम के नाम से सूरीनाम में झांसा देकर लेकर आए। जहाज की प्रतीक्षा में गार्डन रीच कलकत्ता के डिपो में रह रहे श्रमिक जहाज पर आने पर गीत गाते थे, श्री नमवा मुंशी रहमान खान, श्री नमवा से आए जहाज

जिपुआ खाली करे। मुंशी रहमान खान जो प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, उन्होंने इस पंक्ति के बारे में बार बार लिखा, श्री नमवा से आए जहाज जिपुआ खाली करें। 1898 में भारत से ही वे भी रामायण से प्रेरित थे, मुंशी रहमान खान, देखिए नाम, और रामलीला देखने मौद, हमीरपुर, कानपुर गए थे। और इस व्यक्ति को जो अराकाटी एजेंट को कहा जाता था, बहला फुसला के उनको सुरिनाम ले आया। मुंशी रहमान खान एक मुसलमान था, लेकिन उसको राम कथा में बहुत ही शौक था और वह जाकर रामलीलाएं देखा करता था। भारत में 15-15 दिन की रामलीलाएं चलती हैं और उसमें दिन में सवारियां निकलती हैं, शाम को रामलीला होती है, मेले लगते हैं और 10वें दिन फिर रावण के पुतले फूके जाते हैं। तो मुंशी रहमान खान 1898 की बात है, वे जगह जगह अपना मौद हमीरपुर से कानपुर गए कि कानपुर बड़ा शहर है, और वहाँ से उनको श्री राम द्वीप पर ले जाने के लिए इस अराकाटी ने फंसा लिया। और ये पढ़े लिखे थे और राम कथा से बहुत प्यार करते थे। जब सुरिनाम पहुँचे तब उन्हें पता चला कि कितना बड़ा धोखा हुआ, लेकिन इतवार के दिन बच्चों को हिंदी सिखाने लगे और रामायण पर प्रवचन देने लगे। आप सोचिए कितना ऋण है सुरिनाम का ऐसे व्यक्ति के प्रति, जिसने अपने धर्म सीमाओं को छोड़कर आने वाली पीढ़ी के लिए राम कथा और रामचरितमानस को जिंदा रखने का प्रयास किया। तो मुंशी रहमान खान ने अपने जीवन में नई पीढ़ी के लिए काफ़ी काम किया। और माढ़े के अनुसार सुरिनाम की हिंदुस्तानी में अवधी भाषा आज भी हमें मिलती है। यहाँ के हर हिंदू घर में सफ़ेद, लाल, नारंगी और पीली पताकाएँ हैं, जिन्हें यहाँ के लोग झंडियाँ कहते हैं और इसे गाड़ के रखते हैं। जैसे हम लोग नवग्रह के आसपास गाड़ते हैं, ऐसे ये लोग ये झंडियाँ गाड़ते हैं। और साल में एक बार एक बड़ी पूजा करा के, जैसे हम लोग अपना ध्वज या धाजा बदलते हैं, ये लोग झंडियाँ बदलते हैं। और नवरात्रि और दूसरे त्यौहार अपने मंदिरों में खूब मनाते हैं। और यहाँ पर भी सुरिनाम में जैसे मॉरिशस में श्रद्धा भाव दिखता है, वहाँ पर भी है। और हम तो रामलीला को भूल गए, यहाँ पर शुरू में होती थी गाँवों में, लेकिन धीरे धीरे खो गई कहीं पर, लेकिन वहाँ पर आज भी रामलीला होती है, रामायण के प्रसंग खेले जाते हैं और दिवाली के आसपास तो पूछिए ही मत। और सुरिनाम के मुख्य स्थान पर एक बड़ा दिया बनाया जाता है जो 4 फुट गहरा होता है, 8 फुट उसका घेरा होता है और उसको जलाते हैं। ये सामूहिक प्रकाश का प्रतीक है और वे लोग कहते हैं कि ये दिया नरक चतुर्दशी की रात्रि से दिवाली की रात तक हम जलाए रखते हैं। और ये इस बात का प्रतीक है कि हमारे राम अयोध्या आए थे और आज भी हम राम को अपना आराध्य मानते हैं।

0: तो आप हमारे साथ जुड़ने लग गए, तो चलिए जरा हम एक श्रोता को सुनते हैं, वे हमारे साथ जुड़ी हैं। हेलो।
1: हेलो, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ।
0: क्या सुनाएंगी? जी जी, क्यों नहीं है, बिल्कुल सुनाइए। क्या बात है। नहीं, भगवान के ही चरणों में प्रणाम करिए, हम तो व्यक्ति हैं, व्यक्तियों का क्या है, ये सब भगवान की कृपा है। जी जी जी, क्यों?
1: हाँ,
0: अरे भगवान के भक्त तो हमेशा रहेंगे, आप चिंता ना करें। हाँ जी, अच्छा, बहुत धन्यवाद। बहुत ज़रूरी है जानना कि इतिहास में रामचरितमानस ने हम गिरमिटिया मजदूरों की, हाँ यही रहेगा, और देखिए ना हमारे पूर्वजों ने उसी को संभाला।
1: हाँ, संभाला
0: जी, हाँ पैसा उतना चाहिए, पैसा उतना चाहिए जिससे जीवन अच्छा चल सके, बस।
1: हाँ, जैसे बोलते हैं
0: जी,
1: हाँ, जब मरने लगोगे, हाँ, लगोगे
0: राम कहाँ
1: हो,
0: बचाओ
1: मेरे को।
0: हाँ।
1: राम
0: जी जी बिल्कुल,
1: जो संसार में पैदा हुए
0: हैं, हाँ हाँ, जी जी बिल्कुल, सही। जी जी बिल्कुल,
1: भगवान जो है, जो देता है,
0: जी, उसके पास सब कुछ है। बहुत धन्यवाद। हाँ बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद बहन जी। तो श्रोताओं, सचमुच राम का

व्यक्ति के भीतर ना भाव पैदा कर देता है। अगर आप उसका ध्यान करते हैं तो जीवन बदलने लगता है। यही हमारे पूर्वजों ने हमारे हाथ में जो धरोहर छोड़ी है उसे संभालना बहुत ज़रूरी है। और चलिए ज़रा अब फिजी के इतिहास की ओर बढ़ते हैं। 1880 के सन में फिजी में जो हिंदू धर्म के मूल ग्रंथ सबके सब हिंदी में थे, जैसे रामचरितमानस, ऐसे सुख सागर, फिर उसके बाद भागवत पुराण का अनुवाद, सत्यनारायण की कथा, दान लीला, ये सारी चीज़ें वो लोग लेकर आए थे। मॉरिशस में भी आप म्यूज़ियम में जाएं तो पाएंगे सुख सागर जो हिंदी में लिखी हुई मिलती है। यहाँ तक कि कैथी लिपि में भी रामचरितमानस या मानस राम कथा मिलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचलित रामचरितमानस हुई। धन्य हो तुलसीदास जी जिन्होंने हम सबको ये ताकत दी, और इसी ताकत की वजह से आज हम अपनी धरोहर को संभाल के बैठे हैं। तो 1880 में शर्तबन जो मजदूर वहाँ पहुँचे फिजी में, सिर्फ दो ही उनके पास किताबें थी, और एक गोरे व्यापारी ने भारत से मानस की कुछ किताबें मंगवाई थी और महंगे दामों पर इन बेचारे श्रमिकों को बेची। और आपको आश्चर्य होगा, इन श्रमिकों ने उस गोरे व्यापारी को मुंह मांगी कीमत दी थी। उस जमाने में सोचिए राम का प्रभाव कितना अधिक था। बाद में भारतीय राजदूत भगवान सिंह के अनुसार उन्होंने 5,000 रामचरितमानस की प्रतियां फिजी में रामायण मंडलियों को, स्कूलों को, समाजसेवी संस्थाओं को भेंट की थी। और तो और, भारतीय किसान साबुन से हाथ धोकर, रेशमी वस्त्र बिछाकर और घुटनों के बल बैठकर रामायण की प्रतियां स्वीकार उन्होंने की थी, मतलब पूरी श्रद्धा। तो यह है इतिहास के वो पन्ने जो हमें बताते हैं कि कितनी श्रद्धा के साथ लोग जो हैं, ये जो गिरमिटिया मजदूर थे, वे जुड़े हुए थे। तो चलिए श्रोताओं, एक और श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनको सुनते हैं, देखें वे हमारे साथ अपने क्या विचार जोड़ना चाहेंगे। हेलो, नमस्ते जी, कैसी हैं? हाँ जी, मैं सुन रही हूँ, बोलिए। नमस्ते जी। जी हाँ हाँ जी, सही बात कह रही हैं, बिल्कुल। हाँ जी हाँ हाँ जी जी हाँ बिल्कुल हाँ हाँ जी हाँ, समन्वय जिसे कहते हैं ना, समन्वय विचारों का, बहुत सुंदर जी हाँ, अपनी श्रद्धा के साथ मानस पाठ करते हैं जी, बिल्कुल हाँ हाँ हाँ बिल्कुल, ये धरोहर है, ये इतिहास के झरोखों से जो हमें मिला है इसे संभालना बहुत ज़रूरी है। जी जी जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आशा जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ आशा जी भी जुड़ी, और सचमुच अपने बच्चों को हम ये देकर जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, ये जो राम का नाम है, राम राम कहो भाई सुजन, राम राम कहो भाई, इस तरह की कहानियाँ और बहुत सी कहानियाँ भी वहाँ पर लोग बैठकर सुनाया करते थे फिजी में, इतने किलोमीटर चल के।

जा जा के बैठ के इकट्ठे धार्मिक तस्वीरें लगाना, आपस में चर्चा करना, ये हमें फिजी में दिखाई देता है। तो श्रोताओं, फिजी ही नहीं, सुरिनाम ही नहीं, अफ्रीका ही नहीं, त्रिनिदाद में भी उसी तरह से राम कथा की चर्चा होती है। गिरमिटिया देशों में विवाह, अंतिम क्रिया आदि संस्कारों के समय वहाँ पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो श्रोताओं, बस इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं और आप इस गीत के साथ थोड़ी देर में समाचार सुनेंगे।

0: बस इसके बाद आप समाचार सुनेंगे और फिर सुबह की आज की चर्चा होगी, तो जुड़े रहिएगा रेडियो मनोरंजन के साथ।
1: You're listening to RM3 Radio मनोरंजन।
2: आज की चर्चा।
3: नमस्कार, आज की चर्चा कार्यक्रम में आप

0: सभी का स्वागत है। आज की चर्चा ई कार्यक्रम में आज हमने के जो विषय बा
1: क्रीमी एंड क्रंची प्रीमियम पीनट बटर
2: रेडियो मस्ती नॉर्थ साउथ।

0: जरा।
1: Your time is 3 p.m. आइए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार याचना के साथ। आपको नमस्कार याचना।
2: नमस्कार हंसिनी, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। स्कॉटलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ खेलों में मुक्केबाजी प्रतियोगिता का समापन कल रात हुआ। मॉरिशस के आखिरी प्रतिनिधि मेव क्लेयर ने इन खेलों का अंत ब्रॉन्ज पदक जीत कर किया। वे कॉमनवेल्थ खेलों में पदक जीतने वाले दूसरे मॉरिशन खिलाड़ी बन गए हैं। कल रात खेले गए सेमीफाइनल्स में वेव क्लेयर को वेल्स के ओलांडो होलेई असतोमी ने हराया। कॉमनवेल्थ गेम्स में मॉरिशस ने दो मेडल्स जीते हैं। नोएमी अल्फोंस ने 1500 मीटर में सिल्वर मेडल हासिल किया, जबकि मेव क्लेयर ने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। और आज मॉरिशन समयानुसार रात के 10:28 पर नोएमी अल्फोंस और बॉन्जी पेरिन 400 मीटर की रेस में भाग लेंगी। एनजीओ एंड एंजल की पहल पर आज आयोजित एक वनरोपण अभियान में स्वयंसेवकों, छात्रों, परिवारों और युवा आर्थिक सदन के सदस्यों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस अभियान के दौरान हाल ही में हुई एक साधारण खोज भी सामने आई। स्थल पर माकाक नामक एक दुर्लभ स्थानीय पेड़ हाल ही में पहचाना गया है। ये प्रजाति केवल मॉरिशस में पाई जाती है। विदेशी समाचारों में स्पेन और मोरक्को के बीच चल रहे स्वेता सीमा संकट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 67 तक पहुंच गई है। स्पेन की सरकार ने शनिवार को ये जानकारी दी कि मारे गए लोगों में से कुछ की मौत समुद्र में डूबने से हुई, जबकि कुछ समुद्री दीवार यानी ब्रेक वाटर बैरियर पार करते समय मची भगदड़ का शिकार हो गए। ये थे अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार।
0: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: Shok Samachar, Sunye. Route Royale Saint-Julien-d'Outmont, Route Royale Saint-Julien-d'Outmont, Choran Vesal, K 94 years old, K Shri Lakshmi Prasad Mohabir, Shri Lakshmi Prasad Mohabir, jo Vidya ke naam se zyada jane jaate the, aur Dr. Vishwas Mohabir ke pita the, unki mrityu ho gayi hai. Arthi kal din ke 1:30 baje unki patni विश्वानी मोहाबीर के मकान रॉयल रोड सेंट जूलियन डुतमों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 1:30 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमें हमदर्दी है।
0: You're listening to RM3 Radio, Mano.

0: नमस्कार, आज की चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज की चर्चा ई कार्यक्रम में आज हमने के जो विषय बा वो हमने सब कोई से जुड़ल बा एगो ऐसा संस्था जेकर सहयोग जेकर सेवा हमने सब कोई रोजाना प्राप्त करी ला जा बात कर थे जा सीबी के। सीबी ई बरिस 2026 में एगो नवा स्कीम के साथ आलबा, फोटोवोल्टाइक स्कीम, और एक नाम है हाउसहोल्ड रूफटॉप फोटोवोल्टाइक स्कीम 2026। और ई स्कीम में कौन नवापन बा कहे कि लगभग 10 बरिस से ओगर से जस्ती ही हमने के देश में फोटोवोल्टाइक के जोन इंस्टॉलेशन बा ओकर जोन सेवा बा स्थापित बा। लेकिन 2026 में जब ई नवा स्कीम आवा था तो एक अंतर्गत कौन कौन नवा बात बा काहे ई सब नयापन आनल गल बा ई सब पर बातचीत करे खातिर आज हमने संगे दुगो मेहमान हवन सीबी के। पहला तो सीबी के कस्टमर सर्विस अफसर श्री धर्मराज जूतन जी। जूतन जी नमस्ते।
1: नमस्ते जी।
0: और दूसरा हमने के हवन सीबी के इंजीनियर श्री

0: भूमेश नरसिंह जी। नमस्कार नरसिंह जी, आप दोनों जना के आज स्टूडियो में स्वागत बा। और देखत है जा कि एक सप्ताह से जस्ती समय से हमने सुन लिया थे जा रेडियो और टीवी पर और अखबार में कि सीबी एगो नवा स्कीम के साथ आलबा फोटोवोल्टाइक के, तो हमने चाहते जा कि आज एक कार्यक्रम में आप लोग जनता के बताए बजा समझे बजा कि ये नवा स्कीम का है, कौन नयापन बा ई फोटोवोल्टाइक इंस्टॉलेशन में जो रूफटॉप हाउस होल्ड रूफटॉप से जुड़ल बा, केकर एकर से सीधा संबंध बा, के एकर से फायदा हुई होला बा, ये सब बात पर आप लोग हमें के थोड़ा जवाब दे बजा आज। लेकिन सबसे पहले हमने के ये बतावा कि नवा स्कीम में ऐसा कौन सी बा जो जनता खातिर एगो आकर्षण बा।
1: नरसिंह जी, इमें एक है सब है बात तो समझ समझे के पहले ये समझे के चाहें कि हमने के सरकार के काहे है स्कीम वालों से कर ले
0: बात। हाँ, काहे
1: तो जाने ना, जैसे सरकार पहले से बोल रहा है हमने एक टारगेट अचीव करे कर खोजते हैं सर 60% एनर्जी रिन्यूएबल बाय 2035 तो है टारगेट वा अचीव करे करते हैं तो ढेर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करते हैं सर। और ऐसा प्रोजेक्ट वन सब एनर्जी रिन्यूएबल के प्रोजेक्ट, छोटा प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट, कमर्शियल इंडस्ट्रियल, तो ढेर मना प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करते हैं सर, ताकि हम यह टारगेट वा के अचीव सके।
0: और ये टारगेट वा हा का कौन उद्देश्य बा आप लोग के?
1: तो उद्देश्य तो एनर्जी रिन्यूएबल जस्टी लाइक के मॉरिस में हमने के डिपेंडेंस जो बा फॉसिल में, फॉसिल फ्यूल जैसे अभी गड़बड़ी से जैसे जाना था वह एगो सिचुएशन रहा जहाँ पर ही हमने के पावर कट करके पड़ता है, डिस्चार्ज करके पड़ता है, बस कि हमने लगे इतना एनर्जी हमने के जनरेशन में एगो प्रॉब्लम हो रहा है। तब जैसे जनबा टेलीविजन पर एमबीसी पर एगो अलार्म जैसे सिस्टम डले रही
0: सर, पीक टाइम रहा,
1: पीक टाइम रोज रहा, जोन रहा और वेयर, तो है के आधारित आदमी लोग के सेंसिटाइज कर रही सर कि जैसे जैसे रोज जोन में आते हैं सर, तो एगो थोड़ा सा अपन बगा सिचुएशन कंट्रीब्यूट करेंगे, एगो लाइमिया जे गैस प्याज करते हो लाइमिया कहीं पर बरल बा या बुता दे के या कोई लापारे बरल बा बुता दे के, ताकि ऐसा सिचुएशन दे लिस्टाज में नहीं आप सर है टारगेट है, तो है के है सिचुएशन वहाँ के इविटे करे खाते हैं। तो ये बारिश से मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी हमने के मिनिस्टर पार्टी का सेवा दें लेनेशन हुआ पर जस्टी लॉन्फाज जा रहा था, और इतना लॉन्फाज कि ऐसा स्कीम आना था ताकि आदमी लोग अपने आप इन्वेस्टिंग करें सर स्कीमों में आए के और फोटोवोल्टाइक इंस्टॉल करके हमने के डिपेंडेंस जो फॉसिल फ्यूल से घटा के।
0: अच्छा, तो नरसिंह जी हमने के बतावत हवन कैसे हमने के देश में ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिसिटी बिजली के जो उत्पादन बा एगो समय आ रहा जहाँ पर एगो ऐसा स्थिति रहा हमने के चाहत बहुत सावधानी बरते के रेडियो टीवी पर अनाउंस करल जात रहा, घोषणा करल जात रहा कि हमने के जो बिजली के पैदावार बा वो कितना हद तक वो कमती हो ले जाता और परत रहल कबो कबो बिजली के कटौती भी करे के। बड़ा बड़ा देश में अक्सर ऐसे हुएला कि दिन भर में थोड़ा समय खातिर बिजली काट देवल जाला कहे कि बिजली के पैदावार कमती हुएला। लेकिन मॉरिशस में हमने देखा थे जा कि बहुत ही सस्टेनेबल रूप से बिजली के उत्पादन होते रहेला और बहुत अच्छा से एक संचालन हुआ था। अभी तक देखत है जा कैसे हमने के एगो सेंसिटाइजेशन कैंपेन प्रस्तुत करल गल रहा, कब आपके चाहे बिजली के इस्तेमाल करे के, कब नहीं करे के, कब एगो ऐसा स्थिति चल बा जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपके चाहिए बिजली के जो गस्पियाज बग जो ज़ाया करत हुआ, ऐसा ऐसा स्थिति चलावेला जहाँ आपके ही एगो ये बात के ख्याल नहीं रहेला कि कहूँ पर ग्लोब बरता कि एगो ऐसा लापारी ऑन कर दे ले हुआ एगो ऐसा समय में जहाँ पर आपके जस्ती पर बिल आपके बिल जस्ती हो जाए। तो ये सब स्थिति से बचे खातिर सीबी लगातार एगो सेंसिटाइजेशन कैंपेन अन लेबा और अभी देखते है जा कि अपन बिजली के पैदावार के जस्ती समृद्ध बनावे के डाइवर्सिफाई करे खातिर नवा नवा स्कीम्स के साथ आवत हवन जा। और ई में एगो ईबा हाउस होल्ड रूफ टॉप फोटोवोल्टाइक स्कीम 2026। तो हमने के जुतन जी आप ई थोड़ा समझावा कि ई जोन स्कीम बा एकर एक तो हमने के बोला आप भी थोड़ा संक्षिप्त में

0: समझावा एकर उद्देश्य का है नवा स्कीम के काहे ई आनल गल बा और कैसे जनता से की ई स्कीम के बारे में जस्ती जानकारी पावे जे आज के कार्यक्रम में भी नहीं समझियन जा और कैसे सकियन जा आपके दफ्तर में आके ई स्कीम से लाभ उठावे पर जानकारी पाते हुए एकर एप्लीकेशन करे
1: हमनी सीबी देने से हमनी जहां ले सकेला 24 घंटा हमनी कुनो बिजली देला सा
0: जी हां
1: हमनी के है ये ऑब्जेक्टिव है कि घर घर में 24 घंटा लोग के कोफो खातिर बिजली रही तो हमने देख ली सर जब फ्यूल से जब बिजली पैदा करी ला सर तो हमने के पर्यावरण के तनी क्षति पहुँचेला तनी
0: नुकसान
1: होला तो ये सोच के हमने के सरकार देने से दोनों मिलजुल के एगो ऐसा एगो योजना कर लें सर रूफटॉप सोलर पैनल डाली के घर घर में जे सकी जर बड़ा घर बहु सकी तीन बड़ा पैनल डाले तो है से हमने के लॉन्फ्यून मॉम है तनी कमती क्षति पहुँची नुकसान पहुँची तो मैं हमने के जौन आगे के जौन पीढ़ी आए हमने के कोशिश नहीं कि हमने कुछ नहीं करनी सर नेक्स्ट जेनरेशन खातिर
0: पर्यावरण बर्बाद करके चल गई
1: हमने के धरती माँ की तनी निमन से रखब सर तनी जब मैं हमनियो निमन लेयर स्पीकर करब सर तो हाई ऑब्जेक्टिव से हमने की सी बी देने से सरकार देने से ही योजनावा दल नहीं सा अब हाई योजनावा की लाभ उठाई खातिर हमने के जितना ग्राहक बाद जो सखी फोटोवोल्टाइक डाले अपन घर में हमने मांग कर अब जाओ लोग कि आए कि हमने की दफ्तर में हमने के दफ्तर मुरिस के कोना कोना में आ जहाँ मुड़ी उठाई बता एगो सी बी के दफ्तर है
0: जरूर
1: तो हौजा आके अपन कथी दौंसते आने के अपन कैसे बोल घर के माटी के कोतरा और अपन एगो बिजली के बिल कोनो महीना आगे के आके हमने आगे मांग करे के हमने मांगवा के दर्ज करब सा हमने के कंप्यूटर में जब दर्ज हो तो जाए भाई नर्सिंग के शिक्षों में तो उस शिक्षों में जाके तब वो लोग कमवा आगे लेके चली
0: अच्छा और अभी देखा जाए थोड़ा घरी में कि ई जो नवा स्कीम बा जब एकर एप्लीकेशन करबा तो कितना समय बाद आपके ई मिली और ई नवा स्कीम में और कौन कौन ऐसा बात के प्रावधान करल गबा जैसे कौन कौन लाभ आपके मिली एकर से कौन कौन फ़ायदा आपके होई होला बा और थोड़ा एगो छोटा ब्रेक के बाद फिर मिलब जा और ई बातचीत के आगे बढ़ावब जा।

0: आज की चर्चा कार्यक्रम में आप सबको एक बार फिर स्वागत बा। आज हमने सीबी द्वारा प्रस्तावित नवा सोलर पैनल स्कीम पर बचत है जा 2026 के, और आज के हमने के मेहमान हवन सीबी के कस्टमर सर्विस अफसर श्री धर्मराज जूतन जी और सीबी के इंजीनियर श्री भूमेश नरसिंह जी। तो हमने के जूतन जी, अभी आप बोलत रहला कि कौन उद्देश्य से ये नवा, मतलब कि जो नवा सेवा प्रस्तावित करा जाता वो आप लोग सामने अनले हवा जा, हमने के थोड़ा बतावा कि जो स्कीम पहले से रहल और अभी जो 2026 में नवा स्कीम आना था वजह, एकर में कौन अंतर बा?
1: एगो रहल होम सोलर प्रोजेक्ट जो सीबी अपन देने से ग्राहक लोग के एगो पैनल देवत हल, तो वो ग्राहक लोग हमने के क्लियर लोग उन नहीं पे कर सर कुछ, वो सीबी अपन बगल से देवे। तो हमने देखनी सा कि है योजना जो परिवहन लॉबियन मौके तनिक कमती अथी करी जाती, तो हमने लॉन्से के नहीं पोज हुआ पब्लिक एट लॉज के मजे जैसे कि इन्वेस्ट करे तो वो अपन पैसा डाल के अपन कुआँ से कि पोजे करे और जो जस्ती रही सेबे के दे के और सेबे ओकर बदले में ओके ओके पे करी। तो है लीदेवा से हमने बनी सब डाल दिला सर जनता के जो बड़ा जनता बहु सकी है मैं आई, तो है मैं जनता लोग के पर इन्वेस्ट करी के मैं है मैं सरकार देने से तनी एगो इंसेंटिव मिला था डीबीएम बगल से एगो कैसे ग्रांट बोले ना जरा है ग्रांट वहाँ मिली लोग की जनता लोग की।
0: अच्छा,
1: तो है ये लोग की बहुत सहायता करी।
0: अच्छा, और कोनो अंतर बा?
1: अंतर बा दू दे पा आगे 5 किलोवाट रहा 8 किलोवाट और अब 50 किलोवाट ले सकेला सकबा वो पानी डाले तो।
0: अच्छा,
1: रूफ पर दे पाऊंगा।
0: हाँ, और ये भी दे पाऊंगा कि ये बात पर निर्भर बा कि आपके जो बिजली के उपभोग बा कितना कौसो में करेला।
1: हाँ,
0: कितना आपके चाहिए।
1: हाँ,
0: उकर हिसाब से।
1: हाँ, उकर हिसाब से अब अपन पैनल डाल बा।
0: जरूर,
1: अब ढेर पैनल 12 पैनल डाल बा तो
0: कौसो
1: छोटा बा तो नहीं बोला पेन बा।
0: हाँ,
1: ती तो हम अपन सब अपन एगो कोट करके तब एगो पैनल बैठा
0: के अपन। जरूर नरसिंह जी, अभी जो इन बात जूतन जी बोलन थोड़ा हम के विस्तार से समझावा, आप जे वहां पर एगो इंजीनियर हवा
2: जाने ना, जैसे जूतन जी बोलन सीबी में मिनिस्टर से के इनिशिएटिव से डिफरेंट प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। तो हमने प्रोजेक्ट लॉन्च करे सर ओबार लेशर आदमी खाते हैं मिडिल इनकम खाते हैं और हाई इनकम खाते हैं। तो मिडिल इनकम और जो ओबार लेशर होन सर वो लोग अपन से न सेकेंड सर सिस्टम फोटोवोल्टाइक अफोर्ड करे। तो जो सरकार बाई गो इनिशिएटिव अलग फिनांसमेंट यूएनडीपी और बाकी इंस्टीट्यूशन से वो लोग के सहयोग से हमने जो ओबालेशन और मिडिल इनकम खाते प्रोजेक्ट करी रहा सर फ्री पीवी किट के प्रोजेक्ट करी रहा सर। तो सीबी में पीवी किट के प्रोजेक्ट दो विभाग में बांटल बा, एगो बा सीबी फंडेड और एगो बा कस्टमर फंडेड। जो सीबी फंडेड प्रोजेक्ट बा हौला सीबी इम्प्लीमेंटे करेला सभी सब फिनांसमेंट करेला और ग्राचुई जो फ्री पीवी किट बा आदमी लोग के दीवल जाला हैला ऑन गोइंग है। जैसे जूतन जी बोला पहले होम सोलो रहा तो अभी एक दूसरा प्रोजेक्ट बा होम सोलो फाज 3 इम्प्लीमेंटे हुआ था अभी ले चला था नेट बिलिंग बा और हैला आई करी से वहाँ हैला फ्री पीवी की था। तो है स्कीम वहाँ जो हाउस होल्ड रूफ टॉप हाउस होल्ड स्कीम है हैला फ्री पीवी की स्कीम में नहीं चलेगा, हैला कस्टमर फंडेड पीवी स्कीम। तो टारगेट बा एगो हायर कैटेगोरी कस्टमर खातिर जो जिनके मुआयने बा फिनांसमेंट करेगी।
0: जी हाँ,
2: और जे

0: एक्सेस रही होला रेजो में जाए, रेजो में एगो स्टोरेज स्टोर कर सर, जैसे मान लो स्टोर कर रेजो में जाए और हर महीना कहाँ फॉरवर्ड हुई लिनियाजी के आधार पर, और 12 महीना के बाद होला थ्वाहुपी पर थोड़ा पे कर सर। हाँ तो हेला नेट मीटरिंग के स्कीम होला ग्रॉस मीटरिंग के स्कीम के मुद पेमेंट में जारी थी।
1: अच्छा।
0: दोनों फासिल बा, दोनों इंटरेशन बा, जनता के काले करे के चाहे कौन जस्ती इंटरेशन बा, कौन मोस इंटरेशन बा,
1: जनता के चाहे चयन करे के दोनों में से एक। हाँ, वो ग्रॉस मीटरिंग पर जाए कि नेट मीटरिंग।
0: हाँ, है ला जनता के फासिल जी करते हैं। एक तो ऐसा कंपनी सेंसिटाइजेशन करते हैं सर, वेबसाइट पर ढेर इंफॉर्मेशन डले हैं सर, वो लोग जयंत से वेबसाइट पर ढेर इन्फॉर्मेशन मिली, डॉक्यूमेंटरी एविडेंस डॉक्यूमेंटरी इन्फॉर्मेशन मिली, और एक वो कैलकुलेटर प्रिपेयर करते हैं सर, थावला हाउस में ले चलाए वेबसाइट पर, जहाँ पर वो लोग अपन कंसम्पशन सेक्शन से डाले, कैपेसिटी सेक्शन से डाले, एक वो एस्टिमेशन ले हो जाए कितना कौन सिस्टम इंटीग्रेशन हुआ वो लोग कहते हैं, एक वो कैलकुल हो जाए वो लोग कहते हैं। और ही हमने के कॉल सेंटर यूनिट वो बा जो 99 पर एक्सेसिव बा, वो लोग के सुने कर बा, वो लोग जस्ती इंफॉर्मेशन जो कोनो क्वेरी रही है स्कीम पर, वो लोग है पर इंफॉर्मेशन दिए सर।
1: मतलब कि आप लोग के एगो हॉटलाइन बा 99 12, सीबी के हॉटलाइन नंबर 99 12 पर आप लोग सब बजा फोन करे, और अभी हमने के श्री नरसिंह जी जितना भी जानकारी दिलन ई जो नवा स्कीम बा ओकर से जुड़ल कौन कौन लाभ आपके हो, कैसे सक बजा कैलकुले करे, कैसे जग बजा चुने कि आप लोग ग्रॉस मीटरिंग पर जेबा कि नेट मीटरिंग पर, ये सब के जानकारी आपके 99 12 पर मिली।
0: हाँ, 99 12 वेबसाइट और एक कैलकुलेटर जब डेवलप से हो जो सकी इन्फॉर्मेशन मिले, काहे है सब इन्फॉर्मेशन देवत है सर, काहे सब सेंसिटाइजेशन करते हैं सर, एगो ताकि जनता लोग समझन सर स्कीम वा कैसे फंक्शन हो रहा।
1: जरूर।
0: और अभी जो बाहर मौके कर ले हैं सर, ढेर नवा नवा इंस्टॉलर आवता, और दो तीन को ऐसा इंस्टॉलर वो आवता जो थोड़ा सा ठगत है उनसे।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो है सब के चाहिए जनता के प्रिकॉशन लेके,
1: मतलब जनता के चाहिए जानने के, अच्छा से परख के, अच्छा से जानकारी इकट्ठा करके ई खरीदे के। हाँ। नहीं कि हर बरी में जाके कुछ लेके चले बा, अब ओकर में आपके जे समस्या हुई तो आप सोचबा कि सीबी के ओर से खराबी बा।
0: तो जहाँ जहाँ जैसे बोली है इन्फॉर्मेशन बा हाउ जा जइया इन्फॉर्मेशन है, जैसे बोली सीबी वेबसाइट, तो अभी एगो एग्जांपल देव, रिसेंटली एगो एगो प्रॉब्लम रहल, एगो दूसर कंपनी सीबी के नाम लेके अपन वेबसाइट क्रिएट करके इन्फॉर्मेशन दे बता लन, तो हौला अपन एतरी खतिन करते लन सर, और नॉर्मल दुआ ने बा सीबी के नाम लेके, तो वो लोग के चाहे सीबी वेबसाइट जब जाए बता cb.mu है,
1: cb.mu ऑफिशियल वेबसाइट है सीबी के, cb.mu के अलावा कोनो भी वेबसाइट पर नहीं जाइए, कहे कि नकलची पेज भी बा जहाँ पर समस्या खड़ा हो रहा और सीबी के बना रहा एगो कम्युनिके जारी करे के। हाँ। और नहीं समझल रही जा काहे ई कम्युनिके आ रहा, तो अभी आप बताओ था कि आपके चाहिए खाली और खाली cb.mu पर जाएंगे। हाँ।
0: और लोन कहते हैं DBM के वेबसाइट पर जिस इन्फॉर्मेशन मिली और DBM के सकब कॉल करे, है सब जहाँ राइट इन्फॉर्मेशन सकी मिले।
1: ज़रूर।
0: तो जैसे बोला था दू को मिल जाए थे बा पेमेंट खाते, तो अभी थोड़ा टेक्निकल बोला ताकि जस्टिस समझ पाए, तो पहले जब स्कीम लॉन्च कर रही थे तो एगो रिक्वायरमेंट रहा कि ओब्लिगेटरी में चाहे ना बैटरी डाले के, तो अभी है रिक्वायरमेंट थोड़ा सा आलेज कर ले सर, अभी जो बा अप टू 3.5 किलोवाट जे एगो आदमी डाले करता था तो ओब्लिगेटरी नहीं बात बैटरी डाले के, सकबा 3.5 किलोवाट विदाउट बैटरी डाले करे, से मुझे 3.5 किलोवाट से जस्ती जाएगा 3.5 किलोवाट से जस्ती तब ओब्लिगेटरी में पर बैटरी डाले के, और एक मैक्सिमम एक्सपो जब सकबा करे से 15 किलोवाट से जस्ती एक्सपोते नहीं सकबा करे।
1: अच्छा।
0: राइट, एक्सपोर्टे बोलते हैं रेजो में एक्सपोर्टे नहीं सकबा करे, सिरमों जे चाहबा तब बैटरी सकबा डाले और पाछे पैनल सकबा 57 किलोवाट ले डाले, तो है ला थोड़ा सा टेक्निकल है, आदमी लोग थोड़ा सा सेकेंड से कन्फ्यूजन हो रखे, तो कहे एगो लिबर्टी जल्दी से 57 किलोवाट पैनल्स से मो एक्सपोर्ट 15 किलोवाट, जाने कोनो कोनो आदमी बा जिनके कंसम्पशन एनर्जी कंसम्पशन जस्ती बा और

0: और एक्सपोज धेर नहीं करी लंसर तो का कुछ खोज लंसर कि एगो सिस्टम डालें सब सी अभी जब बैटरी डालियन सर बैटरी से कौन सी हो जब पानी से एनर्जी पूजा हो हाउला बैटरी में स्टोर हो और बैटरी से घर में सकें सर सेवी करे तो जितना पैनल डालियन सर जितना बैटरी डालियन सर उतना जस्टी सकें सर स्टोर करे और घर में सेव करे अब कोनो कोनो आदमी के कंसुमेशन ढेर बा कोनो कोनो आदमी के सकबर देखबा 25 मिल रुपी 50 मिल रुपी रेजिडेंशियल के बोलत हैं बस है स्कीम खाली रेजिडेंशियल कस्टमर्स के है
1: खाली अपन आपके निजी उपभोग के है अपन घर खातिर बिजनेस खातिर नहीं
0: बिजनेस खातिर नहीं है तो कोनो कोनो आदमी जो जिकर कंसुमेशन जस्ती बा और जो चाहत हो उनसे एगो लोटोमी हो इलेक्ट्रिसिटी पर जैसे लोटोमी के माने मान लिया अभी कुआं कुबे हो वो लोग है इलेक्ट्रिसिटी के सर्विस कंटिन्यू कर कर सकते हैं उनसे तो बैटरी में है एनर्जी बस स्टोरेज हो तब सेकंड से सर्वी करे तो जस्ती बैटरी डाले के चाहे ना तो पाने सेकंड से 50 किलोवाट डाले और ज्यादा बैटरी हो सकते सेकंड से डाले स्टोर करे सर्वी करे पुनः प्रॉब्लम है बस मैं एक्सपोर्ट मैक्सिमम 15 किलोवाट से जस्ती नए सेकंड से एक्सपोर्ट करे राइट और है यो 15 किलोवाट नॉर्मल थ्री फाजे चाहिए है ला टेक्निसिटी है ला जब इंस्टॉलर देखें सर तो लोग के समझाए है ला और जो डिटाइम और टेक्निक हो बा हमला वेबसाइट पर डले हैं सर
1: अभी हमने सुनत रही जा श्री नरसिंह के जे कि इंजीनियर हवन सीबी के ई खातिर बहुत ही टेक्निकल रूप में हमने के समझेलन ई जो नवा स्कीम बा ओकर पीछे कौन कौन टेक्निकल बात के ख्याल रखल जाता श्री जुतन जी आप कुछ जोड़बा जो अभी हमने के इंजीनियर साहब बोलन ओकर में
2: हम हाई जोड़ब हमने की देखल गल बा जो समय नो बीतल गल बा जो हफ्ता बीतल गल बा ढेर ग्राहक लोग आलवन से मांग करी वे लोग संगे ढेर इन्फॉर्मेशन है कितना किलो वाट वो लोग इंस्टॉल करी कितना किलो वाट बैटरी रही ये लोग के तो हम हई मांग करब हमने के जितना ग्राहक हमने के दफ्तर में अन हमने के एक दफ्तर में आई सके एगो क्वालिफाइड इंस्टॉलर के भेंट करके अपन जितना कंसुमेशन लोग सेवी कर रहा घर में जितना लापागी बा लोग की बोल के लेके इंस्टॉल आते ऐसे कितना पैनल सेकेंड से डाले कितना बैटरी सेकेंड से डाले तब हमने के ऑफिस में आके अपन मांग करेगी
1: तब उन लोग के जस्ती समझ में भी आए आप लोग भी सब बचा जस्ती उन लोग के गीदे करें
2: एग्जैक्टली मां हमने जस्ती सगब सब बोले कोची हाँ तो हर मांग इतना बा तो सगब सब बोले हाई सीमा में जा सिपा हो सीमा में जा
1: जरूर और जैसे सुनत हवा देखत हवा आज के हमने के कार्यक्रम आधारित बा ई नवा सोलर स्कीम के जो सीबी प्रस्तावित कर ले बा जब रेडियो और टीवी और अखबार में थोड़ा थोड़ा एक दो मिनट के जो जानकारी बा ओकर से ठीक ठीक समझ में नहीं आल कि ई स्कीम में का बा जानत है जा कि एगो स्कीम आल बा तो ई स्कीम पर जस्ती जानकारी देवे खातिर आज हमने संगे हवन सीबी के दुगो अफसर श्री जुतन जी और श्री नरसिंह जी जे हमने के पूरा स्पष्टीकरण देवत हवन जा ई नवा स्कीम के बारे में अभी जानकारी और देवब जा आपके एकर पर फिलहाल ले जा एगो छोटा सा विराम

0: आज के चर्चा कार्यक्रम में आप सबको एक बार फिर स्वागत बा। जैसे सुनते आवत हवा शुरू से इस प्रोग्राम के, हमने सीबी के जो नवा सोलर पैनल फोटोवोल्टाइक स्कीम बा ई बरिस के ओकर पर बातचीत कर रही जा। और हमने संगे दुगो सीबी के अफसर हवन, धर्मराज जूतन जी जे कस्टमर सर्विस अफसर से अफसर हवन, और फिर सीबी के इंजीनियर श्री भूमेश नरसिंह जी जे लोग भोजपुरी में आपके भाषा में बहुत ही सरल रूप से आज के ई स्कीम पर हमने के विस्तार से जानकारी देवत हवन और सरल भाषा में जानकारी देवत हवन जा। अभी हमने के नरसिंह जी बतैलन कि कौन कौन लाभ हमने के मिली ई नवा स्कीम से। एक तो डीबीएम आपके ग्रांट दे, और ई ग्रांट के बारे में और जानकारी पावे खातिर आप सब डीबीएम जाए या उकर वेबसाइट पर जाए, और फिर सीबी के ओर से आपके एक तो ग्रॉस मीटरिंग और दूसरा नेट मीटरिंग के ई दूगो जो ऑप्शन बा ओकर चयन सकबा करे, एकर पर अभी आप जानकारी देला कि कैसे आप सकबा आपके जो उपभोग बा, आपके जो कंसुमास्टों बा ओकर हिसाब से अपन जो प्रोजेक्शन बा वो करे, और फिर जो बच जाए जे एक बरिस के बाद आपके रिफंड भी होई होला बा। और ई जोन दोनों चयन जोन दुगो विकल्प ऑप्शन बा एकर पर जस्ती जानकारी पावे खातिर आप सकबा सीबी के वेबसाइट cb.mu पर जाए, या फिर हॉटलाइन 9912 पर फ़ोन करे, या फिर जैसे अभी जूतन जी बोलन सकबा आप कोनो भी सीबी के कस्टमर सर्विस दफ्तर में जाके एकर पर जस्ती जानकारी पावे। लेकिन आपके चाहिए पूरा पूरा जानकारी रहे के आप सकबा ई बात पर जानकारी पावे कि आपके कौन चीज़ चाहिए, आप कितना मतलब पैदावार चाहत हवा, कैसन पैनल बिठावे चाहत हवा, फिर ओकर हिसाब से आप जे जाइबा सी बी तो हुआ पर आपके बतायन जा कि आपके कौन चीज़ चाहिए करे के। तो हमने के अब थोड़ा बोला ई जो सी बी के नवा प्रस्ताव बा जे एकर से लाभ उठावे छबा, तो आपके कौन चीज़ चाहिए करके पहला।
1: जैसे स्पीकर ली, पहले तोरा जान जाए के चाही जे ग्रॉस मीटरिंग में जाइबा या नेट मीटरिंग में जाइबा, हेला समझ जाए के चाही। बस एक हरा समझ जाए तब टेक्निकल जाए के पड़ी। तो जब हेला डिसीजन ले रहे हो तो एगो क्वालिफाइड इंस्टॉलर के देखे के चाहिए, जैसे जूतन जी बोलन एगो क्वालिफाइड इंस्टॉलर के देखे के चाहिए। बस

0: C'est-à-dire, installer tu as écrit la cotation en dit que non. Mais d'abord, calcul que dit, estimation que dit que non, tu as chahena installé que dit. Mal gros meeting ben jaiba boli itna l'espace ba itna par segment installé que dit. Et que à dhar par kitna paisa tu as refund tu as midi tu as CB payé que dit ya monsi kitna midi. Gros meeting par kafi asan ba. नेट मीटरिंग में थोड़ा सा ट्रिकी बा बस जब नेट मीटरिंग में जब हो जा बैटरी इंस्टॉल कर बा हो जा क्या के लिए करे खाते तो कंसुमेशन के देखे ही चाहिए तो बस जे ऐसे इंस्टॉल आते हुआ अली बिना कंसुमेशन देखे बोल दे इतना सब इंस्टॉल करे अवला थोड़ा सावधानी बरते की चाहिए
1: तो ये जो क्वालिफाइड इंस्टॉलर के बात करत हुआ वो इंस्टॉलर आपके घर पर आए आपके मीटर देख के बोली आपके
0: नॉर्मल तो घर पर आए के नहीं
1: नहीं बा
0: एको तो हर फैक्चर इलेक्ट्रिसिटी जब नहीं वो मैं नॉर्मल अपन का समाचार सब बा वो के आधार पर वो लोग सेकंड से कहाँ की लेकर और जब कहाँ की लाशों कर जान सा तब वो लोग बोल जान सा ओके थोड़ा इतना पीवी पैनल्स चाहे ला इंस्टॉल पैनल्स इतना सकबा एक्सपोर्ट करे और इतना बैटरी साइज थोड़ा चाहे ना बस ये है तीन इंफॉर्मेशन नेसेसरी पर एप्लीकेशन करे खाते
1: अच्छा
0: बस जब जाएगा सी बी में एप्लीकेशन करे है तीन इंफॉर्मेशन पैनल साइज इंस्टॉल पैनल कैपेसिटी एक्सपोर्ट कैपेसिटी और बैटरी कैपेसिटी है तीन इंफॉर्मेशन चाहिए थोड़ा सी बी के देख ताकि थोड़ा एप्लीकेशन स्टैंड गुड रहे
1: अच्छा
0: तो एप्लीकेशन खाते जब जाएगा तब हमारे देखे मैं जूतन जी है पर ज्यादा सक सेकंड से
2: जैसे हमारे नरसिंह भाई बोलन कि है इंस्टॉल कैपेसिटी बैटरी कैपेसिटी एक्सपोर्ट कैपेसिटी है जानकारी जब प्राप्त कर दिए हमने के ग्राहक लोग तो वो लोग सकी हमने के दफ्तर में आए कोना कोना में हमने के दफ्तर बा तो अपन मांग करिए हाउ आधार पर इंस्टॉल कैपेसिटी बैटरी कैपेसिटी और एक्सपोर्ट कैपेसिटी से तो हमने लोग के बोलब जा वाला एगो एप्लीकेशन करिए हमने के जो आसम जो ऑफिसर हम लोग एप्लीकेशन कर दिए एप्लीकेशन हम जब करिए संगे संगे एगो एगो फॉर्म निकले ला एगो फॉर्म में एगो क्यू आर कोड बा तो हर फॉर्म वाले के लोग सके डी बी एम जाए अपन ग्राउंड के मांग करे भी डायरेक्टली डी बी एम नहीं सके जाए पहला पर सी बी आई के मांग करे के एप्लीकेशन करे के फॉर्म भरे के फॉर्म सीए करेगी जब फॉर्म सीए होगा तो हर फॉर्म एगो कॉपी हमने संगे रही एगो कॉपी और फिर दोनों ओरिजिनल भी रही एगो हमने संगे रही एगो ग्राहक संगे रही हर फॉर्म लेके जाके अपन डीबीएम से अपन मांग करी ग्राउंड के
1: मतलब कि तीन गो स्टेप बा पहला एक प्रोफेशनल इंस्टॉलर देखे के दूसरा ओकर लेफ्ट मास्टर लेके तब सी बी आई के तब सी बी तोहरा एप्लीकेशन करे के जन प्रक्रिया बा पूरा करी
2: हाँ।
1: और फिर ई जन फॉर्म तोहरा सी बी पर मिली उ लेके जे आपके ग्रांट चाहिए डी बी एम से तब आप डी बी एम जेबा हुआ पर एगो एप्लीकेशन करबा और ई जन जानकारी बा डी बी एम से ग्रांच खातिर आप सकबा अकते जाए कि एक जब आपके मिल गए तब
2: नहीं परी भाई फॉर्म भर उल भर दिला हम जब फॉर्म देनी सा एगो क्यू आर कोड बा हाउ क्यू आर कोड बा ऑथेंटिक है तो हाउ क्यू आर कोड बा से जाए ग्राहक डी बी एम में अब डी बी एम में हो जा जौन जौन फॉर्मालिटी बा वो हो जा हुई है आप अच्छे है क्यू आर कोड बा से है फॉर्म से
1: अच्छा और फिर एक बाद
0: डी बी एम में जब जाए तो हो जा वेबसाइट पर सकबा एप्लीकेशन करे अला कल रघुबर जी से बात कर ले जी तब बोलन डेटा हमरा दिलन कैसे करके चाहिए सज्ञान से वेबसाइट पर एप्लीकेशन करे से सब डॉक्यूमेंट आशो
1: चाहिए रहे
0: या सज्ञान से को डी बी एन सेंटर में जाए हौजा एप्लीकेशन करे सब डॉक्यूमेंट संगे हौजा एगो क्रिटेरिया बाइल पहले तो रेजिडेंशियल कस्टमर के खाली खाली एंटरटेन करें सर और दूसरा जो फैमिली इनकम बा जो हस्बैंड वाइफ के इनकम फैमिली इनकम मंथली फैमिली इनकम 150,000 रुपये से ज़्यादा नहीं हो के चाहिए जी 150,000 रुपये से ज़्यादा है तो थोड़ा हाई ग्रांट नहीं मिले
1: ओके
0: और तीसरा से जो कनेक्शन एग्रीमेंट बा और थोड़ा सप्लायर से कोटेशन आने के पड़ी राइट जो इंफॉर्मेशन डलिन से कनेक्शन आग्रीमेंट में हवे इंफॉर्मेशन टाली करे के चाहिए सप्लाई के कोटेशन

0: संगे जे लिखल बा 5 किलोवाट तो सप्लाई के कोटाशों में लिखल रहे के चाहिए 5 किलोवाट। तब ई के आधार पर वो लोग असेस कर जन जो थोड़ा ग्रांटवा मिले के चाहिए या नहीं। तो ग्रांटवा मिले खातिर वो लोग थोड़ा एक वाउचर दियन सर, एगो ग्रांट वाउचर। तो वाउचर वा जब दियन सर है कि इम्प्लिकेशन है कि टू स्वीट ग्रांटवा मिली
1: जी।
0: अभी खाली वाउचर मिलल बा, बाकी सब फिनोसमों तोरा अपन बगल से देखे के पड़ी। तो जब वाउचर मिलवा तो वाउचर के ठीक से रखे के चाहिए, तब अपन बगल से तू अपन इंस्टॉलर के देखिया इंस्टालाशमा करेगा तीन तोरा 6 महीना मिली इंस्टालाशमा कम्प्लीट करेगा तीन वाउचर के वालिद से जो हमने के बोला गल बा 6 महीना मिली हमारा कॉन्फियम डीबीएम से कॉन्फियम से कैसे करे ये 15 साल कर जी हाँ। तब हाउ इंफॉर्मेशन जब सब मिलगा तो सकबा आज लोन क्या के डिमांड करे डीबीएम से सकबा लोन के डिमांड करे या दूसरा लाभांश से सकबा ओब्लिगेटो नहीं बा डीबीएम से लोन के डिमांड करे सकबा दूसरा कमर्शियल बैंक बैंक हो जाए। तब जब लोन है सब फिनांसों के बंदोबस्त हो जाए तब ऐसा लाते हैं कि देखिए परी ऐसा आशा करेंगे। तब ऐसा लाते हुआ जब थोड़ा कोई आशा जब पेमेंट करे के लिए बस कन्फर्मेशन कमांड के कन्फर्मेशन करे चाहिए तब जब कन्फर्म कर दे जब इंस्टॉल कर दे तो खाली है आश्वय करके चाहें कि फाइनल पेमेंट में जो वैन सैंग पूछा प्रोजेक्ट अमाउंट बा थोड़ा घटाए बस चाहे वाव चवा के पैसा डीबीएम तोहरा पे नहीं करी जनता वहाँ के पे नहीं करी वाव चवा के पैसा डायरेक्ट सप्लायर के पे करी।
1: ओके
0: मान लो 300,000 रुपये के प्रोजेक्ट बा तो जब इंस्टॉलेशन हो जाए तो फाइनल पेमेंट थोड़ा देशों जो वाउचर मिलकर है जिस वाउचर सब अप्रूवे होकर तो सप्लायर के फाइनल पेमेंट थोड़ा 200,000 रुपये करेगी पड़ी। और जब सब कुछ कनेक्टे हुए तब जो 500,000 रुपये बाकी बा हौला डीबीएम डायरेक्ट सप्लायर के अकाउंट पर वैसे करे
1: है
0: ला याद रखे जाए।
1: अच्छा
0: तो जब लोन है सब फिनांसों के दिमाग से जाए इंस्टॉलेशन हो जाए तब थोड़ा इंस्टॉलाते हुआ जो भाई एगो सर्टिफिका इंस्टॉलेशन जेनेर करी है सर्टिफिका हुआ और एगो अनेक्स टेक्निकल अनेक्स बा और दूसरा डॉक्यूमेंट टेक्निक बा हौला थोड़ा जाके परी कस्टमर सर्विस में डिपोजिट करे सेबे के कस्टमर सर्विस में जाके डिपोजिट करे के और हौजा से एगो दूसरा प्रोसेस नीचे हुए हौजा से सीबी कस्टमर सर्विस हमने के से संपर्क करी कि बुलियन से इतना इतना सबमिट कर दिले हम से हौजा एगो टेक्निकल वेरिफिकेशन करब से जो इंस्टॉले कर जे सीबी के रिक्वायरमेंट के आधार पर बा या आलो अकाउंट बा जे हमने के रिक्वायरमेंट के आधार पर बा वो लोग के मीटर हमने चेंज करब से मीटर समझे करब से और एक और बाद कमीशनिंग करब से कमीशनिंग के बाद क्लियोमा के एगो कंप्लायंस शीट दे वापस कंप्लायंस सर्टिफिकेट दे वापस हाउ कंप्लायंस सर्टिफिकेट हुआ एगो प्रेव है कि सेबे सब कुछ सब काम कर दिले बा सिस्टम में कनेक्टे बा और ठीक से फंक्शन हुआ था हाउ कंप्लायंस डॉक्यूमेंट हुआ लेके थोड़ा पर ही डीबीएम फिर से जाके बोले के है डॉक्यूमेंट हुआ बा कंप्लायंस सर्टिफिकेट सब काम हो गया बा अब वाउचर के आधार पर 500,000 रुपये या 25% प्रोजेक्ट अमाउंट सप्लायर के पे करेंगे पहला फाइनल स्टेप है।
1: तो जैसे सुन ला आज के ये प्रोग्राम में देख लीजिए ये 16 पैनल के जन प्रक्रिया बा शुरू से अंत तक कैसे चली हमने संगे खाली 2 मिनट रह गल बा नरसिंह जी
2: हम एगो चीज जोड़े खोजब भुला के नहीं सब शुरू में बोले के
1: हाँ।
2: जे जे हमने लागे आई मांग करे एप्लीकेशन करे एगो प्रोसेसिंग फी 2,000 के प्रोसेसिंग फी है ला भुला के सब बोले के ए परिपेय करे के 2,000 के प्रोसेसिंग फी है तंजोरी करनी।
1: अच्छा तो आज के कार्यक्रम में आप लोग भाग ले जा बहुत बहुत शुक्रिया। अंतिम में कुछ बोले चाह बजा जोड़े चाह बजा एक दो शब्द
0: हाँ तो हम आपको खासे करती जनता के है पोजमा में विषय करेंगे बस ये निमन प्रोजेक्ट है ढेर को खासमा मिला था और 500,000 रुपये घाट या 25% प्रोजेक्ट अमाउंट के घाट एगो वेमा निमन इंसेंटिव
1: और हाउस होल्ड में पति पत्नी के भी जन पगार बा एक 100-150 ई भी अच्छा एगो अच्छा बा हम रखा गल बा
0: तो
2: हम जन बोले खुद दी हमने के लॉबी उनमा के जस्ती आर नुकसान नहीं पहुंचा सा है।

0: सिस्टम से है स्कीम से जनता लोग के मांग करब गोर हाथ जोड़ के मांग करब कि है मैं इन्वेस्ट करे के हमने के पर्यावरण के कमती क्षति पड़ी निमन से सांस ले प्यू एयर
1: और ग्लोबल वार्मिंग गर्मी बढ़ ले जाता
0: हमनी के जो आगे के जनरेशन बच्चा लोग बा हमनी के कोशिश नहीं
1: जरूर तो श्री नरसिंह जी श्री जूतन जी आज आप लोग फजीर फजीर अपन कीमती समय निकाल के आज अयला जा सीबी की ओर से सीबी और आप दोनों जना के बहुत बहुत शुक्रिया। एगो अगला कार्यक्रम में एगो अगला एगो विषय के साथ फिर आवाब जा आज आशा करत है जा ई विषय पर आप लोग के पूरा जानकारी मिलल जे जानकारी कमती हुई तो आप सक बजा वेबसाइट पर जाए सक बजा हॉटलाइन पर फ़ोन करें और हॉटलाइन नंबर है 1 2 या फिर आप सक बा सीबी के कोनो भी दफ्तर में जाके ई सब जानकारी हासिल करें। आप सब कोई के आपके ध्यान खातिर बहुत धन्यवाद नमस्ते।
2: आज की चर्चा
3: अजय डोंट माइंड लेकिन इतना अच्छा मौसम है और तुम इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सोचता। गुलफाम साहब के फैन हो कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या?
4: बिल्कुल आती है सुनो।
3: सुना
4: अर्ज है दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा ना लगे। आदाब।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए।

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते हैं, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: You're listening to RM3 Radio Mana.

0: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार याचना के साथ। आपको नमस्कार याचना।
1: नमस्कार हंसिनी, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। कल रात राष्ट्रीय सभा में फाइनेंस बिल और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स मिसेलेनियस बिल सुधार के साथ पारित किए गए। इन दोनों विधेयकों के पारित होने से अब बजट 2026-2027 के कदम अमल में लाए जा सकेंगे। बजट कदमों को कानूनी मान्यता देने वाले दोनों विधेयकों पर अपने समिंगक में प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित सुधारों का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक वित्त को सुदृढ़ करना, आर्थिक विकास को गति देना तथा मॉरिशस को एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में स्थापित करना है। राष्ट्रपति दफ्तर ने एक कम्युनिके के जरिए घोषित किया कि जॉन सिडने पियर को पर्यटन मंत्रालय के जूनियर मंत्री पद से राष्ट्रपति द्वारा हटा दिया गया है। राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल ने संविधान के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए और प्रधानमंत्री की सलाह पर ये निर्णय लिया है। विदेशी समाचारों में फेफड़ों के कैंसर के सबसे आक्रामक रूपों में से एक के इलाज के लिए चीन में विकसित की गई एक इम्यूनोथेरेपी अब इंग्लैंड की नेशनल हेल्थ सर्विस में उपलब्ध होने जा रही है। ये मरीजों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और चीन के तेज़ी से विकसित हो रहे दवा उद्योग के लिए भी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ एंड केयर एक्सलेंस ने शंघाई में विकसित इस इलाज को योग्य मरीजों के लिए कीमोथेरेपी के साथ उपयोग करने की सिफारिश दी है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आगे जित नमस्कार।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
3: You're listening to RM3 Radio Man.

देश मॉरिशस प्यारा चमका है अब रब में समको संजय की वसे प्यार भरा नमस्कार आदाबन वेरी वेलकम रेडियो मनोरंजन की लहरों पर प्रोग्राम है गीत गाथा देश की देवियों और सज्जनों काफी दिनों से हमारे समाचार बुलेटिनों में इस घटना की के चर्चे हो रहे हैं और आज भी हो रहा है द ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स जो 23 जुलाई से लग रहे हैं और कल इन खेलों की समाप्ति होगी क्लोजिंग सेरेमनी होगी और ये खेल ग्लासगो स्कॉटलैंड में खेले जा रहे हैं फीचरिंग 10 स्पोर्ट्स 74 नेशंस और 2700 से भी अधिक एथलीट्स इन खेलों में भाग ले रहे हैं और इनके बीच मॉरिशस के भी खिलाड़ी उपस्थित हैं सो डेट्स यानी कि तारीख हम आपको फिर से याद दिला देते हैं 23 जुलाई से लग रहे हैं ये खेल कल इन खेलों की समाप्ति होगी क्लोजिंग सेरेमनी होगी होस्ट सिटी ग्लासगो स्कॉटलैंड ये चौथी बार के लिए कि ये खेल वहाँ पर खेले जा रहे हैं और कुल मिलाकर 2,729 एथलीट्स 74 कॉमनवेल्थ देशों से वहां पर भाग ले रहे हैं 10 स्पोर्ट्स एथलेटिक्स स्विमिंग आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स ट्रैकिंग ट्रैक साइकिलिंग नेटबॉल वेट लिफ्टिंग बॉक्सिंग जूडो लॉन बाउल्स फ्री बाय फ्री बास्केटबॉल including para events. Medal ki suchi mein 215 gold medals across 10 sports baante gaye. So in kheno ke sandarbh mein ek khiladi jinki bahut charcha ho rahi hai. Abhi aapne samachar mein bhi unka naam suna. जिन्होंने मॉरिशस को एक ब्रॉन्ज मेडल दिलाया सो उनके साथ साथ हम उन सभी लोकल एथलीट्स की चर्चा करेंगे और हम जानना चाहेंगे कि आप उनके बारे में कितना कुछ जानते हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का नाम रोशन किया है न सिर्फ इन ग्लासगो खेलों में लेकिन मान लीजिए पिछले 20-25 सालों से जो हर एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मॉरिशस का नाम रोशन करते आ रहे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे और आप लोगों से भी जानना चाहेंगे सो जिन्होंने उस बॉक्सर का नाम हमें बताया जिन्होंने इन ग्लासगो गेम्स में मॉरिशस को एक ब्रॉन्ज मेडल दिलाया आपका जवाब ऑन 402 80 70

गीत का था देश की आज के इस प्रोग्राम के जरिए हम उन एथलीटों के बारे में बात कर रहे हैं जिनके जरिए जिनके परिश्रम के जरिए जिनकी काबिलियत के जरिए देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत ही सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। और अभी अभी हम बात कर रहे थे अबाउट द ग्लासगो गेम्स, द ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स, जहां पर मॉरिशस के एक बॉक्सर ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। उनका नाम मेवेन क्लेयर, जन्म 2 जुलाई 1993। साल 2016 में उन्होंने समर ओलंपिक्स के इवेंट में भाग लिया और वहां पर एलिमिनेट हो गए पहले ही राउंड में। फिर उसके बाद उससे पहले 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने भाग लिया था, वहां पर भी वे पहले ही राउंड में एलिमिनेट हो गए थे। 2017 में पहली बार के लिए उन्हें सफलता मिली और क्योंकि उस टूर्नामेंट में वे तीसरे स्थान पर आए, सेमीफाइनल्स में उनकी हार हुई, फिर थर्ड प्लेस के लिए उनकी जीत हुई। 2017 बॉक्सिंग अफ्रीकन बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स जो ब्राजाविल में लगी थी,

वहां पर मेयर वैकलें को सिल्वर मेडल हासिल हुआ और फिर साल 2019 में अफ्रीकन गेम्स जो मोरक्को में लगा था वहां पर आप उनको गोल्ड मेडल हासिल हुए। 2020 के अफ्रीकन बॉक्सिंग ओलंपिक क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट में वे क्वार्टर फाइनल्स में हार गए थे और इस साल कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने एक बार फिर अपना जलवा दिखाया। हालांकि वे सेमीफाइनल में हार गए लेकिन फिर भी थर्ड प्लेस के लिए उन्होंने जीत हासिल की और इस तहत मॉरिशस के लिए एक ब्रॉन्ज मेडल जीत पाए। सो बधाई मेयर वैकलें और उनके संघर्ष से आशा करते हैं कि और नौजवान लोग प्रेरित होंगे और स्पोर्ट्स की दुनिया में अपनी तकदीर अवश्य आजमाएंगे।

गीत गाथा देश की आज के इस प्रोग्राम के जरिए हम देश के उन महान एथलीट्स के बारे में बात करें जिनके जरिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश को ख्याति प्राप्त हुई। इस समय ग्लासगो में मेवेक रेया ने बॉक्सिंग के क्षेत्र में उत्तम खेल खेल के देश को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। जो दूसरा प्रश्न हम आपसे पूछने वाले हैं, मेवेक रेया से पहले उस बॉक्सर का नाम बताएं जिन्होंने पहली बार के लिए ओलंपिक गेम्स में 2008 बीजिंग ओलंपिक गेम्स में मॉरिशस को उसका सबसे पहला ओलंपिक मेडल दिलाया था। दैट वाज अ ब्रॉन्ज मेडल इन द बीजिंग ओलंपिक गेम्स 2008। और हमें याद है, अभी तक हमें याद है जब वहां के कमेंटेटर उनके बारे में कह रहे थे, वे कह रहे थे द मॉरिशियन मैजिशियन। आप उस बॉक्सर का नाम हमें बताएं ऑन 402 80 70।

गीत गाथा देश की संजय के साथ रेडियो मनोरंजन की लहरों पर। सो हम आप से जानना चाहते थे कि कौन सा वो बॉक्सर हैं जिन्होंने साल 2008 में ओलंपिक गेम्स में मॉरिशस को उसका पहला मेडल दिलाया था बीजिंग में, और उनका नाम लुई रिशार ब्रूनो जुली। लुई रिशार ब्रूनो जुली जो बुवासे रुसिल का रहने वाला है, उनका जन्म 11 जुलाई 1978 को हुआ। उनका जो डिसिप्लिन है वो है बॉक्सिंग, डिवीजन है बाटम वेट। सो द मोशन बाटम वेट बॉक्सर जिन्होंने मेडल्स इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में मॉरिशस के लिए जीते, लेकिन उनका सबसे सुप्रसिद्ध, सबसे लोकप्रिय, सबसे पहचान, जिसके जरिए उनकी पहचान बनी,

इट वॉज साल 2008 में जब बेजिंग के ओलंपिक्स में उन्होंने पहली बार के लिए मॉरिशस के इतिहास में पहला ओलंपिक मेडल जीतने वाला एक एथलीट वे बने लुई रिशार ब्रूनो जुली दैट वाज इन बॉक्सिंग और उनके बारे में कहते हुए उस जमाने के कमेंटेटर कहते थे द मॉरिशियन मैजिशियंस और इस तहत पहली बार के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इन ड्यूरिंग द ओलंपिक गेम्स मॉरिशस का झंडा लहराया ब्रूनो जुली को बधाई और बहुत बहुत शुक्रिया इस तरह से देश का मान ऊंचा करने के लिए

इस सतरंगी माटी से तो बहुत सारे जन्मे, लेकिन सिर्फ याद उनको की जाती है जो अपने त्याग अपने बलिदान से औरों को पीछे छोड़ देश का नाम रोशन कर देते हैं। चले हम एक ऐसे डोमिनेंट स्प्रिंटर को ढूंढते हैं जिन्होंने मल्टीपल गोल्ड मेडल्स जीते हैं 400 मीटर में एट द अफ्रीकन चैंपियनशिप्स एंड मेडल्स एट द जे देफ द्वारा फ्रांकोफोनी और जो अभी तक सेवरल नेशनल रिकॉर्ड्स उनके नाम हैं। आपको फिर से बोलते हैं 400 मीटर स्प्रिंटर, डोमिनेंट स्प्रिंटर 400 मीटर पर। अगर मेरी यादगार ठीक है तो वो रोड्रिक्स के हैं, लेकिन मॉरिशस में रहते हैं और बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं, बहुत ही नर्म स्वभाव के व्यक्ति हैं। और अगर हमारी यादगार ठीक है तो वो भोजपुरी और हिंदी भी बोलते हैं। तो हम किसकी बात कर रही हैं? आपका जवाब 4 2 4 6 पर।

4:44। अब की बार हम एक स्प्रिंटर को ढूंढ रहे थे, मोशन स्प्रिंटर, जो 200 मीटर और 400 मीटर की दूरी पर स्प्रिंट करते हैं। बोर्न इन रोड्रिग्स, जैसे कि हमने पहले बताया, अब वर्तमान स्तर पर विको मॉडल रहते हैं। उनकी शादी नताशा खामन मिराजावा से हुई है 2006 में। पहले वे वॉलीबॉल खेलते थे, वॉलीबॉल प्लेयर थे, और बाद में वे स्प्रिंट के क्षेत्र में आए। उनके दो बच्चे हैं, एरिक्सन एंड एरिका, और उन्होंने अफ्रीका के स्तर पर और ज्यूडराक फ्रांकोफोनी में अनेक बार मुशस का नाम रोशन किया है। जैसे कि हमने आपको पहले बताया, वे एक बहुत ही नर्म स्वभाव के व्यक्ति हैं, बहुत ही हसमुख और बहुत विनम्रता से लोगों से मिलते हैं। हम भी उनसे मिल चुके हैं, वेरी वेरी नाइस पर्सन। सो उनको सलाम करते हैं आज इस 1 अक्टूबर पर, जब हम एथलीटों की चर्चा कर रहे हैं, जब कल ग्लासगो गेम्स का क्लोजिंग होने वाला है, जहां पर मेवेक्ले ने मोशस को एक ब्रॉन्ज मेडल दिलाया।

टाइटल सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म भाग मिल्खा भाग, एक स्प्रिंट पर आधारित ये फिल्म। चलें जिस आखिरी एथलीट के बारे में बात करने वाले हैं, एलिट व्हीलचेयर रेसर जिन्होंने वुमेन्स 1500 मीटर्स T54 इवेंट में भाग लिया और मॉरिशस के लिए सिल्वर मेडल जीता। और ये पहली बार के लिए नहीं है, उन्होंने अनेक बार मॉरिशस के लिए मेडल जीता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अनेक इवेंट्स में वे मॉरिशस के पोर्ट ड्रापो बनी हैं। यहाँ पर हम सलाम करना चाहेंगे उनके हौसले को, उनकी हिम्मत, नेओमी अल्फोंस जिन्होंने कितनी बार मॉरिशस का नाम रोशन किया अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। नेओमी अल्फोंस के साथ साथ अगर और कोई नाम जो हम जोड़ना चाहेंगे वो है स्टीफन बकलैंड, अकॉम्प्लिश्ड स्प्रिंटर जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल

जीता 200 मीटर पर इन 2003 वर्ल्ड एथलेटिक्स फाइनल में और साथ ही साथ अनेक बार थ्री कॉन्सिक्यूटिव टाइम्स वे IAAF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स फाइनल्स में पहुंचे। अभी इन दिनों जेरेमी लारा रोडर्स ने भी सिल्वर मेडल जीते इन 110 हार्डल्स एंड अफ्रीकन एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स। रिकॉर्ड कोले जिन्होंने लाइट वेल्टरवेट गोल्ड मेडल जीते एंड ऑल अफ्रीका गेम्स। सो इन सभी एथलीटों को हम सलाम करते हैं जिन्होंने बहुत लगन के साथ अपने बहुत ही जज्बे के साथ बहुत ही जुनून के साथ अपने ड्रीम को फॉलो किया और खुद अपने लिए अपने परिवार के लिए और अपने देश के लिए एक मिसाल बन गए सबों के सब। सो हम चाहेंगे कि आज के हमारे नौजवान भी इन लोगों से प्रेरित होकर अपना ड्रीम अपने सपने को साकार करें। जैसे कि अब्दुल कलाम जी ने कहा था, सपना वो नहीं जो आंखों को बंद करके देखते हैं, यानी कि सोते हुए, सपना तो वो है जो हमको सोने न दे। सो इसी के साथ ही आज का ये प्रोग्राम यहाँ पर समाप्त होने को चला। अगले शनिवार को फिर से मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। थोड़ी देर में आप मिलेंगे प्रताप जी से, पुराने गानों के प्रोग्राम लेकर भी आ रहे हैं। हमें आज्ञा दें, नमस्कार, जय सियाराम, जय मॉरिशस।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: Continuous music.

94.6, 98.2 FM पर ये है और इन फ्री रेडियो मनोरंजन। शाम के 5 बज चुके हैं और अभी से लेकर शाम के 6 बजे तक हम लाए हैं पुराने गीतों का सौगात, पुराने नगमे अभी से लेकर शाम के 6 बजे तक और इन फ्री रेडियो मनोरंजन पर। मस्तानी और रंगीन शनिवार की शाम है और आज है शनिवार 1 अगस्त साल 2026। कुछ यादों में हम आपको ले चलेंगे यादों की दुनिया में, जहाँ पर प्यारी प्यारी यादें सजा कर हम लाए। आशा करते हैं कि आप इन पुराने गीतों को बेहद पसंद करेंगे, ओल्ड इज गोल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं इस म्यूजिकल सफर को एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। यस, पुराने नगमे प्रोग्राम अजय प्रताप सिंह के साथ, फिल्म दहलीज से। ये पहला गाना आपके नाम।

वो जमाना भी क्या जमाना था, जी हाँ, और वो बीता हुआ जमाना फिर से लौट कर तो वापस नहीं आएगा पर वो जमाना एकदम ही बड़ा ही प्यारा था, रंगीला जमाना था, जब लोग इन गीतों को गुनगुनाया करते थे, लोग इन गीतों पर झूमा करते थे, बहुत ही अच्छे अच्छे गाने बने थे अपने ज़माने में, इसलिए कहते हैं वो ज़माना भी क्या ज़माना था। वो जय फिल्म नसीब अपना अपना का वही प्यासा गीत, ये गीत आप सुनेंगे आशा भोसले और आशा भोसले और शबीर कुमार की आवाज़ों में। प्यार प्यार प्यार प्यार प्यार के बाद क्या होता है चलिए एक साथ सुनते हैं।

प्यार प्यार प्यार ओनली लव ओनली लव। जी हाँ, प्यार मोहब्बत की बातें हो रही है और एम फ्री रेडियो मनोरंजन पर पुराने नगमे प्रोग्राम में। और अगर ये प्यार न हो जिंदगी में तो जिंदगी किस काम की दोस्तों? किसी ना किसी तो प्यार करना चाहिए, है ना? कोई आपके जिंदगी में है ना? और कहते हैं दोस्तों कि पुराने गीत जो होते हैं सदाबहार गीत होते हैं, उसे हम अंग्रेजी में एवरग्रीन सॉन्ग्स कहते हैं। ये गीत ऐसे होते हैं जिन्हें हम बार बार सुनना चाहते हैं, हजार बार सुनना चाहते हैं। ये कुछ ऐसे गाने होते हैं जो हमारे दिल में हमेशा हमेशा के लिए समा जाते हैं। जैसे अगला गाना, कहना कहनी है एक बात लग मगर हम कह नहीं पाते, जो बात जुबान से आप कह नहीं पाते उन्हें नजरों से कह दीजिएगा। अगर वो आपसे सच्चा प्यार करती है तो उससे पता चल जाएगा कि आपको उनसे कितनी मोहब्बत है ना?

आप माने या ना माने, पुराने गीत जो है हमें अपने बचपन की याद दिला देते हैं, जवानी के दिन याद दिला देते हैं, या हमें अपने स्कूल या कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं इन गीतों को सुनकर। बहुत ही सुरीले और प्यारे होते हैं ये पुराने गाने, है ना। और हम में से बहुत से लोग पुराने गीतों को पसंद करते हैं, इन गीतों को गुनगुनाया करते हैं, और ख़ासकर ये गाना उरी बाबा उरी बाबा उरी बाबा। और ये उरी बाबा क्या चीज़ है, चलिए एक साथ सुनते हैं। फिल्म का नाम है विधाता। आशा भोसले साथियों की आवाज़ों में ये गीत सभी प्यार करने वालों के नाम। वाह क्या म्यूजिक है, डांस म्यूजिक। चलिए सैटरडे की मस्तानी शाम है तो हो जाए थोड़ा सा डांस धूम धड़ाका। अगस्त महीने की पहली शाम आपके नाम पुराने नगमे और एम फ्री रेडियो मनोरंजन पर।

जहाँ दोस्तों कैसा जमाना था जब ये गीत हमें हंसाया करते थे, कभी कभी हमें रुलाया करते थे और बहुत प्यार था इन गीतों में, है कि नहीं। आजकल के गीत भी अच्छे हैं पर पहले के ज़माने में जो गीत होते थे वो ज़्यादा अच्छे थे, हाँ कि नहीं। और ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, और बेशक शनिवार की मस्तानी शाम है और इस शाम के रंगों में हम भी ढल चुके हैं, आप भी ढल जाइए। किशोर कुमार की आवाज़ गूंजने वाली है, इट्स टेकन फ्रॉम द मूवी कच्ची पतंग, ये शाम मस्तानी। और रात की शाम बहुत से लोग सीसाइड पर है या कुछ घर पे है, कुछ लोग रसोई घर में खाना तैयार कर रहे हैं, तो कुछ लोग टीवी देख रहे हैं और रेडियो भी सुन रहे हैं, और कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं और साथ में हमें सुन रहे हैं। थैंक यू मैं सुनने के लिए। रेडियो मनोरंजन ऑन 94.6 98.2 FM, और अगर ऑनलाइन सुनना चाहते हैं तो क्लिक करें www.mbcradio.tv, फिर क्लिक करें लिसन रेडियो मनोरंजन। सो पुरानी नगमी प्रोग्राम चलता है हर शनिवार की शाम 5 से 6 बजे के बीच और इन फ्री रेडियो मनोरंजन पर। कभी मैं प्रताप सिंह इस प्रोग्राम को प्रस्तुत करता हूँ तो कभी डॉक्टर पूनम प्रस्तुत करती है। आज मेरी बारी है जी हाँ, पुरानी नगमों के प्रोग्राम का। तो चलिए हम सुनते हैं एक साथ ये गाना, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए।

0: Continuous music. Music. Music.
1: पुराने नगमे।

आप में से बहुत से लोग हमारे साथ झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, क्या बात है। और दोस्तों, पुराने गीतों का मजा ही कुछ और है कि नहीं? गीतों के बोल, जो संगीत, गीतों का लय, सुर और ताल, माशाल्लाह। बहुत ही प्यारा सा गाना भी आ रहा है, जहाँ पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी प्रेम की, कृष्ण के प्रेम में, क्या बात है। और किशोर कुमार साथियों की आवाज में गाना नमक हलाल फिल्म से लिया गया। आपको याद है ये मूवी? यस, बिग बी, अमिताभ बच्चन साबित में नजर आई थी और इस गाने में तो काफी कॉमिक किया था उन्होंने। कॉमेडी रोल से भरपूर ये गाना। यस, आज की शाम जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए रेडियो मनोरंजन के साथ, ये गीत आपके नाम, इस गीत को गुनगुनाइएगा जरूर। पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, नाची थी, कैसे नाची थी, आइए एक साथ सुनते हैं।

Yeah.

अगर घुंघरू बांध मेरा नाचे थे, जी हाँ मेरा तो कृष्ण के दीवाने थे। और आप किसके दीवाने हैं जो बिना घुंघरू के नाच रहे हैं, झूम रहे हैं? कहते हैं दोस्तों कि हर गीत में एक एहसास होता है, एक जज्बात होता है। कभी कभी ये गीत इंसान को भावुक कर देता है, इंसान इमोशनल हो जाता है। और पुराने गीतों में हर प्रकार के गीत होते हैं, जैसे खुशी के गीत, दर्द भरे गीत, जुदाई गीत भी। कभी कभी जो बात हम दिल कभी कभी जो बात दिल में होती है, उस बात को हम गीतों के ज़रिए बयां कर देते हैं। और पुराने गीतों को जो है इन्जॉय करते रहिए, इन गीतों का मज़ा लेते रहिए। एक से एक अच्छे गीत आ रहे हैं रेडियो की लहरों पे, और ये रेडियो आप ही लोगों का है, MBC रेडियो मनोरंजन। जी हाँ, और बेशक कभी कभी जब कोई गाना चलता है तो हमें किसी की याद आ जाती है कि नहीं? और जब याद आ जाती है तो हम उस खास इंसान को याद करते, स्पेशल इंसान को याद करते हैं जिसके साथ हमने कुछ पल बिताए हो। और बेशक वो इंसान अगर खास हो, उनके साथ बिताए हुए पल भी खास होते हैं। सो यादों की दुनिया में कुछ ऐसे गाने भी हैं जिन्हें सुनकर आपको किसी की याद आ गई। लगता है कि अभी अभी आपको किसी की याद आ रही है। ऐसा होता है, होता है जी, प्यार में ऐसा भी होता है। और अगर ये बात है तो चलिए सुनते हैं अगला गाना। अपने तो जैसे तैसे, जी हाँ, बहुत ही प्यारा सा गाना, लावारिस फिल्म से आ गया। थोड़ा सा झूमते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, और सैटरडे की शाम है तो डांस तो बनता है थोड़ा सा। चलिए हमारे साथ डांस कीजिए ऑन द डांस फ्लोर रेडियो मनोरंजन और M3 94.95.6 98.2 FM पर।

दिव्य सज्जन लेडीज एंड जेंटलमैन जय ऑडियंस, और इसी गीत के साथ ही पुराने नगमे प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होने जा रहा है। याद है शाम के ठीक 6 बजे आप सुनेंगे पूरा समाचार बुलेटिन, और शाम के 5 बजे से अभी तक आपने हमारा साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आपकी मुलाकात होगी कल संडे की शाम को 3 से 4 बजे और फ्री रेडियो मनोरंजन यानी किसी चैनल पर प्रोग्राम होगा, ऐसा भी होता है। दैट वॉज अ प्लेजर बींग विद यू दिस इवनिंग। सो कल मिलते हैं कल शाम के 3 बजे वो 3 से 4 बजे रेडियो मनोरंजन पर प्रोग्राम होगा, ऐसा भी होता है, अद्भुत सनसनी खबरों का प्रोग्राम। सो कल तक हमें दीजिए इजाजत, और जी प्रताप सिंह की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, शुभ रात्रि, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस।

कल शाम के इस बुलेटिन में आप सबका स्वागत। सबसे पहले आज की सुर्खियां। कल रात राष्ट्रसभा में फाइनेंस बिल और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स मिसेलेनियस बिल सुधार के साथ पारित। इन दोनों विधेयकों के पारित होने से अब बजट तक कदम अमल में लाए जा सकेंगे। राष्ट्रपति दफ्तर ने कम्युनिके के जरिए घोषित किया कि जॉन सिडनी पिया को पर्यटन मंत्रालय के जूनियर मंत्री पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया गया। सरकार साल के अंत से पहले नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बिल 2026 को पारित कराने की योजना बना रही है। ये नया विधेयक 28 वर्ष पुराने कानून की जगह लेगा। विदेश में फेफड़ों के कैंसर के सबसे आक्रामक रूपों में से एक के इलाज के लिए चीन में विकसित की गई एक इम्यूनोथेरेपी अब इंग्लैंड की NHS में उपलब्ध है। बुलेटिन में एक बार फिर आप सबका स्वागत। पेश समाचार अब विस्तार से। कल रात राष्ट्रसभा में फाइनेंस बिल और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स मिसेलेनियस बिल सुधार

0: के साथ पारित किया गया। इन दोनों विधेयकों के पारित होने से अब बजट 2026-2027 के कदम अमल में लाए जा सकेंगे। बजट कदमों को कानूनी मान्यता देने वाले दोनों विधेयकों पर अपने समीक्षा में प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित सुधारों का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक वित्त को सुदृढ़ करना, आर्थिक विकास को गति देना तथा मॉरिशस को एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में स्थापित करना है। उनको सुनते हैं।
1: First of all, thank all the honourable members of the House.
2: Finance Bill और Economic and Financial Measures Miscellaneous Provisions Bill पर अपने समापन भाषण में प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम ने कहा कि इन विधेयकों का उद्देश्य सरकारी वित्तीय व्यवस्था को मजबूत करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
1: These bills are about putting in place a modern, fair and future ready.
2: ये दोनों विधेयक एक ऐसी आधुनिक, निष्पक्ष और भविष्य के लिए तैयार वित्तीय तथा नियामक व्यवस्था स्थापित करने के बारे में है जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी, कमजोर वर्ग की रक्षा करेगी और साथ ही मॉरिशस की एक स्वच्छ तथा सुव्यवस्थित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में प्रतिष्ठा को और मजबूत करेगी। ये दोनों विधेयक केवल कानून में तकनीकी बदलाव नहीं है बल्कि ये सुशासन और वित्तीय प्रबंधन के प्रति हमारी सोच में एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। हम ऐसी व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं जो पहले अक्सर केवल कुछ लोगों के हितों की सेवा करती थी। अब हम एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जो पूरे समाज, कर्मचारियों, व्यापार जगत और आने वाली पीढ़ियों सभी के हित का ध्यान रखेगी। उनके संबोधन का मुख्य केंद्र पेंशन व्यवस्था में सुधार रहा। डॉ. नवीन राम गुलाम ने महंगाई के आधार पर हर साल होने वाले पेंशन समायोजन और मीन्स टेस्ट को समाप्त करने का उल्लेख किया। उन्होंने कठिन और शारीरिक रूप से मेहनत वाले काम करने वाले कर्मचारियों को ये भरोसा भी दिलाया कि यदि वे चाहें तो उन्हें 60 साल की आयु से ही पेंशन मिल सकेगी। जब हमने हो सकता है शब्द का इस्तेमाल किया तो उसका कारण ये है कि ये महंगाई के आधार पर तय होने वाली दर पर निर्भर करेगा। इस समय हम कोई निश्चित राशि नहीं बता सकते। हमने हमेशा ये फैसला किया है कि महंगाई के अनुसार आवश्यक एडजस्टमेंट किया जाना चाहिए। जहां तक मीन्स टेस्ट को समाप्त करने की बात है, इसकी अतिरिक्त लागत 6.2 बिलियन रुपए होगी। ये धन हमें कहीं न कहीं से जुटाना पड़ेगा। अगर हम जरूरी कदम नहीं उठाते और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुधार नहीं करते तो ये व्यवस्था सफल नहीं हो पाएगी। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने ये भी याद दिलाया कि मॉरिशस की अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ इसराइल और अमेरिका की सैन्य कार्रवाई तथा यूक्रेन में जारी युद्ध का मॉरिशस की अर्थव्यवस्था पर अभी भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
0: डॉक्टर नवीन राम गुलाम के अनुसार सरकार ने जनता के हित में कठित और साहसिक फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि परचेसिंग पावर शील्ड योजना पहले ही प्रभावी साबित हो रही है जिसके परिणाम स्वरूप दैनिक उपभोग की 19 श्रेणियों के उत्पाद की कीमतों में कमी दर्ज की गई है। उन्होंने मीठे उत्पादों पर लगाए गए कर का भी उल्लेख किया। उनके अनुसार ये कदम जनता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आवश्यक है। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
2: वित्तीय साल 2026-2027 के बजट में जनता की प्रमुख मांगों को ध्यान में रखा गया है। प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम ने कहा कि लोगों की खरीद शक्ति में आई कमी के प्रभाव को कम करने के लिए परचेसिंग पावर शील्ड शुरू किया गया है। फिलहाल हम प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड का उपयोग कर रहे हैं जिसके लिए इस वित्तीय वर्ष में फिर से 2 बिलियन रुपए का प्रावधान किया गया है। इस फंड की स्थापना के बाद से हम 19 प्रमुख उपभोक्ता सामानों की श्रेणियों की कीमतें कम करने में सफल रहे हैं। इस योजना के तहत 2400 वस्तुएं शामिल हैं जिनका उपभोक्ताओं की खरीद शक्ति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। प्रधानमंत्री ने चीनी वाले उत्पादों पर लगाए गए अतिरिक्त कर का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मॉरिशस में मधुमेह के मामलों की अधिकता को देखते हुए ये फैसला जनता के हित में लिया गया है। जब किसी व्यक्ति का अंग काटना पड़ता है या कोई लंबे समय तक आईसीयू में भर्ती रहता है या किसी की आंखों की रोशनी चली जाती है तो उसका खर्च कौन उठाता है? इसका खर्च करदाताओं यानी टैक्स पेयर्स के पैसे से पूरा किया जाता है। चाहे कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स पीता हो या नहीं, स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च सभी करदाताओं को चुकाना पड़ता है। इसलिए पूरे समाज को

0: स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खाद्य और पेय पदार्थों पर होने वाले खर्च का बोझ नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य सेवा की लागत आखिरकार टैक्स पेयरों के धन से ही पूरी होती है। हम लोगों को ये नहीं बता रहे हैं कि उन्हें क्या खाना चाहिए या क्या नहीं। उन्हें जितना चाहे उतनी चीनी खाने या मीठा पेय पदार्थ पीने का अधिकार है, लेकिन उस पर लगाया गया कर उन्हें स्वयं देना होगा। डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने स्पष्ट किया कि बजट में घोषित 500 से ज्यादा कदमों को मौजूदा कानूनी और प्रशासनिक प्रावधानों के तहत ही लागू किया जा सकता है।
1: बजट कदमों को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाले दोनों विधेयकों पर बोलते हुए वित्तीय सेवा मंत्री ज्योति जितन ने राष्ट्रीय फिनटेक रणनीति नेशनल फिनटेक स्ट्रैटेजी पर विशेष जोर दिया। रोड्रिग्स के सांसद फ्रांसिस्को फ्रांसवा ने मांग की कि 12 अक्टूबर को रोड्रिग्स डे घोषित किया जाए और उस दिन को पब्लिक हॉलीडे घोषित किया जाए। विपक्ष के सांसद चेतन बाबूलाल ने कहा कि पेंशन प्रणाली में मींस टेस्ट रद्द किए जाने के बाद होने वाले घाटे की भरपाई के लिए सरकार अब तक कोई ठोस समाधान नहीं खोज पाई है। मंत्री अशोक सुभों के अनुसार ये सुधार एक प्रगतिशील पेंशन प्रणाली की नींव रखता है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि नेशनल पेंशन एंड प्रोविडेंट फंड को विधेयक में शामिल नहीं किया गया है, ताकि इससे संबंधित सभी पक्षों के साथ उचित परामर्श किए जा सके। पल बेहौशे ने पेंशन सुधार शुरू करने से पहले सभी संबंधित पक्षों के साथ सलाह मशवरे नहीं किए जाने पर खेद जताया। मंत्री शकील मोहम्मद ने मुख्य रूप से बैंकिंग एक्ट और वक्फ एक्ट में किए गए सुधारों पर बात की। राष्ट्रपति दफ्तर ने कम्युनिके के जरिए घोषित किया कि जॉन्सिड नेपिया को पर्यटन मंत्रालय के जूनियर मंत्री पद से राष्ट्रपति द्वारा हटा दिया गया है। राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल ने संविधान के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए और प्रधानमंत्री की सलाह पर ये निर्णय लिया है। बजट में घोषित प्रिसिशन फार्मिंग स्कीम की धारणा आकार ले रही है। इस सहायता योजना का मकसद है आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर स्मार्ट खेती प्रोत्साहित करना, ताकि पैदावार बढ़ाई जा सके और देश में खाद्य सुरक्षा मजबूत हो। इस योजना के अंतर्गत आधुनिक कृषि उपकरणों की खरीद के लिए डीबीएम के जरिए रियायती दरों पर लोन और फारे की तरफ से जरूरी तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
0: लिस्कालिया स्थित ये ग्रीन हाउस पिछले एक साल से कुछ ज्यादा समय से काम कर रहा है। इसके मालिक बिरजू राव जी अब अपने कृषि कार्यों को आधुनिक बनाने की योजना बना रहे हैं। इसी उद्देश्य से फागे के एक अधिकारी ने उनके ग्रीन हाउस का दौरा किया। जैसा कि बजट में घोषित किया गया था, कृषि उद्योग मंत्रालय जल्द ही प्रिसिजन फार्मिंग स्कीम शुरू करेगा। ये एक सहायता योजना है जिसका उद्देश्य किसानों को आधुनिक और सटीक कृषि तकनीक अपनाने में मदद करना है। फागे में सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट अमुदालिंगम इलापेन कहते हैं, इस स्कीम से खेतीहरों को टेक्नोलॉजी में निवेश करने में मदद मिलेगी। अपने ग्रीन हाउस में इन्हें शामिल कर सकते हैं और पैदावार बढ़ा सकते हैं। इन टेक्नोलॉजियों में भारी निवेश करना पड़ता है। फागे का उद्देश्य है खेतीहरों की मदद करना, उनका मार्गदर्शन करना, उनके लिए किस तरह की टेक्नोलॉजी उचित रहेगी, आज कामगारों की समस्या है, किस तरह पैदावार बढ़ा सकते हैं और कामगारों की संख्या कम कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी में निवेश करने से ऐसा किया जा सकता है। इस स्कीम में हम 50% रकम देंगे, खेतीहर 50% लगाएगा।
2: C'est évidemment un investissement dans la technologie. Nous pouvons finaliser les paramètres dans ce scheme-là. Pour subventionner 50%, planter là, mettre 50% sur l'argent.
0: बिरजू राव जी इस योजना के योग्य हैं। इसके तहत उन्हें अपने ग्रीन हाउस के लिए आधुनिक प्रिसिजन फार्मिंग उपकरण खरीदने पर सब्सिडी मिलेगी। वे कहते हैं, आधुनिकीकरण लाने के लिए इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे उपकरण हैं जो रिमोट से चलते हैं, सिंचाई प्रणाली पर नियंत्रण रख सकते हैं।
3: Et vous êtes capable de contrôler le système d'irrigation, ou capable, si vous trouvez un problème, un issue avec une plante, vous êtes capable de régler le problème avec, à distance, c'est-à-dire.
2: Comment nous capable d'investir? C'est investir dans l'acier qui est en ouvrant, qui est automatisé, comment à une certaine température, l'acier là ouvert en haut, il va qu'il s'en salir là.
0: Amudalinga me la peine kehte hain, aise greenhouse mein nivesh kar sakte hain jo automated hain, upar se wo khula hain. ये सभी प्रिसिजन फार्मिंग स्कीम में शामिल होंगे। जो व्यक्ति अपने खुले खेत में निवेश करना चाहता है, जमीन के तापमान की जांच करना चाहता है या नमी की, कब सिंचाई करना चाहिए, ये सभी प्रिसिजन फार्मिंग स्कीम में शामिल होंगे। विष्णु राव जी अपने ग्रीन हाउस में दो तरह की फसलें उगाते हैं, जिनमें खीरा भी शामिल है

0: पहले ग्रीन हाउस में उन्होंने तापमान को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के लिए पहले ही एक एग्जॉस्ट फैन लगा दिया है। प्रेसिजन फार्मिंग स्कीम की मदद से वे अपनी पैदावार को और बेहतर बना सकेंगे और इस तरह देश की खाद्य आत्मनिर्भरता को मजबूत करने में भी योगदान देंगे।
1: और विपक्ष नेता के अनुरोध पर नेशनल पेंशन एक्ट में किए गए संशोधन पर राष्ट्रीय सभा में मत विभाजन यानी डिवीजन ऑफ वोट्स कराया गया। मतदान के परिणाम स्वरूप 55 सांसदों ने संशोधन के पक्ष में मतदान किया जबकि 6 सांसदों ने इसके विरोध वोट दिया। वहीं 5 सांसद मतदान के दौरान अनुपस्थित रहे। राष्ट्रसभा में गौरतलब है कि जूनियर मंत्री सिडनी पियर ने भी विरोध में मतदान किया था। सारा विस्तार इस रिपोर्ट में।
2: शुक्रवार शाम को फाइनेंस बिल के कमेटी स्तर पर अध्ययन के दौरान विपक्ष नेता जोले जोंगाव ने विधेयक के क्लोज 12 पर वोटों के विभाजन की मांग की जो नेशनल पेंशन एक्ट में बदलाव से जुड़ा था। मौजूद सरकारी पक्ष के सभी सदस्यों ने इस प्रावधान के पक्ष में वोट किया सिवाय जूनियर पर्यटन मंत्री सिडनी पिया के, जिन्होंने इसके खिलाफ वोट किया। बाद में इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स मिसलेनियस प्रोविजंस बिल की तरह ही फाइनेंस बिल भी बजट 2026-2027 में घोषित कदमों को लागू करने के लिए पारित किया गया। हालांकि संसदीय सत्र के बाद प्रधानमंत्री ने संविधान की धारा 66 के तहत निर्वाचन क्षेत्र नंबर 19 स्टैनले रोजिल के निर्वाचित प्रतिनिधि सिडनी पिया को जूनियर मिनिस्टर के पद से हटाने का अनुरोध किया। एक प्राइवेट रेडियो पर बोलते हुए डॉ. नवीन राम गुलाम ने कहा कि उन्होंने सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत को लागू किया है। वेस्टमिंस्टर सिस्टम से आए इस सिद्धांत के अनुसार सरकार के सभी सदस्य कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसलों की सामूहिक रूप से जिम्मेदारी लेते हैं और सार्वजनिक रूप से उनका समर्थन करते हैं, चाहे उनकी व्यक्तिगत राय कुछ भी हो। संविधान द्वारा गणराज्य के राष्ट्रपति को दिए गए अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए और प्रधानमंत्री की सलाह पर धर्म गोकुल ने 31 जुलाई की शाम को जूनियर पर्यटन मंत्री के तौर पर सिडनी पियर की नियुक्ति को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया। ये बात उल्लेखनीय है कि मॉरिशस के संविधान के तहत जूनियर मिनिस्टर्स की नियुक्ति और उन्हें पद से हटाने का काम देश के राष्ट्रपति करते हैं और ये प्रधानमंत्री की सलाह पर होता है।
1: विदेशी खबरों में जो आज सुर्खियों में है उनमें स्पेन और मोरक्को के बीच चल रहे स्वेता सीमा संकट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 67 हो गई है। स्पेन की सरकार ने शनिवार को ये जानकारी दी कि मारे गए लोगों में से कुछ की मौत समुद्र में डूबने से जबकि कुछ समुद्री दीवार यानी ब्रेक वाटर बैरियर पार करते समय मची भगदड़ का शिकार हुए। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
3: स्पेन का कहना है कि उसने सियोटा सरहद पर दोबारा काबू हासिल कर लिया है। अधिकारियों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में बड़े पैमाने पर हुई सीमा पार गतिविधियों के बाद 48,000 से ज्यादा प्रवासियों को वापस मोरक्को भेज दिया गया है। मैड्रिड ने सिविल गार्ड और फौज की तैनाती बढ़ा दी है जबकि नए समुद्री प्रवेश को रोकने के लिए एक फ्लोटिंग बैरियर लगाया जा रहा है।
4: I would like to define what happened as an attack, a violation of the territorial integrity of Spain. Ceuta is a Spanish city and what happened deserves all of our rebuke, all of our condemnation in the strongest possible way.
3: सिर्फ दो दिनों में 50,000 से 60,000 के बीच लोगों ने उत्तर अफ्रीका में मौजूद स्पेन के इस घिरे हुए इलाके की सरहद को पार किया या पार करने की कोशिश की। रिसेप्शन केंद्र बहुत जल्दी भर गए और बचाव कार्रवाइयां भी तेजी से बढ़ गई हैं। इंसानी नुकसान भी काफी ज्यादा रहा। ताजा आंकड़ों के मुताबिक कम से कम 57 प्रवासियों की मौत हुई है जिनमें लोग डूबने या भीड़ भाड़ के दौरान जान गंवा बैठे। ये संकट अब सिर्फ स्पेन तक सीमित नहीं रहा। फ्रांस ने स्पेन के साथ अपनी सीमा पर सुरक्षा निरीक्षण सख्त कर दिए हैं ताकि प्रवासियों को अपनी सरजमीन की तरफ आने से रोका जा सके। ये कदम दिखाता है कि इस अप्रवासन संकट का असर पूरे यूरोप पर पड़ रहा है।
1: जानते हैं मौसम का हाल। पूर्व से आ रहे सक्रिय बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान। आज रात देश के पूर्वी इलाकों ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे और कोहरा छाया रहेगा।

कल दिन के दौरान भी बादल घिरे रहेंगे। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 17 से 19, अधिकतम 22 से 24, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 21 से 23, अधिकतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके कहीं कहीं पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। कल सुबह से दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। कल सुबह सूर्योदय 6:39 पर, शाम को सूर्यास्त 5:52 पर होगा।

देश विदेश की इन्हीं खबरों के साथ ये बुलेटिन समाप्त हो चला। इसको आप तक पहुंचाने में पूरे न्यूज विभाग और तकनीकी पर काविश का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। हॉस्पिटल रोड वाहूश मॉम्प्लेमिसेस में 77 साल के 77 ईयर्स ओल्ड के श्री जीवन झारी जो जीवन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे रवि झारी के मकान हॉस्पिटल रोड वाहूश मॉम्प्लेमिसेस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। मौसलमान राफ्रेलू उशेते रूज में 84 साल की 84 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती जियानाकामा नायडू जो वासन के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके बेटे दुर्गेश वेंकटासादू के मकान मौसलमान राफ्रे ले ओशेते रूज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआमौशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 10 AM। रॉय रोड सेंट जूलियन डुतमो में 94 साल के 94 ईयर्स ओल्ड के श्री लक्ष्मी प्रसाद महाबीर जो विद्या के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और डॉक्टर विश्वास महाबीर के पिता थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 1:30 बजे उनकी पत्नी विश्वानी महाबीर के मकान रालोड सेंट जूलियन डुतमो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 1:30 PM। एवेन्यू ला सुरेंग लेन पाल्मा 4 बोन में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड के श्री बुधन रामबन जो बुलों के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी मंगलवार को दिन के 1 बजे उनकी पत्नी कमला रामबन के मकान एवेन्यू ला सुरेंग लेन पाल्मा 4 बोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पाल्मा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन ट्यूसडे एट 1 PM। फैब्रिक्स लेन मोडालबेया में 82 साल के 82 ईयर्स ओल्ड के श्री नरदेव गुदुरी जो सुरेश के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 10 बजे उनके बेटे विरेन गुदुरी के मकान फैब्रिक्स लेन मोडालबेया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 10 AM। एवेन्यू द्रा पेयर बेल रोज में 83 साल की 83 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती भाग्या बुलका जो भाग्या भाभी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुपहर 3 बजे उनके मकान एवेन्यू द्रा पेयर बेल रोज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोडेगाड की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 3 PM। नंबर 17 बुलवा विक्टोरिया वाली पिटो में 48 साल की 48 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती नंदिनी देवी सिंह पैदाशी नाम दुबुरी और जो सीमा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 1:30 बजे उनके पिता रमेश दुबुरी के मकान नंबर 17 बुलवा विक्टोरिया वाली पिटो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थोंगबो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 1:30 PM।

0: शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: RM3 Radio.

हो चुके हैं और मैं चाहती हूँ कि आप बस मुझे बताएं आप कैसे हैं, कैसे हैं आप। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है। तो चलिए बात शुरू करते हैं नई सोच के ऊपर। और आज मैं साथ हूँ आपके, यानी कि 6:30

0: कल से डाइट करूंगी, कल से मम्मी को फोन कर लूंगी, कल थोड़ा सा अपने लिए टाइम जरूर निकालूंगी, लेकिन वो कल आता ही नहीं। और देखते हैं, देखते ही देखते कई महीने गुजर जाते हैं, कई साल गुजर जाते हैं और सच में वो दिन आता ही नहीं। तो आज इसी कल को लेके हम बात करेंगे, यही आदत को थोड़ा सा चेंज करेंगे और कह सकते हैं सुधारेंगे जो चीज़ें हमें कल करनी, जो आज करनी है, जो हम कल पे टाल देते हैं, उसको हम आज से प्लान करेंगे कि आज से ही उसे कैसे कर सके। तो एंजॉय कीजिए कहानी को।
1: RM3 Radio.

0: नई सोच
1: 6:42 मिनट हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम नई सोच के साथ और हम हमेशा लेकर आते हैं नई सोच में कोई ऐसी बात जिससे थोड़ी थोड़ी सी चेंजेस हम अगर करें अपनी ज़िंदगी में तो बहुत कुछ हो सकता है। अगर आपने कोई ऐसा प्लानिंग किया है कि आप सोच रहे हैं कि मैं कल से 5 बजे या 6 बजे जल्दी उठूँगी

0: या उठूंगा या कल सुबह से पढ़ाई करूंगी या करूंगा या मैं वॉक पर जाना चाहती हूं पर हो नहीं पाता है, जिम ज्वाइन करना चाहती हूं हो नहीं पाता है। कई बार खुद को छोटी छोटी सी डांट खुद को मारनी होती है, खुद को अपने आप को मिरर में देखना होता है, कई बार एहसास करना होता है कि क्या मेरी बॉडी ऐसी थी या मैं इससे और बेटर कर सकती हूं। क्योंकि अगर हमने इसको बेटर में नहीं लेकर आए तो हमारी एक तो हेल्थ थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, फिर भी हमें यही रियलाइज़ होता है कि अरे पहले कर लिया होता तो बेटर रहता। तो हम तो यही नहीं सोच में आपको बोलेंगे कि छोटी छोटी चीजें करते रहिए, एंजॉय कीजिए गानों को।
1: RM3 रेडियो।

0: नहीं सो।
1: दोस्तों, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और हमें सुन रहे हैं, तो हम इतना ही आपको कहेंगे, हमें सुनते रहिए और हम थोड़ी थोड़ी सी ऐसी बातें कर सकें आपस में, जिससे हमारी ज़िंदगी थोड़ी सी ट्रैक पे आ सके, थोड़ी सी सुधर सके। और अगर आपकी पहले से सुधरी हुई है तो फिर और क्या चाहिए भाई, वही तो चाहिए होता है। इंसान अपने आप में सेटिस्फाइड रहे, अपने आप में कहे जैसा मैं हूँ बिल्कुल ठीक हूँ। तो अगर आपके साथ भी ऐसे ही हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, पर ऐसे बहुत सारे लिसनर्स हैं जो बहुत जगह कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं ज़िंदगी को लेके, तो ये मैसेज सिर्फ उन्हीं के लिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि अरे हमने कल जो काम किया था वो तो इतना अच्छा नहीं किया था, पर कल से जो मैं करूँगा ना वो बहुत अच्छा करूँगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बार हम परफेक्ट टाइम का इंतज़ार करते रहते हैं, जब पैसे होंगे, जब छुट्टी मिलेगी सब ठीक हो जाएगा, ये सब काम कर पाऊँगा। लेकिन दोस्तों, ज़िंदगी में सब कुछ कभी एक साथ परफेक्ट होता ही नहीं है। शुरुआत कहीं से करनी पड़ती है, तभी रास्ते बनते हैं, तभी आप खुश होते हैं। जो आपकी इच्छाएँ हैं, जो आपके सपने हैं, आप खुद से पूरे तभी कर सकते हैं जब आपने सब कुछ अच्छी तरीके से मैनेज किया है।
2: RM3 Radio.
1: कोई भी चीज को कल पे मत छोड़िए, आज ही करें, अभी करें, इसी समय करें।

तो दोस्तों हर किसी की इच्छा होती है आगे बढ़ने की, अच्छा कमाने की, लेकिन शुरुआत तब होती है जब आप अपने दिल की सुनकर पहला कदम उठाते हैं। बस आज से एक बात याद रखिए, अच्छे काम को कभी कल पर मत डालिए। नई सोच में बस इतना ही, अब मिलते हैं शाम को 7 से 9 दिलों की आवाज़ में। मैं हूँ आपके साथ पूनम। RM3 Radio.

0: टाइम चेक शाम के 7 बज रहे हैं।
1: Center 95.5 North South 95.6 East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
3: Your kind of music all day, all night, right here on your one and only station.
4: दिलों की आवाज़

0: दिलों की आवाज,
1: सात बजकर आठ मिनट हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने प्रोग्राम दिलों की आवाज के साथ और मैं हूँ आपके साथ पूनम। और मुझे पता है दोस्तों, बहुत दिनों से जैसे मैं आप सबको मिस कर रही थी, वैसे ही आप भी मुझे कहीं ना कहीं मिस कर रहे होंगे। तो बस बहुत अच्छी बात है, अब हम फिर से जुड़ गए हैं एक साथ। और अगर आपको भी कोई मैसेज करना है तो आप कर सकते हैं 5250-6200 पर और कॉल कर सकते हैं 4028070। और आज जो मॉरिशस में थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया है, मौसम अपना हल्का फुल्का सा रंग बदल रहा है, ये ज़रूरी भी था। हमारे यहाँ पे पानी की थोड़ी सी दिक्कत होनी शुरू हो चुकी है, तो इसलिए हम कहते हैं कि अपना भी ख्याल रखिए, पानी का भी ख्याल रखिए, क्योंकि पानी है तो सब कुछ है, वरना हमारे पास क्या है। तो ये वीकेंड को बहुत ही खूबसूरत बनाना है, यादगार बनाना है। मैं हूँ आपके साथ पूनम, जुड़े रहिए मेरे साथ, इंजॉय कीजिए अपने गानों को और अपनी फरमाइश भेजना बिल्कुल मत भूलिएगा। बात करते हैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद और ये गानों को इंजॉय करते हैं, साथ रहिए, इंजॉय कीजिए दिस सॉन्ग।
0: RM3 रेडियो।

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज।
2: 7:19 हो चुके हैं दोस्तों, और आज मुझे लग रहा है, एहसास हो रहा है कि मैं थोड़े दिन नहीं थी तो आप भी उदास हो गए, और मैं तो बहुत ज़्यादा उदास थी, पर बहुत अच्छी बात है, हम लोग वापस मिल गए हैं और हमने अपना प्रोग्राम शुरू कर दिया है दिलों की आवाज़, और जहाँ पर बहुत सारे गाने और बहुत सारे मैसेजेस के साथ में आपने अपना प्यार जो है वापस दे दिया मुझे, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी का जो भी इस समय हमारे साथ दिलों की आवाज़ प्रोग्राम को सुन रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी एक ऐसी दोस्त कह लो, माँ जैसी कह लो, फुलवंती जी हैं, जो हमेशा बहुत प्यार से कॉल करती हैं, और मुझे मतलब मैं क्या बताऊँ आपके लिए, फुलवंती जी आप सच में फूल जैसी ही हैं मेरे लिए, थैंक यू आपके लिए। जो नेक्स्ट गाना चलेगा मेरी तरफ आपके लिए, और मधुमती का जो गाना मांगा है वो मांगा है हमारे भाई अबू ने, और वो कह रहे हैं कि जब ये दिलों की आवाज़ चलता है और पुराने गाने चलते हैं तो मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है, तो हम तो यही चाहते हैं कि आपका दिल खुश रहे, हम तो हर तरह के गाने चलाते हैं सिर्फ आपको खुश करने के लिए, तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने गानों को एंजॉय करते रहिए। साथ में अभिदीन जी भी जुड़े हुए हैं जो कि लोअर विल से जुड़े हुए हैं, और बहुत ही प्यारे गाने की फरमाइश की, आपके भी गाना चलाएंगे, और अगर आपको भी कोई मैसेज करना है तो आप कर सकते हैं 5250600 पर, और अगर आपको कॉल करना है तो कर सकते हैं 4028070 पर। एंजॉय कीजिए अपना ये प्यारा सा गाना।

0: दिलों की आवाज, दिलों की
1: आवाज। 7:35 हो चुके हैं दोस्तों और आप हमारे साथ जुड़ गए हैं दिलों की आवाज़ कार्यक्रम के। कार्यक्रम तो जो है ये आप सबके लिए है और हम हमेशा उम्मीद करते हैं आपकी पसंद के गाने चलाएं यहाँ पर इस समय, क्योंकि पूरे दिन काम करते हैं या टाइम नहीं मिल पाता अपने लिए, तो ये टाइम थोड़ा सा होता है जो कि सैटरडे का होता है आपके लिए हम रखते हैं कि आपकी पसंद के गाने। आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, चाहे टीवी में सुन सकते हैं या कोई और, आजकल तो सबके हाथों में फ़ोन है वहाँ पे भी सुन सकते हैं, बट जब बात होती है एक दूसरे से बात करने के बाद और एक माहौल बन जाता है और एहसास होता है सब लोग एक साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग जिनको पुराने गाने पसंद हैं और हम बाद में दूसरे गाने भी चलाएंगे, बट एक बार होता है कि चलो अरे उसने भी ये वाला मैसेज किया, उसने भी ये मैसेज किया, तो हम लोग तो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और हमको आपको भी इतना ही कहेंगे, अपने गानों को इन्जॉय करें, थोड़ा सा अगर आपने खाना खा लिया है थोड़ा सा रेडियो को चलने दीजिए, थोड़ा सा वॉक कीजिए, वॉक बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक उम्र में हैं तो अपने हाथों को थोड़ी सी वर्जिश दीजिए, थोड़ा सा तेल लगाइए हाथों में, थोड़ी सी क्रीम लगाइए। इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई मेकअप कर रहे हैं या कुछ नहीं, ये थोड़ी सी सेल्फ केयर है जो हम लोग एक टाइम में आगे कहते हैं अरे नहीं अब नहीं होता, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा अपने लिए टाइम 5-10 मिनट निकालिए, गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए। मैं आपके साथ ही हूँ यहाँ पर।
0: RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज़ की
1: आवाज़ 7:51 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हुए हैं अपने ही प्रोग्राम दिलों की आवाज़ के साथ। और हर बार अपनी बात कहना ज़रूरी नहीं होता, कई बार चुपके चुपके सिर्फ लोग मैसेज नहीं करते, कुछ नहीं कहते, बस गाने सुनते हैं, इंजॉय करते हैं, बातें सुनते हैं और एहसास करते हैं कितना इम्पॉर्टेंट है किसी का किसी की लाइफ में होना। अगर आपके साथ में भी कोई है, आपकी ज़िंदगी में कोई है, तो आपको बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपके पास आसपास अपना परिवार है या अपने दोस्त हैं या आप खुद अपने साथ हैं। सबसे बड़ी बात होती है इंसान खुद के साथ ही नहीं जुड़ पाता, कभी कभी अपने दिल की बात खुद को ही नहीं समझा पाता और कहता है अरे नहीं छोड़ो ना ये बात छोड़ो ना। तो छोड़नी नहीं है ज़िंदगी में, हमेशा अपना साथ ढूंढना चाहिए। अपने आप का साथ जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ज़रूरी नहीं कोई हो तभी आपको एहसास हो कि आप ज़िंदा हैं या आप कोई ज़िंदगी में कोई ऐसा चीज़ करना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अगर अपने साथ भी जुड़े रहेंगे थोड़े पल के लिए भी, तो आप वो सब कुछ पा सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं जो कभी किसी और के साथ की इच्छा रख के आपको होती है। तो चलिए जो हमारे साथ इस समय

जुड़े हुए हैं उनके दो तीन मैसेजेस ले लेते हैं और बात सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं। इस समय हमारे साथ अनीता जी फ्लिकॉन फ्लाक से हैं और जो इससे पहले गाना चला था ये आप ही की पसंद का था। देवानंद जी एक प्यारे से गाने की फरमाइश की है, हम अभी चलाने वाले हैं। बाबू अनंतवा जी हैं और अपने परिवार के लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहते हैं। विदेश अपने बेटे पूजा बहू उषा वाइफ भावना बिटिया रानी जो कि कथबोन से हैं और हम बिल्कुल चलाने जा रहे हैं। साथ में ललित जी साथ दे रहे हैं यूएसए से और अपनी वाइफ के लिए सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, हर दिन गुजरने के साथ साथ तुम्हारे लिए मेरा प्यार और भी गहरा होता जाता है। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच आप सभी का जो भी हमारा साथ दे रहे हैं। इंजॉय कीजिए इस गाने को। RM3 Radio.

0: continuous music. RM3.
1: You're listening to RM3 Radio Man.

0: दिलों की आवाज,
1: आठ बज के छः मिनट हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम दिलों की आवाज़ के साथ। और जो ये आवाज़ है ना, कहते हैं यूनिवर्स में गूंजती रहती है और इसे कई लोगों ने, बहुत सारे साइंटिस्ट ने कहा कि इतनी आवाज़ें हैं यूनिवर्स में तो ये आवाज़ें कभी नहीं मिटेगी। जो हम लोग फ़ोन पे बात भी करते हैं, जो हम लोग आपस में सामने आमने बात करते हैं, ये भी यूनिवर्स में कहीं ना कहीं रहने वाली है। तो रेडियो का यही असर है, इसीलिए हम लोग एक साथ जुड़ जाते हैं। हमें पता ही नहीं चल पाता कि क्या हम फैमिली हैं या नहीं, बस एहसास होता है कि हम सब एक ही हैं और इसी एक ही बबल में हम रह रहे हैं। तो इन्जॉय करिए अपने गाने। और कई लोग इस समय होंगे जो अकेले हैं, पर रात को आप अकेले नहीं हैं, बिल्कुल हम आपके साथ हैं। हमारा संगीत आपके साथ है, धुनें हैं जिन्होंने बनाई हैं वो हैं, या वो एक्टर्स जिनको आप याद करते हैं, जिनके एक्सप्रेशंस को याद करते हैं, जिनकी बातों को याद करते हैं, जिनकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं उन गानों के साथ में, आपके परिवार की जो बॉन्डिंग जुड़ी हुई है। जैसे आपने कभी अपनी वाइफ को पहली बार मिले होंगे, उस समय एक गाना सोचा होगा वो सब, या हस्बैंड, तो ये चीज़ें कहाँ से छूट जाएंगी, बिल्कुल नहीं छूट सकती। इसलिए जो फूल होता है उसी को कहते हैं अप्रैल फूल। तो ये गाना बहुत ही पसंद का एक गाना है जो किसी ने भेजा है और कहा है ये ज़रूर बजाइएगा, वरना मैंने आज रात नहीं सोना है। तो हम भी चलाने वाले हैं, एंजॉय कीजिए इन गानों को।
0: RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज़ की आवाज़ दिलों की आवाज़।
1: जब दिल की आवाज़ आती है तो बहुत सारे गाने ऐसे चलते हैं जो हमने कभी सोचे भी नहीं होते और बहुत टाइम से चलाए भी नहीं होते। तो जब आप हमें बताते हैं कि हमारे दिल में या दिमाग में ये वाला गाना आ रहा है तो प्लीज़ चला दीजिए, तो हमारा भी दिल करता है। पहले तो हम सुनना चाहते हैं आपका मैसेज और उसके बाद हम गाने चलाते हैं। तो जब आप प्यारे प्यारे से मैसेजेस भेजते हैं या कॉल करके बताते हैं कि आपको ये वाला गाना पसंद है तो हमारा भी दिल करता है भाई चलाएँ फटाफट से। पर क्या करें, लिस्ट लंबी होती है तो धीरे धीरे थोड़ा सा पेशेंस रख के सबके गानों को सराएं और साथ में इंजॉय भी कीजिए। और साथ में खाना वाना अगर खा रहे हैं तो खाएं, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, थोड़ा सा वॉक कीजिए। और जो लोगों ने पूरे दिन रेस्ट किया है तो उनको हम यही कहेंगे कि वॉक भी करो, खाओ भी साथ में, और थोड़ा अपने आसपास के लोगों के साथ बातें भी करो, वो भी बहुत ज़रूरी है। चलिए, इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं इब्राहिम जी और एक प्यारे से गाने की फरमाइश कर रहे हैं जो कि पोर्टलू से हैं, तो हम बिल्कुल आपके चलाने वाले हैं। बीना जी कात्रपोन से हैं और उनकी उनको भी एक प्यारा सा गाना सुनना है तो हम उनके लिए भी एक गाना चलाएंगे। धानी जी जुड़े हुए हैं और उन्हें भी एक प्यारा सा गाना सुनना है बट हमने उन्हें कह दिया कि थोड़ी देर के बाद चलाएंगे। गुलशन जी हमारे साथ दे रहे हैं जो कि कह रहे हैं श्रवण मास रहा है और सभी डिवोटीज को उनकी मामा प्रभा, सिस्टर दीक्षिता और आयशा और भोला फैमिली

0: के लिए गाना चलाइए, बिल्कुल चलाने वाले हैं। रिहाना चीजों की पोटली से साथ दे रही हैं और कह रही है मेरा दिल नहीं कर रहा कुछ खाने का क्योंकि मेरी किचन थोड़ी दूर है रेडियो से और मैं ये प्रोग्राम मिस नहीं करना चाहती। सो स्वीट, थैंक यू सो मच आप सभी का जो भी हमारा साथ दे रहे हैं। इस समय अनीता जी के अपिप से साथ दे रही हैं और एक गाने की फरमाइश कर रही हैं, बिल्कुल चलाएंगे। आंटी जी साथ हैं और अपने हस्बैंड और सभी लिसनर्स के लिए गाना सुनाना चाहती हैं। और कल आप सभी जानते हैं रफ़ी साहब की 46th डेथ एनिवर्सरी थी, हमने उनके लिए बहुत ही प्यारा प्रोग्राम किया था, पर हम चाहते हैं कि वो एक ऐसे शख्सियत हैं जिनकी आवाज़ तो है ही बहुत प्यारी और जिनको आज भी सब याद करते हैं। इंजॉय कीजिए उन्हीं का ये प्यारा सा गाना।
1: RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज,
1: पर क्या करें भाई, प्यार है ही ऐसी चीज़ की जब को सबको पता चल जाता है। उनके पता नहीं कोई एक्सप्रेशंस होते हैं, उनकी बातें होती हैं या उनकी आंखों का मिटकाना होता है, बट पता चल जाता है इस इंसान को, इस इंसान से प्यार है। उसकी धड़कन थोड़ी सी तेज़ हो जाती है और ऐसा एहसास होता है ये जो सामने से गुजर रहा है ना, ये इसमें कुछ खास है, ऐसा ये फीलिंग आती है। और ऐसी फीलिंग बहुत लोगों को आती है, और मुझे एहसास है कि जब ये फीलिंग आती है तो इसको कोई जज नहीं कर सकता, और जो जज कर जाते हैं उन्होंने भी कभी ना कभी इस प्यार को महसूस ज़रूर किया होता है। चलिए भाई, ये प्यार को महसूस करते रहेंगे साथ साथ, साथ में दो तीन मैसेजेस ले लेते हैं। इस समय हमारे साथ प्रकाशवंती जी जुड़ी हुई हैं बेल्जियम से और इन्जॉय कर रही हैं इस प्रोग्राम को। थैंक यू सो मच मैम आपका, और आप हमारे शाह हमारे साथ जुड़ती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, आपके सभी के मैसेजेस बहुत ही प्यार भरे होते हैं। थैंक यू सो मच। गायत्री जी सैम्पियर से साथ दे रही हैं और अपने पूरे परिवार के लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहती हैं, बिल्कुल हम चलाने वाले हैं। ज्योति जी भी साथ दे रही हैं शातो बनारस से, और अपने पूरे परिवार के लिए और दोस्तों के लिए एक गाना सुनाना चाहती हैं, चलाने वाले हैं। संध्या जी अपने पति के लिए और पूरी फैमिली के लिए एक गाना सुनाना चाहती हैं। संध्या जी बिल्कुल, आप शायद मैंने ये पहली बार आपका मैसेज पढ़ा है, पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। धानी जी साथ दे रहे हैं और उन्होंने भी एक बहुत प्यारे से गाने की फरमाइश की है। एक प्यारे से हमारी स्वेनल है जो कि हमेशा हमारे साथ जुड़ती हैं, और आज एक न्यूली वेडिड कपल है, या तो उनकी शादी हो गई है या उनकी शादी के लिए वो हल्दी पे जा रही हैं। अवनीश एंड अश्विना की शादी है या उनकी हल्दी पे जा रहे हैं, तो हम तो आपको यही कहेंगे, बेस्ट विशेस देंगे पूरी फैमिली की तरफ से और हम तुगलक फैमिली की तरफ से, और सबको यही कहेंगे जिन जिन की भी शादी है हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। आपकी ज़िंदगी का एक न्यू चैप्टर खुल रहा है, उसको अच्छे से पढ़िए, उसको अच्छे से समझिए। जब शुरुआत अच्छी हो जाती है तो अंत भी बहुत अच्छा होता है। शुरुआत में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है तो बीच में कहीं ना कहीं ठोकरें लगती रहती हैं, तो ठोकरें नहीं, बस हमेशा मुस्कुराना और हमेशा स्माइल के साथ आगे बढ़ते रहना।
0: RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज की आवाज
1: 8:48 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम दिलों की आवाज़ के साथ। अब चलते चलते बस इतना ही कहूँगी, ज़िंदगी में गीतों के लिए हमेशा थोड़ा सा वक्त निकालिए, क्योंकि अच्छे गीत कई बार वो कह जाते हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कह नहीं पाते। मैं थी आपके साथ पूनम, नमस्ते, शुभरात्रि, अपना ख्याल रखिएगा। आखिरी गाना जो है वो मेरी पसंद का है,

उससे पहले जो स्वेनल की पसंद है मैं तो वही कहूँगी। और जिनकी भी शादियाँ हैं हमेशा खुश रहें, इंजॉय कीजिए लाइफ को। लाइफ बहुत ही छोटी सी और प्यारी सी है, तो इसको जितना हंसते मुस्कुराते गुजारेंगे बहुत अच्छी बात। और जो हमारे इस समय लिसनर्स बाहर देशों से जुड़े हैं, अगर आपके वहाँ पर रात है तो शुभरात्रि, दिन है तो हैव अ नाइस डे एंड ग्रेट डे, इंजॉय कीजिएगा। और साथ में यहाँ पर जो सोने की तैयारी में है, बस आराम से सोइएगा बिना किसी टेंशन के। जिसने हमें धरती पे भेजा है उसने हमारा बहुत ख्याल रखा हुआ है, बस हमें उसको स्माइल दिखाते रहना है और बस वो देखता रहेगा। एंजॉय कीजिएगा ये दो गाने। RM3 Radio.

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: भोजपुरी, भोजपुरी तड़का, तड़का।
3: भोजपुरी धमाल आज की रात रत्ना के संगे एमबीसी रेडियो पर।
2: भोजपुरी, भोजपुरी तड़का, तड़का। घड़ी मिला ला जा रात के 9:02 हो गल बा। भोजपुरी तड़का कार्यक्रम सुने होला हमार सब कोई श्रोता लोगन के दिल से स्वागत करत है। अभी से लेके रात के 11 बजे ले बढ़िया बढ़िया भोजपुरी गीत तोहर खातिर जे रोज रात के चले रहा रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर था चला। आज के मधुर कार्यक्रम मजेदार कार्यक्रम संगे आप सब कोई के साथ देवब जा जहां कहूं से भी साथ है देवत हवा। बस आशा है ये करब जा कि आप सब कोई मजे में हवा था और आज के कार्यक्रम के संगे बहुत ही प्यार से साथ है देवत चला। आज के कार्यक्रम बहुत बढ़िया रही और जे तरह मन बा तोहरा मन बा कोनो गीत सुने के जे तोहर तोहर हियाँ बा कोनो खास मौका जैसे जन्मदिन शादी के उत्सव तो जरूर हमने के टेलीफोने करे सकब और बढ़िया बढ़िया गीत संगे चला। आज के बढ़िया कार्यक्रम के शुरुआत करब जा और आज के जो पहला गीत है बहुत बढ़िया गीत है और है गीत है खालिद बंधु के आवाज में रखल थोड़ा जी ले कहे के जाने ल सामदी आवेला 6 दिन के बाद और सामदी के रात परिवार संगे

तनी बढ़िया समय बितावे के एगो बढ़िया मौका मिल जाला तो चला तनी त्राका के दूर भगावा तनाव के दूर रखा और तनी जीला बढ़िया बढ़िया गीत संगे राजा भैया के आवाज में रखा है पहला गीत

0: भोजपुरी तड़का।
1: अरे खाए पिए का बात करत हवा हो। देख निमन निमन खाए के चाहिला औरी बढ़िया बढ़िया शुद्ध पानी पिए के चाहिला औरी हमर चचा जोन का बोलब। चला चचा के बात बोले के अगाड़ी तोहरा जना देवा था आई कि अगला जन गीत है बहुत ही बढ़िया मजेदार गीत और हैजा पर हल्दी के जशन से आवत हवन विश्वानी दुमन और हमनी के बोले एगो हल्दी के रात से आल है और गरम गरम दाल कच्चू है गीत वा तनी हमर परिवार खातिन तनी चला दहो। उनका जोन सहेली है नीला और प्रतिभा और संगे हवन शोभा जी जरूर काहे नहीं संतोष महादेव के आवाज में रखल है बढ़िया बढ़िया गीत गर्मा गरम दाल कचू। और हाँ का बोलत रही हमर जोन चचा है जाने ल जैसे अभी खाले पीले के बात बोल देलक हैजा पर त खाले पीले निमन चीज खाए के और निमन चीज पिए के कौन दिन आयुर्वेद पे एगो कार्यक्रम रहल और चचा उ कार्यक्रम देख लेलक और बोले दोक्तवा बोले कड़वा चीज पिए के कड़वा चीज जब पीबत तोहर सेहत अच्छा रही विस्की के बुताई निकाल के बैठ गईलक। हमनी के बोले देखा हाई भी बहुत कड़वा है पी के हम अपन जीवन बहुत निमन से लेके जाब। हम बोली का हो चचा दारू पिए के नहीं बोलक उ तोरा बोलन करेला के जूस पिए के और नीम के जूस पिए के है से तोहर जाबेत कमती होई है विस्की पी के तोहर तो जीवन नरक बन जाई हो।

भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का भोजपुरी धड़का कार्यक्रम मजेदार कार्यक्रम के संगे संगे बहुत कोई हमनी के साथ देवत हवन 402-808-85 नंबर बा रेडियो मॉरिशस के 402-808-85 और इस जेब में सास विदा करे खोजत हवा तो 5251-7005 सेकंड एंड स्वासंजी 05 पर तू हमनी के में सास विदा करे सकब ढेर कोई हमनी के हाई नहीं मगवा पे टेलीफोने करे लंस हाई पे टेलीफोन नहीं करियो काहे के हई टेलीफोन करे खातिर नहीं हई मैसेज विदा करे खातिर नहीं मगो ह औरी जेकर संगे तो जुड़ गल हवा हम है रत्ना अभी हमनी के साथ देवत हवन हमर जितना भी श्रोता लोगन बहुत प्यार से साथ देवब जा रात के 11 बजे लेते चला 9:15 हो गल बा और मजेदार कार्यक्रम संगे है जा पर वाकवा बगल से भाई आबू उनकर बेगम हवन आफे संगे हवन आयाज असलम जायान जहीरा रईस और खाला छोटी उनकर जुनसाली साइबा है और संगे हवन उनकर खास संगतिया आपी और उनकर पत्नी और उनकर भगिनी हवन रकीबा जेकर खातिर बहुत दुआ करत हवन और बस चला ऊपर वाला से हइए प्रार्थना करब जा हइए मांगब जा कि वो अच्छा हो जाए निमन हो जाए जल्दी से और आज जय हलाल के आवाज़ में रखल अगला गीत मांगत हवन उनकर सब परिवार खातिन और अभी थोड़ा दिन पहला जाने ल न गुरु पूर्णिमा रहल हाँ हो गुरुजन यानी दुनिया भर के जितना टीचर लोग हवन उनकर खातिन एगो बहुत खास दिन और जाने ल चाची भी उ दिन के चचा के बोले जाने ल हो आज गुरु पूर्णिमा है तो तोहर गुरु के तनी याद कर ल तो चचा तो हाथ जोड़ के चाची के सामने लगल बोले हे गुरुदेव हमनी के तनी आशीर्वाद दे द हमनी के तनी हिम्मत दे द त चाची बोले का हो का बोलत हवा ऐसे काहे बोलत हवा हम तो हर गुरु हैं का बोले हाँ तू ही तो हमर गुरु हवा तू ही तो हमर गुरुवाइन हवा काहे के तू ही तो हमनी के लुगा धोवे सिखैलक बर्तन धोवे सिखैलक झाड़ू कैसे लगावे के है सब तू ही तो सिखैलक हमनी के तू ही तो हमर सबसे बड़का गुरुवाइन हवा

भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और हईजा पर हमनी के संगे वकवा बगल से जुड़ गल हवन फुलवंती जी, उनकर पति हवन देवानंद, बेटी हवन भावना, बेटा हवन उषान, संगे साथ देवत हवन गांव गोप से सुनीता जी और उनकर प्यारी बहन विमला कोंगो माँ बगल से गांव गोप से साथ देवत हवन अमृता जी और गुडलैंड से जुड़ गल हवन उनकर बहिन वीना। चलो सब कोई परिवार साथ देवत हवन और हईजा पर छोटी हमनी के साथ देवत हवन पोला जैसे। और अगला गीत जो है बिजमावती संपत की आवाज़ में रखल है गीत, वो बहुत खुशी रहेलन सुने के। तो हई गीत करब जा दीदी ललिता खातिन, दादी प्रभावती और संगे हवन भाई आत्मा राम और हरीश भैया खातिन जे बोबासे से साथ है देवत हवन और कथ बोन बगल से सुभाष बुलक खातिन। तो चला साथ देते रहिए जा बहुत ही मजेदार कार्यक्रम संगे। और जाने ल न हमर चाची और चचा के तक इतना

बड़ी शादी के हो गल पर संगे साथ रहते रहते भी कबो कबो ऐसे झगड़ा कर देवेलन। चाची कौन दिन चाचा के बोले हाँ हो सुनले रही कि तू शादी से अगाड़ी बहुत शिवाला जात रहल बहुत मंदिर जात रहल बहुत पूजा करत रहल। बोले हाँ जात रही सच्चे के सुनले हव तू सच्चे के जात रही हर लेंदी के जात रही शिवाला शिव अभिषेक करे और हर काम करत रही। बोले सच्चे इतना पूजा पाठ? बोले हाँ बहुत पूजा पाठ करत रही। तो चाची बोले तो अब शादी हो गई बाद में काहे नहीं जाला अभी तो तनको नहीं जाला शिवाला काहे नहीं जाला हो तनको पूजा नहीं करेला। तो चाचा बोले काहे के तू अब हमनी के मिल गल हव न तू हमार जीवन में चलाल हव। तो चाची तो शर्मा के टमाटर नियल लाल लाल हो गल फिर जाने ल चाचा कौन ची बोल दिल। बोले हाँ जोन दिन से तू मिल गल हव उ दिन से हमनी के भगवान पे से विश्वास उठ गल बा।

खुद बढ़िया बढ़िया गीत और हाई ये कार्यक्रम के जस्ती जोली बनावे लंसा। तो चला आज के कार्यक्रम के आगे बढ़ाओ अब जा गिरीश रूपचंद के आवाज में रखल अगला गीत चलाओ अब जा और जोन हाई गीत हा बहुत प्यार से चलाओ अब जा शांति जी खातिन जे बितियागुर से हमनी के साथ देवत हवन और उनका जितना मराठी परिवार हवन दागोचिया के और खासकर उनकर भगीना ओम जे अप दागोचिया में रहेलन और हई गीत हाइये गीत रिहाना जी तोहर खातिर भी चलाओ अब जा फिनिक्स से तू साथ देवत हवा और तू बोलत हवा सुंदर परिसर मन नहीं जानत हवन के गैले बात गीत गैले हवन गिरीश रूपचंद सुंदर परी बहुत मजेदार गीत है और जाने ल चचा लोग के चचा के जो फामी हवन सब कोई चचा के बोले हाँ तू तो हमनी के तन को याद नहीं करेल कबो हमनी के याद करके टेलीफोन नहीं करेल मैसेज एगो विदा नहीं करेल एगो गुड मॉर्निंग के हाउ मैसेज आवेला ना फोटो फोटो हाउ भगवान के और गुलाब के फूल के हाई जोन गुड मॉर्निंग लिखल जाला हाउ व्हाट्सएप पे तू नहीं विदा करेल तो चाचा पलट के हमनी के बोले देखा हाई बुढ़वा बोला था हमनी के याद नहीं करत हवन हमनी के तो हमार पोताप के पासवर्ड याद नहीं रहेला हाई बुढ़वा के याद रख बोला था कैसे बोला अभी हाई बुढ़वा के कि कैसे याद रहेला हमनी के हमार पोताप के पासवर्ड याद नहीं रहेला बोला

0: भोजपुरी तड़का।
1: ऐसन गीत सुनबा तो कैसे दीवाना नहीं होई बहो। बहुत मजेदार गीत संगे आज तो हम जुड़ गल हई और हईजा पर जितना कोई हमनी के साथ देवत हवन बस ऐसे ने जुड़ल रही है रात के 11 बजे ले। और चलो अभी तो जैसे सब कोई बोलत हवन और सब कोई जानत हवन की सावन के मास शुरू हो गल बा और हईजा पर मानती जी अल्फोंस से संगे साथ देवत हवन और उनका दू गो बहिन अनंती और आरती। अगला गीत शिव के महिमा है गीत चलाओ अब जाओ उनकर खातिन उनकर सब परिवार खातिन। गिरिशा मितिशा भव्या पुष्कल और जितना परिवार संगे जुड़ गल हवन तो चला साथ देते रहिए जा। और शिव के महिमा के है ये गीत ललिता कुशल जी खातिन भी चलाओ अब जा। चाची ललिता हमनी के बहुत प्यार से साथ देवत हवन त्रियोले बगल से और उनकर बहिन लोग हवन देवीना सुदेवी ज्ञानी संगे हवन दीदी छोटी पुलौजे से दादी प्रभावती भाई आत्माराम भाई हरीश सुखलाल मौसी और रमाला राम जावन और हमार पूरा टीम खातिन। तो चला लीलो माथुर सुकन के आवाज में रखल अगला गीत उनकर खातिन चलाओ अब जा। हंसते मुस्कुराते साथ देते रहिए जा। और का बोलब हम हमर जो चचा हवन उ तो का जानी कबो कबो तो ऐसन ऐसन बतवा बोल देवेला हमनी के तब कपार में काम नहीं करेला। हम तो सोचिला कैसे है बुढ़वा के दिमाग में ऐसन सब बतवा चलावेला बोला था कौन दिन लगल शायरी करे चचा है उम्र में शायरी करत हवन बोले जाने ल जब नजर मिल जाला तो ओकरा बोलल जाला इजहार। जब नजर मिलेला तो इजहार बोलल जाला और रात के जब नींद नहीं आवेला ओकरा बोलल जाला प्यार। और जे हई सब चक्कर में नहीं पड़ेलन ओकरा बोलल जाला समझदार। हाँ चाचा पर तू तो पढ़ गई ला ना तोहर तो शादी हो गल चाची के तो देख के तोरा प्यार हो गल रहल तो तू तो कहाँ समझदार हो अब हो बोले हवे दिन के पछतावा हवे दिन के पछतावा बा हमर दिमाग में का बोलब

भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और लाजवाब कार्यक्रम संगे सबको साथ है देवत हवन। तो बस ऐसे नहीं प्यार से साथ देते रहिए जा और रात के 9:41 जितना कोई रात के काम कर रहा था वन सब कोई के बुलब जा बो कुहाश और हई जा पर हमनी के संगे जुड़ गल हवन विजय बंधन जी क्लावित बगल से उनकर पत्नी हवन रेखा तीन गो बहिन चांदनी बिंदु और कुमारी और अगला गीत जो है आदेश ताकू पसान की आवाज में रखल बहुत ही मजेदार गीत संगे। तो चला आगे बढ़ब जा और लाजवाब गीत संगे। और चला आगे बढ़ब सा और इस गीत के बाद आओ अब सा एगो बढ़िया चुटकुला लेके

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का तड़का
0: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और हमेशा साथ दिविलन पिचिगाफे से पंडित राज वर्मा और उनकर पूरा बड़ुआ परिवार बहुत खुशी रहेलन अभी मनु हरपाल की आवाज में रखला ये अगला गीत तो जरूर चलाओ अब जा उनकर खातिन है गीत और चाचा जी के का बात बोल अब जा जाने ल ओकरा तनी खोंकी धर देले बा तनी तप लगल तो डॉक्टर ही आ गल तो डॉक्टर बोले 10 बजे है दवाई लेके चाचा जो 10 बजे लेब तो तोहरा उतना तप नहीं लगे और 4 घंटा पे लेके तो 10 बजे ले लिया भुलैया नहीं तो जाने ल चाचा कुछ कलन 5 बजे में दवाई ले लेलक तो डॉक्टर बोले हो चाचा तोरा बोल ले रहली 10 बजे लेवे के तो तू काहे 5 बजे में दवाई ले लेलक बोले जाने ल डॉक्टर वा डॉक्टर बाबू जाने ल हम भी बहुत बहुत टेलीविजन देख ले हई हई जब दुश्मन अटैके करी ओकर से पहिला ही तू तैयारी दिखा द तू पहिला ही अटैके कर देब तो दुश्मन के मौका नहीं मिली बोले कौन दुश्मन के बात बोला था वो बोले हमार पेट में जो दुश्मन बैठल बा जो मिकोप बैठल बा ओकरा आगे ही पहला से ही दवाई दे देव तो हमनी के तप नहीं लगी समझ गई ल बोले ओ चाचा तू दोके हवा की का हम जब बोल ले हैं तोरा 10 बजे लेवे के तो 10 बजे लिया 5 बजे में काहे तू ले लेलक ले

सी तड़का कार्यक्रम के जारी रखत हई और मजेदार कार्यक्रम संगे हैजा पर से जमिल फोरेसाइड बगल से जुड़ गल हवन चाची शांता सुकागी सब सुकागी परिवार संगे और बहुत मजेदार कार्यक्रम चला हैजा पर उनकर पतो संगे हवन किरण साथ देवत हवन उनकर बेटा सुदेश गाविन सुजीत अशोक और साथ देवत हवन उनकर नातिन संजना और नाती भावेश और विनोद शिवदत्त के आवाज में रखल है अगला गीत संगत कर जान के पानी पिया छान के हई गीतवा चलाओ अब जा और जब संगत के बात करत हव तो हमर जोन पप्पू भैया हका जानी कहाँ से उकरा एगो ऐसन संगतिया मिल गल बा पियकड़ ऐसे शराबी कौन दिन इतना शराब पी के हिलते डुलते आवत आता जानत हव हमर जोन गांव के जोन पंडित ह ओकर से टकरा गए तो पंडित जी तो इतना खिसिया गए

पप्पू से बोले आय का करत हवा मूर्ख, हम तोरा श्राप दे देव। अब तो जब उस श्राप बोलन तो पप्पू के जाने ल कौन चीज सुनायलन, उ सुन ले ले शराब। बोले पंडित जी अतान करो, हम एगो भीरी से जाके हमर गिलास एगो आन दे ला, काहे के तू शराब देवत हवा ना हमनी के, हम बैठ के मिल के पियो। अब

भोजपुरी तड़का कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर आप सबको के साथ देवधवन रत्न अभी से लेके रात के 11 बजे ले बिल्कुल 10 बजा था और सब कोई हमनी के साथ अभी ले जमल हवन साथ देवधवन तो बस प्यार से ऐसे ने साथ देते रहिए जा बहुत बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम बहुत मजेदार गीत संगे सजावट है और एकर संगे है जा पर गाँव गो बगल से श्यामा जी हमनी के संगे जुड़ गल हवन बहुत है प्यार से श्यामा जी हमनी के बोले तनी लागी ना ही छूटे राम हमर खातिन चला द हो काहे न मजेदार गीत संगे लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज़ में रखल है गीत श्यामा जी खातिन चलाओ अब जा श्यामा रघुनंदन उनकर भैया हवन जयप्रकाश भौजी हवन नम्रता केशव और युधीश संगे हवन और उ सादेवत हवन हमनी के लिस पेगौस पीतो बगल से और उनकर खास दोस्त खास सखी हवन विश्वानी जी जे हमेशा हमनी के साथ देवेलन कौन दिमास बगल से और वीना रामफल जी तेहूश बगल से हमनी के साथ देते रहेलन तो चला लागे ना ही छूटे राम के हई गीत चलाओ अब जा उनकर खातिन और जे जितना कोई खुशी हवन हई गीत सुने के उन सब कोई खातिन चलाओ अब जा हई ये गीत और चचा बोले हमनी के जाने ल जब छोटा रहली तब पंडित जी हमर गांव के बड़का पंडित जी हमनी के बोले कर्म कांड करते रहे के चाहिला जाने ल तब से हम कर्म तो करीला पर हमर कर्म कांड कब बन जाला नहीं जानीला हो कहे के हमनी के सब कोई बोले ला है कौन कांड कर देलक

भोजपुरी तड़का भोजपुरी धड़का कार्यक्रम और लाजवाब कार्यक्रम संगे है जहाँ पर प्रेमिला जी हमने के साथ देवत हवन का तो बोन बगल से और उनकर प्यारी बेटी विद्या और उनकर पति हवन भावेश यानी बेटी विद्या और दामाद बाबू हवन भावेश संगे आज भाई बहुत साल हो गल बा आज उनकर शादी के सालगिरह बा तो चला मामा प्रेमिला बगल से उनका बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद आज के दिन के और संगे हवन दूगो बेटा निर्वाण और विहान साथ देवत हवन देवनारायण परिवार दूगो दूगो बहिन संगे हवन भैया विशेष और परिवार से तीन गो मौसी रामनाथ परिवार संगे और संगे संगे संजय जी और ललिता जी भी उनका बहुत बहुत आशीर्वाद देवत हवन और प्रेमिला जी बोले जितना गीत चलावत हवन और लोपिताल में जितना कोई बीमार हवन उन सब कोई के याद करत है सब कोई खातिर प्रार्थना करत है और उनकर खातिर एगो बढ़िया सन गीत और अयोध्या के राज है गीत वा मंगले हवन तो जरूर चलाओ अब जा और हंसते मुस्कुराते साथ देते रहिए जा काहे के जीवन में जब हंसी खुशी रहेला तो जीवन जिए के बहुत अच्छा लगेला कौन दिन चाचा ऐसे तराका में बैठल रहल तो हम बोली का होल चाचा बोले हाँ हाँ पोम खात रही तो हम बोली तो अच्छा ह पोम तो खाई के चाहिला जाने ल दोक्तिया कौन ची बोले एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे बोले डॉक्टर के झड़ा मार गोली बोली काहे डॉक्टर के मार गोली बोले नहीं देखा हम तोरा एगो ज्ञान के बात बोलब हई जन पोम खात रही अरे जब पम खाइते खाइते जे तोरा उमे कीड़ा लौकी तो जाने ला कौन ची करे के त्राका नहीं करे के हमरे का बोला था वो चाचा बोले त्राका जाने ला कब शुरू होला हम बोले नहीं कैसे हम जानब बोले त्राका जब तब शुरू होला जब बेबेत रही अरे बेबेत आधा रही त त्राका शुरू हो जाला कि आधा बेबेत जोन हा आधा जोन कीड़ा हा वो कहाँ गल

भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का।

बजकर माफ कीजिएगा 10 बजकर 10 मिनट हो गलबा हाइजा पर जितना कोई टेलीफोन करत हवन बहुत प्यार से तो चला साथ देते रहिए जहां इसने प्यार से और हाइजा पर बहुत प्यार से लव नीत लोटो में घरे जात हवन और भोजपुरी तड़का कार्यक्रम सुनत हवन और बहुत खुशी हवन जुबेदा के गीत सुने के और संगे हवन उनकर पापा श्याम संगे हवन प्रीति आशा मामू जी संगे हवन और सब बिहारी परिवार और बागातेल से भी जिने करके घरे लौटत हवन तो चला खुशी हवन रंभा राम तोहल के आवाज में रखल जुबेदा के है गीत सुने के काहे नहीं बढ़िया गीत है तो चला सुनब जा संगे मिलके

0: भोजपुरी तड़का।
1: चला 10:19 हो गल भा और बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम संगे जितना कोई अभी साथ देवा धवन बस ऐसा साथ देते रहिया जा और हैजा पर फ्लोगयाल से वीना जी हमनी के संगे जुड़ गल हवन और अगला गीत जन बसंत सुपल के आवाज में रखल और बहुत खुशी हवन वो है गीत सुने के और है गीत उमंगले हवन इंद्राणी जी और जय बिहारी जी खातिर जे अभी हमनी के साथ देवत हवन और मजेदार गीत संगे सब कोई हंसते हंसते आगे बढ़त हवन। चला जीवन में ऐसे आगे बढ़े के चाहिला औरी का बोलब हमर जाने ल चचा पहला गाय पोसत रहल तब गाय के त संभाले के बहुत लेटों लेवेला बहुत मेहनत लेवेला और ओकर जोन गाय ह तनी बूढ़ा हो गल अब गाय के एक आंख से नहीं लौकेला तब चचा बोले अब का करब बेच देव भाई गईवा के तो ओकरा एगो क्लियो मिलल 25,000 रुपया बोल देलक ओकरा तो जब उ गाय लेवे आल तब बोले चचा है गाय तो अंधा है एक आंख से नहीं लौकता तब बड़ा तोरा गाय के दूध निकाले के पसंद बा कि तोरा गाय के संगे तू आंख मटक का करबा बोलता गाय दूध देवे खातिर तोरा चाहिला ना तो लेके जो तू का गाय संगे आंख मटका करबा

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
2: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम वाकवा से हाई जा पर सुदेवी जी हमनी के हमेशा बहुत प्यार से साथ है देवेलन और उनका सब परिवार खातिन खासकर उनकर बहिन दीदी ललिता जे कुशल परिवार से त्रियोले से साथ देवेलन आत्माराम भैया हवन बिलेगी वैश्य से दीदी सुनीता संगे हवन शोभा देवीना माला और मालेगा के राम रतन परिवार खातिन जुन गीत सुदेवी जी तू हमनी के मंगले रहलन उ गीत तो हम चला देनी पर त्राका नहीं कर दूसर गीत तो हर खातिन जरूर चलाओ अब जा बहुत है प्यार से और है जहाँ पर नीता खेदनी जी भी हमनी के साथ है देवत हवन सेंट जूलिया विलास बगल से उनका खास संगी संगतिया खास दोस्त हवन स्वाधिका जी और हैजा पर कुमारी जी भी साथ है देवत हवन दागोचिया बगल से तीन गो बेटी हवन लता प्रतिमा सुधा उनकर पतो हवन कामिनी साथ है देवत हवन नातीन खुशबू मिमी अंजू और सब राम रामफुल परिवार जी कौंडमा से हमने के हमेशा साथ देवेलन और उनकर भाऊजी हवन कामिनी और सब परिवार खातिन उ गीत मंगले हवन त चला साथ देते रहिए जा और बढ़िया बढ़िया गीत संगे जितना कोई हमनी के साथ देवत हवन बस ऐसने साथ बनल रही और ही चला अगला गीत जोन हा गौरी ब्रदर्स के आवाज में रखल हई गीत वा चलाओ अब जा तो हर खातिन और खासकर अनीता जी फ्लिकॉन फ्लाक से हमनी के साथ देवत हवन तब बोले हई त श्रावण मास चलता त श्रावण मास के हई उपलक्ष में एगो बढ़िया शिव जी के गीतवा चला द काहे नहीं हो और भगवान शिव जी सब सब कोई पर अपन कृपा दृष्टि बना के रखी और जाने लो को दिन चचा भात खात रलन और भात खाइते खाइते दूगो कंकड़ मुंह में चलाल खीस करे शुरू कर दिलक चाची के बोले दू गो आंख देले बा बटन नियर भगवान तोरा दू गो आंख देले बा तो नहीं निमन से तू तू चार के भाई कंकड़ नहीं नहीं निकाले सकबा तो चाची भी गाल बजा के बोल देलक बोले हाँ भगवान तो तोरा मुंह में 32 गो दांत देले बा दू गो कंकड़ नहीं चबावे सकबा

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
2: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम 10:32 हो गल बा आउरी समय जोन हा बहुत हाली हाली बीता था। तो चला कार्यक्रम के आगे बढ़ाओ अब जाओ और बिलिया बगल से हैजा पर भाई आत्माराम हमनी के संगे जुड़ गल हवन और बहन सुदेवी बहन ललिता बहन छोटी और बहन प्रभावती खाती नगला गीत के मांग कर ले हवन ज्ञान महिपत लाल के आवाज में रखल है बहुत ही बढ़िया गीत और है जोन गीत है कजरा के मोल एल्बम से लेवल गल गीत है और हमार चचा के का बोला चाची चचा के तो जब देखा तब झगड़ा चलते रहेला जाने ल चाची बहुत परेशान हो गल बा औरी चचा के जितना काम जितना का बोलब चचा के बोले हाँ हाई हम नरक से तोहर हाई नरक से बहुत बहुत परेशान हो गल हाई तोहर गुलामी करते करते ता हम हमार जीवन बर्बाद हो गल बुझाला हौ जन्म में पिछला जन्म में कोनो बड़का काम कोनो बड़ी बहुत खराब काम कर ले रही ये से तू तू हमार जीवन में चल ल तो जाने ल चचा बोले के शुरू कर देलक बोले हाँ अच्छा हमार घर नरक है तो हाई जन

तनी अच्छा काम करला, हमनी के छोड़ के चल जइयो अपन माहिया। हुआ जाके हुआ तोहर माँ के घर के स्वर्ग बनैया, हमर नरक छोड़ के।

0: भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम मौरी बिल्कुल 10:40 हो गल बा और आप सबको अभी ले हमनी के संगे साथ है जुड़ गल हवा तो बस ऐसे साथ देते रहिए जा है जा पर सच बे से सरंचितंगी जी हमनी के संगे साथ देवत हवा और उनकर प्यारी नातिन ईशा के जन्मदिन बा 13 के हो गल हवन पापा हवन किरण ममा नीलम और नाना सुनान चितंगी नानी हवन माला भाई हवन ईशान और मौसी हवन तीनम तो चला इसने साथ देते रहिए जा और ईशा के जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई हमार टीम देने से और है प्यारा सा गीत तो हर खातिन बजावत है जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई जितना कोई आज जन्मदिन मनावत हवन तो चला है गीत खास तो हर खातिन

0: जन्मदिन रही, शादी के मौका रही, कोनो भी ऐसन प्रसंग रही, कोनो भी ऐसन अवसर रही, तो जरूर भोजपुरी तड़का में तू भाग ले भी सकबो और अपन पसंदीदा व्यक्ति खातिर एगो बढ़िया गीत।
1: भोजपुरी तड़का
0: चला है हैजा पर मेहंदी के रस्म होवा था और शगुफ्ता जोली शगुफ्ता तोहर खाती ना ही बढ़िया गीत काहे के काल तोहर निकाह बातें बोर्ड लूस में मामा परवीन और पापा अनवर की तरफ से और खास कर तोहर शोहर नवाज खातिन। अगला गीत चलाओ अब जा सुग्रीम किस्तु के आवाज में रखल और हमर पूरा टीम देने से तोहरा निकाह के बहुत बहुत बधाई और बढ़िया सन गीत तोहर खातिन।

बस में रखल अगला गीत उनकर सब परिवार खातिन फोकेगा परिवार खातिन खासकर उनकर चार गो बेटी प्राविनी पूजा पूनम पिंकी उनकर बेटा हवन प्रावेश उनकर पतो खातिन और सब देवी दयाल परिवार कालिया चेती परिवार दसोई परिवार नायको परिवार और संगे हवन उनकर नाती शायान श्वानिश कानिश आयान और नातिन हवन परी और सब दामाद बाबू भी संगे हवन रोशन तो चला हंसते मुस्कुराते साथ देते रहिए जा और सीता सुहागन है गीत चलाओ अब जा उनकर खातिन और है जा पर हमनी के साथ देवत हवन पीतों बगल से अमृता जी अमृता गणेश उनकर दुगो नातिन हवन सोनिया और परी साथ देवत हवन पूनम और मीनाक्षी और बेटा हवन विशन तो चला संगे मिलकर सुन अब जा है गीत और युधीश भी हमनी के साथ है देवत हवन तो हंसते मुस्कुराते बस साथ देते रहिए जा चला हाँ ये गीत करब जा राजन लक्ष्मण जी खातिन लाफलोगा से भी ऊ हमनी के साथ देवत हवन पत्नी हवन माला बेटी हवन प्रार्थना और प्रगति बहन मानती और भगिनी हवन उर्मिला तुलसी सब लक्ष्मण परिवार और तुलसी परिवार खातिन

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का तड़का भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और एक कर संगे आज के कार्यक्रम के हाईजा पर समाप्त करे के समय हो गल बा और हाईजा पर शोभा जी हमने के साथ जुड़ गल हवन का खबून बगल से उनका सब परिवार खातिन जितना कोई सुनत हवन सब कोई खातिन और एमबीसी के टीम खातिन और खासकर उनका संबंध समधन हवन साकुन जी आज उनकर संगे हवन त चला उनकर खातिन चलावब जा और हाईजा पर श्रेष्ठा बाल गोविंद हमने के साथ देवत हवन और घरे जात हवन भोजपुरी तड़का कार्यक्रम सुनते सुनते है आखिरी गीत के साथ कार्यक्रम के हाईजा पर फिल स्टाप लगावब जा और आशा करब जा कि दिमास के दिन बहुत बढ़िया बीती आवत समय तोहर खातिन बहुत मजेदार रही और एक बार फेरों से भेटाब शाम दी के रात 9 बजे से 10 बजे 9 बजे से 11 बजे ले ऐसे तो रोज चलेला भोजपुरी तड़का कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर रात के 9 बजे से 11 बजे ले पर हम तो हर साथ देव रात के सामदी के रात के बस अपन ख्याल रखिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए जीवन बहुत बहुत बहुत बढ़िया है तो चला अपन ख्याल रखिए और रत्ना को दीजिए अनुमति नमस्कार शुभ रात्रि आप सभी को।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सुनहरी पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
2: प्यारे प्यारे श्रोताओं, स्वीकार करें नीतुषा का करजोल प्रणाम। आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक कुशल मंगल हैं। आइए देर न करते हुए इस सुनहरे पल कार्यक्रम को शुरू करते हैं। और आज एक ऐसी कलाकारा, एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बात करेंगे जो बॉलीवुड की अमर माँ और एक युग की महान अभिनेत्री मानी गई। कौन है वो, आपको तो पता ही शायद चल गया होगा। साथ निभाते रहिएगा।

हाँ, हिंदी सिनेमा की बात हो और माँ के किरदार का जिक्र न आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। जब भी बॉलीवुड की सबसे यादगार माओं की बात होती है, सबसे पहला नाम निरूपा रॉय का आता है। उसका असली नाम कोकिला किशोर चंद्र बुलसारा था। उनका जन्म 4 जनवरी 1931 को गुजरात के वलसर के पास हुआ था। बहुत कम उम्र में उनकी शादी कमल रॉय से हुई और उसके बाद उन्होंने फिल्म दुनिया में कदम रखा। 1946 में गुजराती फिल्म रनक देवी से उन्होंने अपने एक्टिंग की शुरुआत की और उसी साल हिंदी फिल्म अमर राज में भी नजर आई। धीरे धीरे उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बना ली।

अपने करियर के शुरुआती दौर में निरूपा रॉय ने कई माइथोलॉजिकल और डिवोशनल फिल्मों में देवी, सीता और पार्वती जैसे पवित्र किरदार निभाए। हर हर महादेव, चक्रधारी, राम जन्म, मीराबाई और अन्य धार्मिक फिल्मों में उनकी भूमिकाओं ने दर्शकों के दिल जीत लिए। उनके अभिनय में इतनी पवित्रता और श्रद्धा नजर आती थी कि कई लोग उन्हें वास्तव में देवी का रूप मानकर उनसे आशीर्वाद लेने तक पहुंच जाते थे।

1950s और 60s के दशक में निरुपा रॉय ने अपनी प्रतिभा का एक और रूप दिखाया। 2 बीघा जमीन, मुनीम जी, गरम कोट, मुसाफिर, भाई भाई, छाया, शहनाई, कवि कालिदास, रानी रूपमती, सम्राट चंद्रगुप्त जैसे कई यादगार फिल्मों में उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार के किरदार निभाए। चाहे एक सादगी भरी पत्नी हो, एक मजबूत नारी हो या एक दुखी महिला, हर रोल में उन्होंने अपनी अलग पहचान छोड़ी।

0: 1970s के दशक में निरूपा रॉय की पहचान हमेशा के लिए बदल गई। वो बॉलीवुड की सबसे मशहूर स्क्रीन मदर बन गई। दीवार, अमर अकबर एंथनी, मुकद्दर का सिकंदर, मर्द, सुहाग, इंकिलाब, गंगा जमुना सरस्वती, बेताब, क्रांति, गिरफ्तार, लाल बादशाह और अनेक फिल्मों में उन्होंने माँ का ऐसा किरदार निभाया जिसे आज भी लोग भूल नहीं पाए हैं। अमिताभ बच्चन के साथ तो उनकी माँ बेटे की जोड़ी इतनी लोकप्रिय हुई कि दर्शक उन्हें उनकी असली माँ जैसे ही सम्मान देने लगी। फिल्म दीवार का मशहूर डायलॉग मेरे पास माँ है आज भी हिंदी सिनेमा के इतिहास का अमर हिस्सा माना जाता है।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है

निरूपा की एक्टिंग स्टाइल बहुत नेचुरल, इमोशनल और दिल को छू लेने वाली थी। उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस, आंसुओं की सच्चाई और आंखों की भावनाएं बिना अधिक डायलॉग के भी सब कुछ कह देती थी। इसी वजह से उन्हें हिंदी सिनेमा में क्वीन ऑफ मिजरी कहा गया, क्योंकि उन्होंने अक्सर दुख सहने वाली, त्याग और ममता की मूरत माँ के किरदार को इतनी गहराई से निभाया कि वो अमर हो गया। लेकिन उनकी कला सिर्फ दुखी माँ तक सीमित नहीं थी, उन्होंने रोमांटिक, हिस्टोरिकल, डिवोशनल और सोशल फिल्मों में भी अपनी बेहतरीन एक्टिंग का प्रदर्शन किया।

बाबा रॉय का एक्टिंग लगभग 5 दशकों तक चला और उन्होंने 250 से अधिक फिल्मों में काम किया। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कई बड़े सितारों के साथ स्क्रीन शेयर की, जैसे देवानंद, दिलीप कुमार, राज कपूर, अशोक कुमार, बलराज साहनी, धर्मेंद्र, शशि कपूर, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन जैसे महान कलाकार शामिल रहे।

वैसे अवार्ड्स की बात करें तो निरूपा रॉय को फिल्मफेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का सम्मान मुनिम जी 1956, छाया 1962 और शहनाई 1965 के लिए मिला। इसके अलावा उन्हें उनके अतुलनीय योगदान के लिए फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। ये सम्मान उनके हिंदी सिनेमा में असाधारण योगदान की पहचान रही।

ऊपर वाला मर्द टांगे वाला, वो मर्द टांगे वाला मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त ऊपर।

तक ऊपर वाला मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त ऊपर।

13 अक्टूबर 2004 को निरुपा रॉय इस दुनिया को अलविदा कह गई, लेकिन उनकी यादगार फिल्में और उनके अमर किरदार आज भी हर सिनेमा प्रेमी के दिल में जिंदा है। उन्होंने सिर्फ माँ का रोल नहीं निभाया, बल्कि ममता, त्याग, दया, सहनशीलता और इंसानियत का जीवंत रूप पर्दे पर उतारा। आज भी जब बॉलीवुड की सबसे महान अभिनेत्रियों और सबसे यादगार स्क्रीन मदर्स की बात होती है, तो निरुपा रॉय का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। उनकी विरासत हमेशा हिंदी सिनेमा को प्रेरणा देती रहेंगी। प्रणाम, शुभ रात्रि।

0: सी रेडियो हर पल आपके साथ।
1: इश्क दौड़ा दौड़ा दोनों जगह दोनों एक दूजे के होने लगे, अब ना हल्की सी भी आए कभी दूरी।

0: I cannot sleep.
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

0: नाम से विलेन, काम से हीरो।
1: रेडियो मॉरिशस
2: 800 किलोहर्ट्ज़ पर, ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस,
2: रेडियो

0: You're listening RM Free Radio. Radio. Radio.
1: ओहो धन्य हो तेरे मेरे प्यार की।
2: क्या प्यार की?
1: अरे कुंडली।
2: कैसी कुंडली? काय की कुंडली?
1: जन्म कुंडली, धर्म कुंडली, कर्म कुंडली, लगन कुंडली। मिल गई रे मिल गई।

जाने दो आने वाला आएगा जाने वाला जाएगा तुम ना मानो तो जाने दो।

दीवाना दीवानों का दीवाना दीवाने को समझाने दो।

मैं हसीना तुम डाकू मैं हूँ शीशा तुम पत्थर शीशा पत्थर टकराने दो आने वाला आएगा जाने वाला जाएगा तुम ना मानो तो जाने दो तोबा तोबा क्या होगा होना है जो वो होगा होता है जो हो जा